0: इयम् आकाशवाणी सम्प्रति वार्ताः श्रूयन्ताम् प्रवाचिका ऋचा झा। अथ वार्ताः। पश्चिमैशियायाः संघर्षः दशकस्य बृहत्तमेषु संकटेषु अन्यतमः इति वर्णयन् प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी राष्ट्रीय संसाधनेषु भारः न्यूनीकर्तुं नागरिकाणाम् आह्वानम् अकरोत्। प्रधानमंत्री ह्यः गुजरातस्य वडोदरा नगरे सरदार धाम छात्रावासस्य उद्घाटनानन्तरं जनसभां संबोधयन् आसीत्।
1: पिछले कुछ वर्षों में दुनिया लगातार अस्थिर परिस्थितियों से गुजर रही है। पहले कोरोना का संकट, फिर वैश्विक आर्थिक चुनौतियां और अब पश्चिम एशिया में बढ़ता तनाव। अगर कोरोना महामारी इस सदी का सबसे बड़ा संकट थी तो पश्चिम एशिया में युद्ध से बनी परिस्थितियां इस दशक के बड़े संकटों में से एक है। ऐसे समय में देश को जन भागीदारी की शक्ति की बहुत बड़ी आवश्यकता है। आज जरूरत है कि हम सब मिलकर अपना दायित्व निभाएं, देश के संसाधनों पर पड़ने वाले बोझ को कम करें।
0: प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी प्रोक्तवान् यत् केन्द्र प्रशासनस्य निरन्तर प्रयास हि भारतं पश्चिमैशिया संघर्षेण उत्पन्नस्य ऊर्जा संकटस्य प्रभावी रीत्या प्रबन्धनं करोति। प्रधानमंत्री अवदत् यत् देशस्य जनेभ्यः अस्याः स्थितेः न्यूनतमः प्रभावः भवेत् इति सुनिश्चेतुं प्रशासनं निरन्तरं

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम एशिया संघर्ष को इस दशक के सबसे बड़े संकट में से एक बताया है। उन्होंने राष्ट्रीय संसाधनों पर बोझ कम करने के लिए नागरिकों से एकजुट होने का आह्वान किया। वडोदरा में कल सरदार धाम छात्रावास का लोकार्पण करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार ये सुनिश्चित करने के लिए निरंतर प्रयास कर रही है कि इस स्थिति का देशवासियों पर कम प्रभाव पड़े। प्रधानमंत्री मोदी ने लोगों से सात सूत्रीय अपील को अपनाने का आग्रह किया।
1: पेट्रोल डीजल का उपयोग कम करें, इलेक्ट्रिक बस और पब्लिक ट्रांसपोर्ट का अधिक इस्तेमाल करें, कार पुलिंग को बढ़ावा दें। ये जरूरी है कि सरकारी और प्राइवेट दोनों ही दफ्तरों में वर्क फ्रॉम होम को प्राथमिकता दी जाए। मैं कुछ स्कूलों से भी आग्रह करूंगा कि कुछ समय के लिए ऑनलाइन क्लासेज की व्यवस्था पर काम करें। मैं आप सबसे आग्रह करूंगा कि जब तक हालात सामान्य न हो, हम सोने की खरीद को टालें।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार को पांच देशों की यात्रा पर रवाना होंगे। पहले चरण में शुक्रवार को प्रधानमंत्री संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान से मुलाकात करेंगे। दोनों नेता द्विपक्षीय मुद्दों पर विचार विमर्श करेंगे, विशेष रूप से ऊर्जा सहयोग तथा परस्पर हित के क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर बातचीत होने की संभावना है। दूसरे चरण में प्रधानमंत्री शुक्रवार को ही नीदरलैंड्स पहुंचेंगे। प्रधानमंत्री मोदी नरेश विलेम अलेक्जेंडर और महारानी मैक्सिमा से मुलाकात करेंगे। इसके बाद श्री मोदी रविवार को स्वीडन की यात्रा पर गोथनबर्ग

0: पहुंचेंगे। यात्रा के चौथे चरण में प्रधानमंत्री मोदी सोमवार को नॉर्वे पहुंचेंगे। वे तीसरे भारत नॉर्वे शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। यात्रा के अंतिम चरण में प्रधानमंत्री मोदी इस महीने की 19 तारीख से इटली की आधिकारिक यात्रा पर रहेंगे। भारतीय जनता पार्टी नेता हेमंत बिस्व शर्मा आज दूसरी बार असम के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। यह असम में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन की तीसरी सरकार होगी। श्री शर्मा लगातार दूसरी बार मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। वे राज्य में ये उपलब्धि हासिल करने वाले एकमात्र गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री हैं। शपथ ग्रहण समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अलावा रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, गृहमंत्री अमित शाह, वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन, भाजपा अध्यक्ष नितिन नवीन तथा एनडीए शासित राज्यों के मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री भी उपस्थित रहेंगे। तमिलनाडु में ऑल इंडिया अन्ना डीएमके के 30 विधायकों ने पी वेलु मणि को विधायक दल का नेता और सी विजय भास्कर को सचेतक चुनने की घोषणा की है। इन विधायकों ने अस्थायी अध्यक्ष करुपैया से मुलाकात कर अपने हस्ताक्षर वाला पत्र उन्हें सौंपा। वहीं 17 विधायकों के एक अन्य समूह ने इडप्पडी के पलनीसामी को विधायक दल का नेता चुना है। इस विधानसभा सत्र में मुख्यमंत्री सी जोसेफ विजय की नेतृत्व वाली नई सरकार को बुधवार तक बहुमत साबित करना है। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि देश में खाद्यान्न का पर्याप्त भंडार है और किसी तरह का कोई अभाव नहीं है। नई दिल्ली में कल स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा के साथ कृषि बदलाव से स्वास्थ्य के लिए विज्ञान की उत्कृष्टता सेहत का शुभारंभ करते हुए श्री चौहान ने कहा कि इस पहल से लोगों के लिए स्वास्थ्य के लिए लाभदायक जीवन शैली को बढ़ावा देने में सहायता मिलेगी।
1: सदियों से कहा गया है, पहला सुख निरोगी काया, शरीरम आद्यम खलु धर्म साधनम। अगर शरीर स्वस्थ है तो आप सब धर्मों का पालन कर सकते हैं। जो शरीर के लिए उपयोगी है, स्वास्थ्य के लिए उपयोगी है, पोषण के लिए उपयोगी है, वही खाओ, संतुलित आहार।
0: खान मंत्रालय जम्मू कश्मीर में चूना पत्थर खंडों की नीलामी का दूसरा चरण आज से शुरू करेगा। इसके अंतर्गत 12 चूना पत्थर खंडों की नीलामी होगी। प्रवर्तन निदेशालय ने पश्चिम बंगाल सरकार के पूर्व अग्निशमन और आपातकालीन सेवा मंत्री सुजीत बसु को दक्षिण दमदम नगर पालिका भर्ती घोटाले के सिलसिले में कोलकाता से गिरफ्तार किया है। सुजीत बसु पर तृणमूल कांग्रेस सरकार के दौरान नगर पालिका में नौकरी दिलाने के बदले धन और अन्य लाभ लेने का आरोप है। ईडी गिरफ्तार पूर्व मंत्री को आज अदालत में पेश करेगी। आईपीएल क्रिकेट में दिल्ली कैपिटल्स ने पंजाब किंग्स को 3 विकेट से हरा दिया है। 211 रन के लक्ष्य के जवाब में दिल्ली कैपिटल्स ने 19 ओवर में 7 विकेट पर 216 रन बनाकर मैच जीत लिया। माधव तिवारी को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। प्रतियोगिता में आज गुजरात टाइटंस का मुकाबला सनराइजर्स हैदराबाद से होगा। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: मीडियम वेव को 213.67 मीटर अर्थात 1404 किलो हजमा हामी आकाशवाणीको गान्तोक केन्द्रबाट बोलिरहेका छौं। श्रोताहरूले हाम्रो यस प्रसारणलाई न्यूज अन एआईआर मोबाइल एप मार्फत पनि सुनिरहनु भएको छ। श्रोता, समय यस बेला बिहानीको 7:05 भइसकेको छ। हामी उपस्थित भइसकेका छौं यहाँहरूकै मनको कार्यक्रम गोल्डन मेलोडीज लिएर। सदाबहार हिन्दी चलचित्रका गीतहरूको कार्यक्रम गोल्डन मेलोडीजको पर्खाईमा बसिरहनुभएका सम्पूर्ण श्रोताहरूलाई हार्दिक अभिवादनसँगै न्यानो स्वागत जनाउँदछौ। श्रोता, आजको प्रथम कोसेली लिएर आएका छौं सन् 1968 बनेको चलचित्र ब्रह्मचारीबाट। बप्पी सोनीद्वारा निर्देशित प्रस्तुत चलचित्रमा मुख्य कलाकार रहेका थिए जीपी सिफी र साथीहरू। यस चलचित्रका गीतहरूमा संगीत भरेका थिए शंकर जयकिशनले। श्रोता, स्वीकार्नुहोस् यसै चलचित्रबाट कलाकार मोहम्मद रफीको आवाजमा सजिएको यो गीत।

0: र भोलि बिहान फेरि यस्तै जानकारीहरू लिएर भनौं 13 तारीक मेको दिन घटेका घटना र 13 तारीकमा मनाइने विभिन्न दिवसहरू बारे जानकारी लिएर तपाईँहरू समक्ष आउनेछौ। आजले भने हामी दुई कार्यक्रमबाट बिदा चाहन्छौ।
1: नमस्कार।
2: श्रोताहरू, यतिन्जेल प्रस्तुत थियो विविध जानकारी तथा मनोरञ्जनले भरिएको कार्यक्रम प्रणाम सिक्किम। हामी आकाशवाणीको गान्तोक केन्द्रबाट बोलिरहेका छौं। साथै श्रोताहरूले हाम्रो यस प्रसारणलाई न्यूज अनि आईआर मोबाइल एप मार्फत पनि सुनिरहनु भएको छ। समय यस बेला बिहानीको 8 बज्न लागेको छ र अब सुन्नुहुनेछ आकाशवाणीको दिल्ली केन्द्रबाट क्रमैले हिन्दी अनि अंग्रेजी भाषामा समाचार। केही क्षण प्रतीक्षा साँच्नुहोला।
3: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं मुकेश कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम एशिया संकट के बीच विदेशी मुद्रा बचाने के लिए लोगों से ईंधन और विदेशी उत्पादों का उपयोग कम करने का आग्रह किया। वरिष्ठ भाजपा नेता हेमंत बिस्व शर्मा आज गुवाहाटी में असम के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। भाजपा के 2 तथा असम गण परिषद और बोडो पीपुल्स फ्रंट के 1-1 मंत्री भी शपथ लेंगे। प्रवर्तन निदेशालय ने दक्षिणी दमदम नगर पालिका भर्ती घोटाले में पश्चिम बंगाल के पूर्व मंत्री सुजीत बसु को गिरफ्तार किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार को संयुक्त अरब अमीरात, नीदरलैंड्स, स्वीडन, नॉर्वे और इटली की 6 दिन की यात्रा पर रवाना होंगे। अमरीका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, ईरान के साथ युद्ध विराम सबसे कमजोर स्थिति में और लाइफ सपोर्ट पर है। और बांग्लादेश ने भारत में आईसीसी T20 क्रिकेट विश्व कप से अपनी टीम के हटने के कारणों की जांच के लिए समिति गठित की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम एशिया संकट के बीच विदेशी मुद्रा की बचत के लिए लोगों से ईंधन बचाने और विदेशी उत्पादों का उपयोग कम करने का आग्रह किया है। गुजरात के वडोदरा में कल एक जनसभा को संबोधित करते हुए श्री मोदी ने पेट्रोल और डीजल का उपयोग कम करने तथा घर से काम, ऑनलाइन कक्षाएं और वर्चुअल बैठक जैसे कोविड दौर के उपाय अपनाने की अपील दोहराई।
4: पेट्रोल डीजल का उपयोग कम करें, इलेक्ट्रिक बस और पब्लिक ट्रांसपोर्ट का अधिक इस्तेमाल करें, कार पुलिंग को बढ़ावा दें। ये जरूरी है कि सरकारी और प्राइवेट दोनों ही दफ्तरों में वर्क फ्रॉम होम को प्राथमिकता दी जाए। मैं कुछ स्कूलों से भी आग्रह करूंगा कि कुछ समय के लिए ऑनलाइन क्लासेज की व्यवस्था पर काम करें। मैं आप सबसे आग्रह करूंगा कि जब तक हालात सामान्य न हो, हम सोने की खरीद को टालें।
3: सरकार ने कहा है कि देश में पेट्रोल और डीजल का पर्याप्त भंडार है तथा रसोई गैस की आपूर्ति लगातार हो रही है।

0: की है। पश्चिम एशिया के हाल के घटनाक्रम पर कल नई दिल्ली में अंतर मंत्रालय संवाददाता सम्मेलन में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा ने कहा कि एलपीजी वितरण केंद्रों पर किसी अभाव की सूचना नहीं है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पेट्रोल और डीजल का उपभोग कम करने तथा सार्वजनिक परिवहन और कार पूलिंग पर बल दिया है।
1: माननीय प्रधानमंत्री जी ने देश के सभी लोगों से आग्रह किया है कि पेट्रोल और डीजल की खपत कम करें, जहां भी संभव हो मेट्रो और सार्वजनिक परिवहन का उपयोग करें, कार पूलिंग का विकल्प चुनें, रेलवे एज अ मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन फॉर गुड्स को प्रेफर करें और जहां भी संभव हो इलेक्ट्रिक वाहनों का उपयोग बढ़ाएं।
0: रसायन और उर्वरक मंत्रालय में अपर सचिव अपर्णा शर्मा ने बताया कि देश में खरीफ सीजन के लिए 51% से अधिक उर्वरक भंडार उपलब्ध है। उन्होंने कहा कि किसानों के लिए उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए 97,00,000 मीट्रिक टन उर्वरक का अतिरिक्त प्रबंधन किया गया है। संवाददाता सम्मेलन में पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय में निदेशक उपेश कुमार शर्मा ने कहा कि समुद्री क्षेत्र में सभी भारतीय जहाज सुरक्षित हैं। विदेश मंत्रालय में अपर सचिव असीम महाजन ने कहा कि भारतीय दूतावास और वाणिज्य दूतावास समय से सहायता उपलब्ध कराने के लिए लगातार हेल्पलाइन संचालित कर रहे हैं। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने मीडिया को बताया कि भारतीय जहाजों की सुरक्षित आवाजाही सुनिश्चित करने के लिए भारत ईरानी अधिकारियों के संपर्क में है। मंत्रालय ने बताया कि तेहरान में भारतीय दूतावास ने 2,500 से अधिक भारतीय नागरिकों को सुरक्षित निकालने में मदद की है। भारतीय जनता पार्टी नेता हेमंत बिस्व शर्मा आज दूसरी बार असम के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। ये असम में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन की तीसरी सरकार होगी। श्री शर्मा लगातार दूसरी बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ग्रहण करेंगे। वे राज्य में उपलब्धि हासिल करने वाले एकमात्र गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री हैं। एक रिपोर्ट।
2: डॉक्टर हेमंत बिस्व शर्मा के साथ आज 4 अन्य मंत्रियों को भी शपथ दिलाई जाएगी। जिन 4 कैबिनेट मंत्रियों को शपथ दिलाई जाएगी उनमें रामेश्वर तेली, अतुल बोरा, चरण बोरो और अजंता नेउक शामिल हैं। शपथ ग्रहण समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, कई केंद्रीय मंत्री तथा भाजपा शासित राज्यों के मुख्यमंत्री शामिल होंगे। गुवाहाटी के खानापारा स्थित वेटरनरी कॉलेज मैदान को शपथ ग्रहण समारोह के लिए पूरी तरह सजाया गया है। वहीं कामरूप मेट्रो प्रशासन ने शहर के विभिन्न हिस्सों में यातायात सुचारू बनाए रखने और जाम से बचने के लिए ट्रैफिक एडवाइजरी भी जारी की है। राकेश तोले, आकाशवाणी समाचार, गुवाहाटी।
0: तमिलनाडु में ऑल इंडिया अन्ना द्रविड़ मुनेत्र कड़गम के 30 विधायकों ने पी वेलुमणि को विधायक दल का नेता और सी विजय भास्कर को सचेतक चुनने की घोषणा की है। इन विधायकों ने अस्थायी अध्यक्ष करूपैया से मुलाकात कर अपने हस्ताक्षर वाला पत्र उन्हें सौंपा। वहीं 17 विधायकों की एक समूह ने इडपड्डी के पलनीसामी को विधायक दल का नेता चुना है। मुख्यमंत्री सी जोसेफ विजय के नेतृत्व वाली नई सरकार को बुधवार तक विधानसभा में बहुमत साबित करना है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं।
3: माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का देश के सभी एग्जाम वॉरियर्स के लिए विशेष संदेश।
4: परीक्षा एक ऐसा अवसर है और परीक्षा के लिए हेल्दी कंपटीशन की भावना हमारी तैयारी को और बेहतरीन बनाती है।
3: NCPCR आयोजित कर रहा है परीक्षा पर्व, जिसके लाइव सेशन के दौरान आप परीक्षा से संबंधित प्रश्न एक्सपर्ट से पूछ सकते हैं, जो कि 23 अप्रैल से 23 मई तक चलेंगे। अधिक जानकारी के लिए www.ncpcr.gov.in पर लॉगिन करें।
5: सबके लिए सामाजिक सुरक्षा, अटल पेंशन योजना मोदी जी का संकल्प।
6: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको।
5: अब तक इस योजना से 8,85,00,000 से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित 3 गारंटीड फायदों के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें।
0: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार को 5 देशों की 6 दिन की यात्रा पर रवाना होंगे। पहले चरण में शुक्रवार को प्रधानमंत्री संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान से मुलाकात करेंगे। दोनों नेता द्विपक्षीय मुद्दों पर विचार विमर्श करेंगे। इस दौरान विशेष रूप से ऊर्जा सहयोग तथा आपसी हित के क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर बातचीत होगी। एक रिपोर्ट।
7: संयुक्त अरब अमीरात की यात्रा के बाद अपनी

0: प्रवर्तन निदेशालय ने पश्चिम बंगाल में दक्षिणी दमदम नगर पालिका भर्ती घोटाले में पूर्व अग्निशमन और आपात सेवा मंत्री सुजीत बसु को कल कोलकाता से गिरफ्तार कर लिया। निदेशालय ने बताया कि तृणमूल कांग्रेस के शासन में सुजीत बसु ने नगर पालिका में विभिन्न पदों के लिए कथित रूप से लगभग 150 उम्मीदवारों की सिफारिश की थी। प्रवर्तन निदेशालय ने नौकरी देने के बदले कथित रूप से फ्लैट की मांग के अपराध का भी पता लगाया है। जांच एजेंसी को बसु के बैंक खातों में बड़ी राशि जमा होने के भी सबूत मिले हैं। सुजीत बसु को आज विशेष अदालत में पेश किया जाएगा। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि देश में खाद्यान्न का पर्याप्त भंडार है और किसी तरह का कोई अभाव नहीं है। नई दिल्ली में कल कृषि बदलाव के स्वास्थ्य के लिए विज्ञान की उत्कृष्टता सेहत पहल का शुभारंभ करते हुए श्री चौहान ने कहा कि इससे लोगों के लिए स्वास्थ्य के लिए लाभदायक जीवन शैली को बढ़ावा देने में सहायता मिलेगी।
1: सदियों से कहा गया है, पहला सुख निरोगी काया, शरीरम आद्यम खलु धर्म साधनम। अगर शरीर स्वस्थ है तो आप सब धर्मों का पालन कर सकते हैं। जो शरीर के लिए उपयोगी है, स्वास्थ्य के लिए उपयोगी है, पोषण के लिए उपयोगी है, वही खाओ, संतुलित आहार।
0: इस अवसर पर स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने कहा कि ये पहल स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए सरकार की सक्रियता दर्शाती है।
2: हम जानते हैं कि हम लोगों ने एक ट्रांसफॉर्मेटिव प्रोग्रेस किया है, और जब हम ट्रांसफॉर्मेटिव प्रोग्रेस की बात करते हैं तो हमने हेल्थ सिस्टम्स को भी काफी स्ट्रेंथन किया है। और हमारी कोशिश क्या है कि हम एक्सपैंड करें अफोर्डेबल और हाई क्वालिटी के हेल्थ, और जो हमारा फोकस है वो फोकस है प्रिवेंशन पर, अर्ली डिटेक्शन पर और कॉन्टिन्यूम ऑफ केयर पर।
0: सेहत पहल का उद्देश्य स्वस्थ भारत के लिए कृषि, पोषण और वैज्ञानिक नवाचार को मजबूत करना है। खान मंत्रालय जम्मू कश्मीर में चूना पत्थर खंडों की नीलामी का दूसरा चरण आज से शुरू करेगा। इसके अंतर्गत 12 चूना पत्थर खंडों की नीलामी की जाएगी। खान मंत्रालय ने इन खंडों को संयुक्त राष्ट्र संसाधन वर्गीकरण प्रणाली के 3 और 4 अन्वेषण चरणों के अंतर्गत रखा है। मंत्रालय ने कहा कि संसाधन सीमेंट निर्माण और अवसंरचना जैसे प्रमुख क्षेत्रों के लिए महत्वपूर्ण है। इससे क्षेत्र में औद्योगिक विकास और आर्थिक प्रगति को गति मिलेगी। अमरीका और ईरान के बीच कमजोर संघर्ष विराम के लाइफ सपोर्ट पर होने के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की टिप्पणी के बाद राजनयिक तनाव गहरा गया है। इससे तेल बाजारों को झटका लगा है। अमरीका ने ईरान के शांति प्रस्ताव पर अपनी प्रतिक्रिया में अमरीकी प्रतिबंध हटाए जाने, ईरान की फ्रीज पर संपत्तियां खोलने, अमरीकी नाकाबंदी समाप्त करने और होर्मुज जलडमरू मध्य पर ईरानी प्रबंधन को मान्यता देने की मांग की थी, लेकिन राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इन शर्तों को नामंजूर कर दिया। शांति प्रस्ताव खारिज होने के बाद कच्चे तेल की कीमतों में 4% से अधिक का उछाल आया है। एक रिपोर्ट।
3: ईरान की मांगे मुख्य रूप से युद्धकालीन परिस्थितियों और आर्थिक दबावों पर केंद्रित रही है, न कि तत्काल परमाणु रियायतों पर, लेकिन फिलहाल अमरीका इन मांगों को मानने के पक्ष में नहीं है। मध्यस्थ लगातार साझा समाधान खोजने की कोशिश में है, लेकिन युद्ध के दबाव और आर्थिक संकट के कारण स्थिति और जटिल होती जा रही है। इस बीच संयुक्त अरब अमीरात बुनियादी ढांचों पर हुए हमलों पर अपनी प्रतिक्रिया तय कर रहा है। उसने एक राष्ट्रीय समिति का गठन किया है जिसका उद्देश्य देश पर 2800 से अधिक ड्रोन और मिसाइल हमलों से हुए नुकसान का दस्तावेजीकरण करना है। संयुक्त अरब अमीरात अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कानूनी जवाबदेह तय करने और अपने प्रमुख स्थलों तथा ऊर्जा प्रतिष्ठानों पर हुए हमलों के लिए मुआवजे की मांग करने की तैयारी कर रहा है। दुबई से विनोद कुमार की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से अमीशा।
0: बांग्लादेश क्रिकेट टीम के भारत में आईसीसी T20 विश्व कप से हटने के कारणों की जांच के लिए 3 सदस्यों की जांच समिति गठित की गई है। एक रिपोर्ट।
4: इस साल 7 फरवरी से 8 मार्च तक भारत और श्रीलंका की संयुक्त मेजबानी में हुई T20 विश्व कप से बांग्लादेश ने अपना नाम वापस ले लिया था। यह फैसला तब लिया गया जब अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ICC ने सुरक्षा चिंताओं के कारण बांग्लादेश के मैच भारत से श्रीलंका स्थानांतरित करने की मांग को ठुकरा दी। विवाद तब शुरू हुआ जब भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड BCCI ने कथित तौर पर कट्टरपंथी समूहों से धमकियों के बाद बांग्लादेश के तेज गेंदबाज मुस्ताफिजुर रहमान को IPL से बाहर कर दिया। हालांकि ICC ने कहा कि सुरक्षा व्यवस्था पर्याप्त है, लेकिन इसके बाद अंतरिम सरकार ने BCB को टूर्नामेंट से हटने का निर्देश दिया। नवलसन परमार, आकाशवाणी समाचार, ढाका।
0: और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं सरफिरोजी।
5: धन्यवाद मुकेश। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की विदेशी मुद्रा बचाने की सलाह सभी अखबारों में प्रमुखता से है। हिंदुस्तान के अनुसार मोदी बोले, ऑनलाइन कक्षाओं और काम को प्राथमिकता दें, कोरोना महामारी की

नमस्कार, ट्यून कर चुके हैं आप आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल ऑन 100.1 मेगाहर्ट्ज। प्रोग्राम शुरू हो चुका है दिल का मेल बॉक्स, जहां मैं यानी नाज आ गई हूं आपसे ढेर सारी बातें करने। साथ ही आपकी फरमाइश के गीत भी मैं आपको सुनवाऊंगी जरूर, लेकिन उसके लिए आपको भी करनी होगी थोड़ी सी मेहनत। fmgoldairdelhi@gmail.com पर करेंगे ईमेल या फिर व्हाट्सएप मैसेज। आप भेजेंगे कहाँ? 9868686853 पर। और इस सब के साथ ही प्रोग्राम के बीच बीच में मैं प्ले करूंगी एक छोटा सा लेकिन ऐसा म्यूजिक पीस जो है एक सुपर हिट सॉन्ग की पहचान। और आप क्या करेंगे? ध्यान से सुनेंगे उस म्यूजिकल पीस को और पहचानेंगे सॉन्ग, और जल्दी से लिख भेजेंगे रिलेटेड सॉन्ग का मुखड़ा यानी उसकी लिरिक्स। तो फिर क्यों करनी है देर? कानों और दिमाग को लगाइए काम पर और सुनिए ये खूबसूरत म्यूजिक पीस।

अगर पहचान लिया है गाना तो टाइम क्यों गवाना, जल्दी से लिख भेजिए गीत के बोल और फिलहाल एंजॉय कीजिए ये मस्ती भरा गीत मेरी पसंद से।

जी हाँ, यही म्यूजिक पीस पहचानना है आपको और बताना है कि किस गाने का हिस्सा है ये। मुखड़ा लिख भेजिए जल्दी से। और वैसे एक बात बताऊं, आपने लिखकर भेजना शुरू भी कर दिया है, लगातार ईमेल्स आ रहे हैं और व्हाट्सएप मैसेजेस भी आ रहे हैं, जिन्हें देखकर और पढ़कर मुझे बहुत खुशी हो रही है। तो चलिए आप कार्यक्रम में उन्हें शामिल भी कर लेते हैं। तो मेरे सामने खुला हुआ है इस वक्त अनिल मोहन जी का ईमेल। उषा मोहन टिल्लू नायक इनके साथ है, कैथल हरियाणा से लिख रहे हैं और बस इसके अलावा और कुछ भी नहीं लिखा है। ये तो गलत बात है जी। शेरो शायरी कीजिए, कोई अच्छी सी बात लिखिए, प्रोग्राम कैसा लग रहा है, गाने कैसे लग रहे हैं, एफएम गोल्ड से कितना प्यार करते हैं, कितना कुछ लिख सकते हैं आप। और उसके साथ साथ आज के सवाल का जवाब भी। सवाल मतलब वही गाने का मुखड़ा जिसका म्यूजिक पीस मैंने अभी आपको सुनाया। तो बहुत कुछ है करने के लिए, सिर्फ नाम और जगह लिखकर मत भेजिए, ये खराब बात है भाई। चलिए इसी के साथ अगला मैसेज हम खोल लेते हैं। कृष्ण कुमार गुप्ता जी का, भटीपुरा महोबा यूपी से है, इन्होंने भी सिर्फ नाम और शहर का नाम लिखा है। और ढूंढ रही हूं मैं एक ऐसा मैसेज या फिर एक ऐसा ईमेल जिसमें हो कुछ बढ़िया सा, जिसे पढ़कर दिल हो जाए खुश। जी हाँ, मिल गया। कार्यक्रम बहुत पसंद आ रहा है, आप हमारा मेल शामिल करें या ना करें, हम सुने बिना नहीं रह सकते। लिख रहे हैं भागवत वर्मा जी, शांति देवी, लीलावती, विनीता वर्मा और रुद्र वर्मा के साथ दतरेंगी से। बिल्कुल आपका मेल शामिल हो चुका है और आप सुनिए पूरा प्रोग्राम और एंजॉय कीजिए। अगला मैसेज खोल लिया है मैंने फारूक अली खान साहब का। लिख रहे हैं कि आरजे नाज से, साहिबा जी आदाब। आदाब, इतने दिनों से आप कहाँ थी और आप कैसी हैं? आपका तो हर रोज करते हैं इंतजार, एक गीत की गुजारिश है। जी बिल्कुल, इस गुजारिश को मैंने नोट कर लिया है और बहुत बहुत शुक्रिया कह रही हूँ आपको इस खूबसूरत ईमेल के लिए। चलिए अब आप जब तक अपने फोन पर सर्च करें कोई अच्छा सा शेर या कोई अच्छी सी बात, तब तक मैं आपको एक अच्छी सी बात सुना देती हूँ। बहुत ही प्यारा शेर है, ध्यान से सुनिएगा, ठीक है? ऐसा करते हैं, एक मुलाकात।

रख लेते हैं। ऐसा करते हैं कि एक मुलाकात रख लेते हैं, चाय की प्यालियां और कुछ सौगात रख लेते हैं। मैं भी उदास हूं, तुम भी गुमसुम हो जाना, महफिले मुशायरा आज रख लेते हैं। जिंदगी ने हम दोनों को बहुत गम दिए हैं, तुम रखो खुशियां, हम तजुर्बात रख लेते हैं। और भाई, इस खूबसूरत शेर से ही मैं सुनवाने जा रही हूं आपको और भी खूबसूरत गाना। जिसकी फरमाइश आई है कमल बालूजा जी की ओर से, मधु बालूजा, सागर बालूजा, उमंग मलिक, आकांक्षा मलिक और माही मलिक के साथ सतना मध्य प्रदेश से लिखा ईमेल। खानदान फिल्म का ये खूबसूरत गीत आपके लिए।

0: माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का देश के सभी एग्जाम वॉरियर्स के लिए विशेष संदेश।
1: अगर टाइम मैनेजमेंट सीख ली और समय का प्रोडक्टिव यूज सीख लिया तो आप देखिए, आप कभी भी प्रेशर नहीं लगेगा, थकान नहीं लगेगी।
0: एनसीपीसीआर आयोजित कर रहा है परीक्षा पर्व, जिसके लाइव सेशन के दौरान आप परीक्षा से संबंधित प्रश्न एक्सपर्ट से पूछ सकते हैं, जो कि 23 अप्रैल से 23 मई तक चलेंगे। अधिक जानकारी के लिए www.ncpcr.gov.in पर लॉगिन करें।

एक बार फिर सुनवा दिया है मैंने आपको वो म्यूजिक पीस जिसे सुनकर आपको पहचानना है गाना। और क्या करना है? लिख भेजने हैं गाने के बोल। दिल का मेलबॉक्स चल रहा है प्रोग्राम, मैं यानी नाज हूँ आपके साथ और बड़ी खुशी हो रही है मुझे कि आपने मेरी बात इतनी जल्दी मान ली। इतने खूबसूरत शेर आ रहे हैं, इतनी अच्छी अच्छी शायरियां आप भेज रहे हैं जिन्हें पढ़े बिना तो मैं रह ही नहीं सकती। तो बोधराज खोरवाल जी ने व्हाट्सएप मैसेज किया है, लिख रहे हैं कि नाज जी नमस्कार। नमस्कार, आपकी मधुर आवाज में दिल का मेलबॉक्स प्रोग्राम हमें बहुत अच्छा लग रहा है। मैसेज शामिल हो या ना हो कोई बात नहीं, अरे इसी बात ने तो दिल छू लिया और मैंने कर लिया आपका मैसेज शामिल। चलिए अगला मैसेज ले लेते हैं गौरी शंकर जी का, और लिख रहे हैं कि बेटा प्रोग्राम ही नहीं आपके बोलने का अंदाज भी जानदार है, यानी कि तबीयत खुश हो जाती है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस मैसेज के लिए और आपके आशीर्वाद के लिए भी। आगे बढ़ते हैं। राजेंद्र जटोलिया जी ने लिखा है अभी अभी कुछ देर पहले कि रेडियो की धुन हो या दिल की आवाज, हर जगह बस तुम्हारा ही अंदाज। नाम है नाज तो बात भी खास होगी, तुम्हारी मुस्कान में ही पूरी महफिल की मिठास होगी। क्या बात है, दिल्ली नागलोई से बहुत ही प्यारा ईमेल मिला है चारू जटोलिया के साथ। राजेंद्र जटोलिया और उषा जटोलिया शामिल है इस ईमेल में। एक और मैसेज आया है, कल एक झलक जिंदगी को देखा, वो राहों पे मेरी गुनगुना रही थी, फिर ढूंढा उसे इधर उधर, वो आंख मिचौली कर मुस्कुरा रही थी। हम दोनों क्यों खफा हैं एक दूसरे से, मैं उसे और वो मुझे समझा रही थी। मैंने पूछ लिया कि क्यों इतना दर्द दिया कमबख्त तूने, वो हंसी और बोली, मैं जिंदगी हूं पगले, तुझे जीना सिखा रही थी। क्या बात है, दिल खुश कर दिया जनाब। होली चौक उत्तम नगर से जयराम खोरवाल, सचिन खोरवाल, अमन खोरवाल, दीपांशु खोरवाल के साथ ये मैसेज हमारे पास आया। एक और मैसेज आ गया है, बड़ा ही प्यारा मैसेज है ये भी। सुना है आज समुंदर को बड़ा गुमान आया है, उधर ही ले चलो कश्ती जिधर तूफान आया है। क्या बात है, नाज मैडम नमस्कार, और आज के सवाल का जवाब भी लिखा है, सही है या गलत थोड़ी देर में पता चल जाएगा। भारत भूषण जी का ये मैसेज अंजू श्रीवास्तव, दिव्येंदु भूषण, संस्कृति और पौरुष के साथ ये मैसेज हमें लिखा है। कहां से? हाँ, व्हाइट फील्ड बेंगलुरु से, और इन्होंने भी लिख भेजा है आज के सवाल का जवाब। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। चलिए अब एक और फरमाइश पूरी करने का आ गया है वक्त। बहुत ही प्यारा गाना है और इसकी जो फरमाइश हमारे पास आई है वो आई है रूपेश संघई जी की ओर से। जी हाँ, बिल्कुल सही नाम लिया है मैंने, महेश संघई, प्रज्ञेश संघई, प्रीतेश संघई और पूरा संघई परिवार इस रिक्वेस्ट में शामिल है। बहुत ही प्यारा गाना है हम प्यार करने वाले, दिल फिल्म का सुपरहिट सॉन्ग, उदित नारायण और अनुराधा पौडवाल जी की खूबसूरत जुगलबंदी। चलिए सुनते हैं और फिर बातें करते हैं।

वक्त से न हारे जाते हैं न जीता जाता है, वक्त से सीखा जाता है। वक्त खुशबू है बिखर जाता है। डियर नाज को ढेर सारा प्यार स्नेह। आई मिस्ड यू अ लॉट, टुडे आई गॉट यू एंड आई एम सो हैप्पी डियर, बट आई एम नॉट सो हैप्पी। अनुजी नाराज हूँ मैं आपसे। जी हाँ, म्यूजिकल दिल लगी में सवाल पूछा था मैंने और आपको फोन भी लगाया था। लकी लिसनर थी आप आज की, बट आपका फोन लगा ही नहीं। कम से कम 10 बार ट्राई किया आपका फोन, बिजी जा रहा था। एक छोटी सी गुजारिश है कि जब भी आप सवाल का जवाब देते हैं तो अपने फोन को अपने पास रखिए, खासकर म्यूजिकल दिल लगी में, ताकि आपसे बात हो सके। चलिए कोई नहीं, बेटर लक नेक्स्ट टाइम, फिर से कोशिश करेंगे। और अभी शामिल करेंगे अगला मैसेज जो आया है गांधी चौक बाड़मेर से। बबलेश पंवार जी लिख रहे हैं और बड़ी प्यारी बात लिख रहे हैं कि मेरे दिल के एक कोने में एक छोटा सा मेल बॉक्स है जहां यादों की पुरानी चिट्ठियां आज भी धूल फांकती हैं। कुछ खत हैं अधूरी ख्वाहिशों के जो कभी पत्ते तक न पहुंच सके। कुछ लिफाफे हैं उन आंसुओं के जो आंखों से कभी बह न सके। वहां हर रोज एक नया संदेश आता है, कभी उम्मीद का कभी उदासी का, पर ताला लगा है उस पर वक्त का और चाबी खो गई है शायद कहीं। मैं अक्सर उसे खोलना चाहता हूँ, उन अनकहे शब्दों को पढ़ना चाहता हूँ जो मैंने दुनिया से छुपा रखे हैं, पर डरता हूँ कि कहीं वो जख्म फिर से उभर आए तो क्या होगा। ये मेल बॉक्स ही तो है मेरा असली पता, जहां मैं खुद से मिलता हूँ, दुनिया के शोर से दूर अपनी तन्हाइयों में खिल जाता हूँ। क्या बात है, दिल छू लिया जी आपने। बबलेश पवार, डैनी पवार, मनीष पवार के साथ गांधी चौक बाड़मेर से बहुत बहुत बहुत थैंक यू आपको इस खूबसूरत मैसेज के लिए। और अब क्योंकि घड़ी बहुत तेजी से भाग रही है तो मुझे बताना होगा आज के सवाल का जवाब। बात करेंगे उस ट्रैक की जिसे आप में से ज्यादातर लिसनर्स ने पहचान भी लिया है और गीत के बोल लिखकर भेज भी दिए हैं। जी हाँ, साल 1989 में आई सुपर डुपर हिट फिल्म राम लखन से है यह सॉन्ग, जो उस दौर से लेकर अब तक हमारे दिलो दिमाग पर छाया हुआ है। एंड फॉर श्योर हमारी प्लेलिस्ट्स का हिस्सा तो ये है ही। मनहर उदास और अनुराधा पोडवाल की रूहानी आवाजें आपको सुनाई देती

है और टीवी स्क्रीन पर जबरदस्त केमिस्ट्री आप देखते हैं जैकी श्रॉफ और डिंपल कपाड़िया की। गीत के बोल थे आनंद बख्शी साहब के और ईयर कैचिंग म्यूजिक आप सुनते हैं लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की जोड़ी का। वैसे तो इस मूवी का हर गाना हिट था लेकिन स्पेशली ये सॉन्ग कुछ अलग ही था। तो अब नहीं करूंगी देर और शामिल करूंगी वो सभी नाम जिन्होंने दिया बिल्कुल सही जवाब। संदीप मक्कड़ जलंधर पंजाब से, नवाब अहमद भारती बल्ली मारन से, अनु बरजात्या मुंबई से, जॉन डिकेस्ट्रो जनकपुरी सहारनपुर से, कौशल्या देवांगन बिलाईगढ़ छत्तीसगढ़ से, उग्रसेन यादव जी नई दिल्ली से। उम्मीद है अब आपकी नाराजगी दूर हो गई होगी। राजेश कुमार हर्रई से, सईद अब्बासी बुलंदशहर से, धर्मेंद्र छीपा भोपालगढ़ राजस्थान से, पूनम नागलोई से, फारूक अली फैराज गुन्नौर यूपी से, साहिल डार उर्फी जान के साथ श्रीनगर कश्मीर से, चिन्मय महतो कदमा जमशेदपुर से, राम ऑप्टिकल पलवल से, कृष्ण कुमार गुप्ता बटीपुरा महोबा से। और ये पॉसिबल नहीं है मेरे लिए कि मैं सारे नाम शामिल कर पाऊं क्योंकि लगातार आपके मैसेजेस आ रहे हैं और बिल्कुल सही जवाब आप सब दे रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया इन सभी मैसेजेस के लिए। और चलिए एक दो मैसेज मैं जल्दी से और शामिल कर लेती हूं। आफताब अंसारी रियाज अंसारी के साथ लिख रहे हैं और इन्होंने भी दिया है आज के सवाल का बिल्कुल सही जवाब। और इसके साथ ही किसने दिया है एक मैसेज और आया है, अगली बार एफएम गोल्ड पर कब मिलोगे आप, हम पूरी तैयारी से आएंगे क्योंकि हम कच्चे खिलाड़ी हैं। तो पक्के खिलाड़ी बन जाइए, एफएम गोल्ड तो आपकी सेवा में हाजिर ही है, रोज आपको सुनना है दिल का मेल बॉक्स एफएम गोल्ड के साथ। और चलिए इसी के साथ अब एंजॉय करते हैं वो ब्यूटीफुल ट्रैक जो था आज के सवाल का जवाब भी। और मुलाकात अब आपसे होगी ठीक 11:10 पर, कार्यक्रम होगा तस्वीर।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनकलता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम एशिया संकट के बीच विदेशी मुद्रा की बचत के लिए लोगों से ईंधन बचाने और विदेशी उत्पादों का उपयोग कम करने का आग्रह किया है। गुजरात के वडोदरा में कल जनसभा को संबोधित करते हुए श्री मोदी ने पेट्रोल और डीजल का उपभोग कम करने तथा घर से काम, ऑनलाइन कक्षाएं तथा वर्चुअल बैठक जैसे कोविड दौर के उपाय अपनाने की अपील दोहराई। भारतीय जनता पार्टी नेता हिमंता बिस्व सरमा आज दूसरी बार असम के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। यह असम में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए की तीसरी सरकार होगी। श्री सरमा लगातार दूसरी बार मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। तमिलनाडु में ऑल इंडिया अन्ना द्रविड़ मुनेत्र कड़गम के 30 विधायकों ने पी वेलुमणि को विधायक दल का नेता और सी विजय भास्कर को सचेतक चुनने की घोषणा की है। इन विधायकों ने अस्थायी अध्यक्ष करुपैया से मुलाकात कर अपने हस्ताक्षर वाला पत्र उन्हें सौंपा है। वहीं 17 विधायकों के एक अन्य समूह ने इडापट्टी के पलनीसामी को विधायक दल का नेता चुना है। मुख्यमंत्री सी जोसेफ विजय के नेतृत्व वाली नई सरकार को बुधवार तक विधानसभा में बहुमत साबित करना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम बंगाल के नवनिर्वाचित मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी के नेतृत्व में राज्य मंत्रिमंडल की पहली बैठक के निर्णयों की सराहना की है। सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री ने प्रसन्नता व्यक्त करते हुए कहा कि राज्य के लोग अब विश्व की सबसे बड़ी स्वास्थ्य योजना आयुष्मान भारत का लाभ उठा सकेंगे। इससे पहले कल राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। इनमें बांग्लादेश सीमा पर 45 दिन के भीतर बाड़ लगाने के लिए सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ को भूमि हस्तांतरित करना शामिल है। प्रवर्तन निदेशालय ने पश्चिम बंगाल में दक्षिणी दमदम नगर पालिका भर्ती घोटाले में पूर्व अग्निशमन और आपात सेवा मंत्री सुजीत बसु को कल कोलकाता से गिरफ्तार कर लिया है। निदेशालय ने बताया कि तृणमूल कांग्रेस के शासन में सुजीत बसु ने नगरपालिका में विभिन्न पदों के लिए कथित रूप से लगभग 150 उम्मीदवारों की सिफारिश की। जांच एजेंसी को बसु के बैंक खातों में बड़ी राशि जमा होने के भी सबूत मिले हैं। सुजीत बसु को आज विशेष अदालत में पेश किया जाएगा। केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कल वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए दोहरीघाट औडिहार यात्री पैसेंजर ट्रेन को रवाना किया। इससे मऊ और गाजीपुर जिलों के यात्रियों को किफायती और सुरक्षित रेल सेवा उपलब्ध होगी। श्री वैष्णव ने कहा कि इस रेल सेवा का विस्तार जल्द ही वाराणसी तक किया जाएगा। श्री वैष्णव ने बताया कि उत्तर प्रदेश में कई प्रमुख रेल अवसंरचना परियोजनाओं पर काम चल रहा है। उन्होंने कहा कि एक प्रमुख चार लेन का गलियारा गंगा के दक्षिण में प्रयागराज कानपुर आगरा दिल्ली मार्ग के साथ विकसित किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार को 5 देशों संयुक्त अरब अमीरात, नीदरलैंड, स्वीडन, नॉर्वे और इटली की 6 दिन की यात्रा पर रवाना होंगे। पहले चरण में शुक्रवार को प्रधानमंत्री संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान से मुलाकात करेंगे। दोनों नेता द्विपक्षीय मुद्दों पर विचार विमर्श करेंगे, विशेष रूप से ऊर्जा सहयोग तथा परस्पर हित के क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर बातचीत होगी। अमेरिका और ईरान के बीच कमजोर संघर्ष विराम के लाइफ सपोर्ट पर होने के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की टिप्पणी के बाद राजनयिक तनाव गहरा गया है। इससे तेल बाजारों को झटका लगा है। ईरान ने अमेरिका के शांति प्रस्ताव पर अपनी प्रतिक्रिया में अमेरिकी प्रतिबंध हटाए जाने, ईरान के फ्रीज परिसंपत्तियां खोलने, अमेरिकी नाकाबंदी समाप्त करने और होर्मुज जलडमरू मध्य पर ईरानी प्रबंधन को मान्यता देने की मांग की थी। घरेलू शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक के शुरुआती कारोबार में आज लगभग 0.5% की गिरावट दर्ज की गई। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 474 अंक लुढ़ककर 75,541 पर, जबकि निफ्टी 126 अंक की गिरावट के साथ 23,689 पर था। आईपीएल क्रिकेट में आज गुजरात टाइटंस का मुकाबला सनराइजर्स हैदराबाद से अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में होगा। मैच शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। आज अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस है। आधुनिक नर्सिंग के संस्थापक फ्लोरेंस नाइटिंगेल की जयंती पर यह दिवस मनाया जाता है। इस वर्ष का विषय है हमारी नर्सें हमारा भविष्य। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

सांवला रंग है और थोड़ा कड़क मिजाज है। सुनो, तुम पसंद हो मुझे, तुम्हारा चाय सा स्वाद है। और सुबह की अधूरी नींद में बस इतनी सी राहत चाहिए, जहन में तेरी यादें और हाथ में एक कॉफी का कप चाहिए। और ये अगर मिल जाए तो बस और क्या चाहिए। सच में क्या? और सोचिए, अगर आप पहुंच जाए एक ऐसी जगह जहां आंखों के सामने हो खूबसूरत पहाड़ और फिजा में खुली हो चाय और कॉफी के बागानों से निकलती भीनी भीनी खुशबू, तो कैसा हो? मौसम मस्ताना और साथ किसी अपने का, जैसे आपका और हमारा।

रास्ता भले ही अब तक अनजान है आपके लिए, लेकिन एफएम गोल्ड और मुझसे आपकी पहचान तो पहले ही हो चुकी है। प्रोग्राम शुरू हो चुका है तस्वीर, जहां आपकी दोस्त और घुमक्कड़ दोस्त नाज है आपके साथ। और कहां है आज का प्लान, इसका हिंट मैंने आपको इस सॉन्ग से पहले दिया था, जिसे सुनकर अंदाजा लगाया है जयराम खोरवाल जी ने कि आज का शहर शायद कश्मीर हो सकता है। अनु बरजात्या जी बोल रही हैं कि दार्जिलिंग हो सकता है। माफ कीजिएगा, दोनों ही जवाब गलत है। कोई बात नहीं, अगर अभी तक नहीं बूझे तो अगला क्लू सुन लीजिए, शायद इसके बाद कुछ सूझे। तमिलनाडु के खूबसूरत नीलगिरी जिले में मौजूद है ये हिल स्टेशन, चाय और कॉफी लवर्स के लिए ड्रीम स्पेस, एडवेंचर के शौकीनों के लिए मस्ट गोइंग प्लेस, जहां नेचुरल ब्यूटी का कोटा कभी कम नहीं पड़ता। और खूबसूरत कोटागिरी के नाम से जिसे जानती है पूरी जनता। कैसे पहुंचेंगे, कहां पहुंचेंगे और पहुंचने के बाद क्या करेंगे, सब पर हो की बात। लेकिन इस ट्रैक में खोकर फिर से वापस आने के बाद

हाँ जी, वापस आ गए हैं। तो बता दूं आपको कि सिलसिला तस्वीर का अभी भी जारी है, जिसमें शामिल हैं आप आकाशवाणी के FM गोल्ड चैनल के जरिए, और मैं यानी नाज आज आपको लेकर आ गई हूँ तमिलनाडु के नीलगिरी में मौजूद खूबसूरत कोटागिरी में। ऊटी और कुन्नूर के बाद यहाँ का तीसरा सबसे बड़ा और मशहूर हिल स्टेशन है ये, जिसे नीलगिरी पर्वत श्रृंखला के सबसे बड़े पहाड़ी इलाकों में भी गिना जाता है। ऊटी से करीब 32 किलोमीटर दूर, यानी टैक्सी से करीब 1 से 1.5 घंटा, कुन्नूर से सिर्फ 21 किलोमीटर यानी सिर्फ 45 मिनट, मदुरई से करीब 5.5 घंटों का सफर, और कोयम्बटूर से अगर आप जाएंगे तो डिस्टेंस पड़ेगा 70 किलोमीटर और टाइम लगेगा 2.5 से 3 घंटों का। और अगर आप बाय एयर आ रहे हैं तो यही लास्ट वाला ऑप्शन आप चूज करेंगे, क्योंकि आपको लैंड करना होगा कोयम्बटूर इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जहां से आपको टैक्सी या बस दोनों कोटागिरी के लिए मिल जाएंगी आराम से। अच्छा, बाय ट्रेन आने के लिए आपके पास दो ऑप्शंस हैं, एक मेट्टुपालयम, और ये कोटागिरी से करीब 35 किलोमीटर दूर है, और दूसरा है कुन्नूर रेलवे स्टेशन, जहां से आप नीलगिरी माउंटेन रेलवे की टॉय ट्रेन का हाथ थाम सकते हैं।

और अपने इस सफर को और भी यादगार और खूबसूरत बना सकते हैं। फिलहाल सुनिए ये अगला गाना, जिसके बाद मैं आपको बताऊंगी कि कोटागिरी के अंदर कैसे और कहां-कहां करना है आना और जाना।

देखिए, ऑनलाइन एप्स के जरिए तो कैब बुक नहीं कर पाएंगे आप कोटागिरी में, लेकिन लोकल टैक्सीज और बसेस की आपको कमी बिल्कुल भी महसूस नहीं होगी, ये पक्की बात है। और उतनी ही पक्की बात ये भी है कि एक बार आप कोटागिरी पहुंच गए ना, तो टेंशन का कोटा हो जाएगा गुल और सुकून का टैंकर हो जाएगा फुल, क्योंकि यहां आपको मिलेंगे करीब 30,000 एकड़ में फैले चाय और कॉफी के खुशबूदार बागान, और जिसका बेस्ट एक्सपीरियंस आपको यहां ड्राइविंग के जरिए ही लेना चाहिए। ऐसा माना जाता है कि नीलगिरी पठार के पूर्वी किनारे पर उगाई जाने वाली यहां की चाय का स्वाद ऊटी के ऊपरी बागानों की चाय से थोड़ा अलग है। ऊटी से डोडा बेटा की तरफ जाने वाला करीब 15 से 20 किलोमीटर का एक रास्ता है जो इन्हीं चाय के बागानों से होकर गुजरता है, और जिसका साथ ही आपको यहां कोटागिरी आकर जरूर बनना चाहिए और साथ में जरूर एंजॉय करना चाहिए ये अगला ट्रैक, जिसमें भी चाय की ही बात हो रही है।

0: जय हिंद, मैं लेफ्टिनेंट कर्नल अंकिता श्रीवास्तव एक रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर हूँ और आकाशवाणी के 90 वर्ष पूरे होने पे मैं अपनी तरफ से बहुत सारा ब्लेसिंग्स देना चाहती हूँ आकाशवाणी को, क्योंकि आकाशवाणी का एक बहुत बड़ा रोल है मेरी जिंदगी में। स्पेशली ड्यूरिंग माई यूथ डेज मैं युववाणी में अपनी कलम से लिखी हुई कुछ कविताएं पढ़ने जाती थी और वो एक प्लेटफॉर्म ऐसा था जिसने मुझे बोलने का अवसर दिया और मैं अपने दिल की बात पूरी बोल पाती थी। बहुत लोग मुझे सुनते थे और मुझे बहुत सारी तारीफें भी मिलती थी और तारीफ के साथ मुझे जो छोटा सा अमाउंट मिलता था, मैं 90s की बात कर रही हूँ, वो बहुत कीमती होता था। मुझे जो वहां से सम्मान मिला वो भी बहुत ही दिल को छू लेने वाला था। बहुत बहुत शुभकामनाएं आकाशवाणी को।
1: माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र

0: मोदी जी का देश के सभी एग्जाम वॉरियर्स के लिए विशेष संदेश।
1: परीक्षा एक ऐसा अवसर है और परीक्षा के लिए हेल्दी कंपटीशन की भावना हमारी तैयारी को और बेहतरीन बनाती है।
0: NCPCR आयोजित कर रहा है परीक्षा पर्व, जिसके लाइव सेशन के दौरान आप परीक्षा से संबंधित प्रश्न एक्सपर्ट से पूछ सकते हैं, जो कि 23 अप्रैल से 23 मई तक चलेंगे। अधिक जानकारी के लिए www.ncpcr.gov.in पर लॉगिन करें।

तस्वीर है प्रोग्राम का नाम जिसे आप सुन रहे हैं AIR दिल्ली के FM गोल्ड चैनल पर मेरे यानी नास के साथ। दिल्ली से तमिलनाडु, तमिलनाडु से नीलगिरी और फिर वहां से आप मेरे साथ सीधा आ पहुंचे हैं खूबसूरत कोटागिरी, जो कभी मद्रास प्रेसिडेंसी के ग्रीष्मकालीन रिसॉर्ट्स में से एक हुआ करता था, जिसकी खोज के लिए एक बड़ा वाला थैंक यू बनता है मद्रास सरकार के दो फॉर्मर सिविल सर्वेंट्स का। जी हाँ, साल 1819 के आसपास का समय था वो, जब कुछ क्रिमिनल्स का पीछा करते हुए इत्तेफाकन ये सिविल सर्वेंट्स यहाँ पहुंचे और उन्होंने महसूस किया कि ये जगह बहुत ही खूबसूरत है और कुछ कुछ यहाँ का मौसम जो है वो यूरोप के जैसा है, और बस यहीं से बदल गई कोटागिरी की किस्मत और डेवलपमेंट के जरिए ये जगह बन गई और भी खूबसूरत।

नीलगिरी पहाड़ियाँ बेसिकली कोटा जनजातियों का घर रही हैं और कोटागिरी जिसका मतलब भी है कोटाओं के पहाड़।

0: वक्त में इस जगह को कोटा कैरी या कोटा घेरी के नामों से भी जाना जाता था, जिसका मतलब होता है कोटाओं की गली।
1: मीडियम वेव 213.67 मीटर को 1404 किलोहर्ट्ज़मा यो आकाशवाणी को गान्तोक केन्द्र हो। साथ ही इस समय श्रोताहरूले हामीलाई एफएम कञ्चनजंघा 103 मेगाहर्ज अनि न्यूज अन एआईआर मोबाइल एप मार्फत पनि सुनिरहनु भएको छ। आउनुहोस् श्रोता, अब प्रस्तुत छ कार्यक्रम नारी संसार।

0: उमंग सीआईईटी प्रस्तुत करता है
1: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: आप सभी श्रोताओं का हार्दिक स्वागत है उमंग कार्यक्रम में। नमस्कार, मैं हूं विमलेश।
0: और मैं हूं अजीत। नमस्कार श्रोताओं, शुरुआत करते हैं एक खूबसूरत विचार से जिसे हमें भेजा है ग्रामपुत की कला कवर्धा छत्तीसगढ़ से राधेश्याम पांडे, वीणा पांडे, विनय शंकर पांडे, नयन पांडे और सुमांशु पांडे जी ने। बड़ा खूबसूरत लिखा है।
2: लिखते हैं, मुश्किलों को कुछ यूं हराते हैं, चलो आज थोड़ा मुस्कुराते हैं।
0: वाह, बहुत सुंदर विचार, मुश्किलों को कुछ यूं हराते हैं, चलो आज थोड़ा मुस्कुराते हैं। जी हाँ श्रोताओ, मुस्कान वो रोशनी है जो अंधकार और निराशा से भरे किसी भी हृदय को उजाले से भर सकती है। याद रखिए,
2: आपकी मुस्कान किसी के जीवन का सबसे खूबसूरत उपहार बन सकती है। आइए अब सुनते हैं संदेश भेजने वाले श्रोताओं के नाम।
0: तो सबसे पहला संदेश हमें मिला है जेल रोड जालंधर से, रोशन जहां, मन्नत जहां और इशरत जहां का।
2: केंद्रपाड़ा ओडिशा से देशदीप दास जी का।
0: और डोंडी लोहारा बालोद छत्तीसगढ़ से देवशंकर तामुरिया, अजय देव तामुरिया, तुषार देव तामुरिया, डॉली बेबी, पूजा, पुष्कर, लेहान, अजिज्ञासा के साथ विराट, तेजस्वी और गौरव तामुरिया।
2: हिंगोली महाराष्ट्र से शाहजी बोड़खे, राजेश साबले पाटिल, शेख अल्लाह बख्श।
0: और नजदीक बस स्टैंड बुर्ज हनुमानगढ़ फजिलका पंजाब से रमन वर्मा, अमन वर्मा, दिव्यांश वर्मा और डॉक्टर मदनलाल वर्मा।
2: हार्दिक आभार आपके संदेशों के लिए और जो आपने प्रश्नों के उत्तर भेजे उनके लिए भी हार्दिक आभार।
0: आप सबका हार्दिक स्वागत है एक बार फिर से हमारी आपकी सबकी जानी पहचानी श्रृंखला ये भी जानिए में। साथियों, गर्मी का मौसम है और पूरे भारत में भीषण गर्मी पड़ रही है।
2: हमें आपकी चिंता है और चाहते हैं कि ऐसे मौसम में आप अपना और आपके अपनों का जरूर ख्याल रखें।
0: जी,
2: तो इस सप्ताह हमारी चर्चा का विषय रहेगा कैसे रखें अपना ख्याल इस गर्मी के मौसम में। तो आइए अजीत जी आपसे शुरुआत करते हैं।
0: जी विमलेश जी, तो श्रोताओ सबसे पहली बात, ऐसे मौसम में सबसे पहली सलाह ये दी जाती है कि 12 बजे से 4 बजे तक बाहर ना निकलें।
2: लेकिन अजीत जी, हमारे श्रोता ये जरूर जानना चाहेंगे कि 12 बजे से 4 बजे तक के समय में ऐसा क्या होता है जिसके कारण ये सलाह दी जाती है।
0: विमलेश जी, ऐसे तो गर्मी के मौसम में हमें हर समय अपना ख्याल रखना ही चाहिए, लेकिन ये समय खास होता
2: है जी,
0: क्योंकि सुबह से तो गर्मी पड़ती ही है, लेकिन पृथ्वी की परिक्रमा की स्थिति के कारण 12 बजे सूर्य की किरणें पृथ्वी पर सीधी पड़ती हैं, जिसके कारण इस समय तापमान अपने चरम पर होता है।
2: जी, और जब तापमान अपने चरम पर होता है तो इस समय लू लगने की संभावना बहुत अधिक हो जाती है, जिसके कारण उल्टी, चक्कर आना, बेहोशी, मति भ्रम और कभी कभी जान को भी खतरा हो सकता है।
0: लेकिन विमलेश जी, एक बार फिर से मैं उसी प्रश्न पर आता हूँ, क्या पृथ्वी का गर्म होना और 12 बजे सूर्य की किरणों का सीधा पड़ना ही एकमात्र कारण है या इस समय कुछ और विशेष भी होता है?
2: जी, बहुत अच्छा प्रश्न है अजीत जी। इसे हमें ये जानना भी बहुत जरूरी है कि सूर्य की किरणों के सीधे पड़ने का प्रभाव पृथ्वी के धरातल पर क्या पड़ता है,
0: तो इसे जरा विस्तार से बताइए।
2: अजीत जी, गर्मी के मौसम में सुबह से सूर्य की किरणें जब पृथ्वी पर पड़ती हैं तो भूमि गर्म हो जाती है, या दूसरे शब्दों में वो गर्मी को सोख लेती है
0: जी।
2: और 12 बजे सूर्य की किरणें पृथ्वी पर सीधी पड़ती हैं, जो बाद में धीरे धीरे तिरछी होने लगती हैं, इसलिए उसका तापमान पृथ्वी पर थोड़ा कम होने लगता है
0: जी।
2: लेकिन इस दौरान भूमि अपनी गर्मी धीरे धीरे छोड़ती है, जिसके कारण गर्मी और अधिक बढ़ जाती है। इसे थर्मल लैग कहते हैं।
0: क्या कहते हैं?
2: थर्मल लैग।
0: अच्छा, तो शायद यही कारण है कि हमें गर्मी 12 बजे से अधिक 1 से 4 बजे के दौरान महसूस होती है
2: जी।
0: तो क्या हम थर्मल लैग को बोलचाल की भाषा में भभक उठना या भभका कह सकते हैं?
2: जी बिल्कुल कह सकते हैं। उस समय ऐसा लगता है जैसे भूमि से गर्मी निकल रही है, ऊपर से सूर्य का ताप और नीचे से पृथ्वी का ताप, यानी एक तरह से दोहरी मार।
0: जी यही बात है, एक तरह से दोहरी मार, बिल्कुल सही कहा। तो ऐसे समय में हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए?
2: देखिए, कहा जा सकता है कि यदि बहुत जरूरी हो तभी बाहर निकलें।
0: लेकिन विमलेश जी, यदि निकलना ही पड़े तो?
2: यदि निकलना ही पड़े तो सर पर टोपी या कोई कपड़ा जरूर रखें। और हाँ, प्यास लगे या न लगे थोड़ा थोड़ा पानी जरूर पिएं। ऐसे में नींबू पानी, नारियल पानी और ORS बहुत लाभकारी होते हैं
0: जी।
2: और हाँ, कोशिश करें जहाँ कहीं छाया मिल जाए वहाँ थोड़ी देर जरूर सुस्ता लें।
0: जी हाँ,

0: ऐसे समय में बहुत जरूरी ये भी है कि हल्के और ढीले कपड़े पहने
1: जी।
0: कोशिश करें कि हल्के सूती कपड़े हों और उनका ज्यादा गहरा रंग ना हो
1: जी।
0: सफेद कपड़ों और हल्के रंगों के कपड़ों की सलाह दी जाती है क्योंकि वे सूर्य की किरणों को परावर्तित करने में सक्षम होते हैं।
1: प्रयास करें कि त्वचा ढकी हुई हो क्योंकि सनबर्न का खतरा भी बना रहता है और धूप का चश्मा जरूर पहने क्योंकि सूरज की तेज किरणों का असर हमारी आंखों पर भी पड़ सकता है।
0: जी तो श्रोताओं ये थी हमारी आज की जानकारी जिसके द्वारा हमने बताया कि कैसे रखें अपना ख्याल गर्मी के इस मौसम में। हम तो फिर से कहेंगे कि अपना
1: और अपने अपनों का ख्याल जरूर रखें, खासकर बच्चों और बुजुर्गों का। तो अब सुनिए आज का प्रश्न है,
0: थर्मल लैग किसे कहते हैं? प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए,
1: थर्मल लैग किसे कहते हैं?
0: और भेज दीजिए अपना उत्तर 8800440559 पर जो हमारा IVRS नंबर है, और साथ ही साथ आप हमारे ईमेल के पते पर भी अपना संदेश भेज सकते हैं। हमारे ईमेल का पता है audio@ciet.nic.in।
1: इंस्टा, फेसबुक, एक्स और लिंक्डइन पर भी आप CIET NCERT को फॉलो कर सकते हैं।
0: तो श्रोताओं अब बारी है आज के शैक्षिक कार्यक्रमों की, तो आइए सुनते हैं आज का पहला कार्यक्रम। शीर्षक है आग बरसाती धूप।
1: इस कार्यक्रम में एक नाटक के द्वारा गर्मी से बचाव के उपायों के बारे में बताया गया है और विशेष रूप से चर्चा की गई है कि गर्मी के मौसम में बच्चे अपना ध्यान किस प्रकार से रखें।
2: आग बरसाती धूप।
3: विद्या, क्या है? आम के बाग में चलते हैं।
4: क्यों?
3: वहाँ बहुत सारे आम हैं।
4: अच्छा, तुमने खुद देखे?
3: हाँ।
4: अच्छा, तो फिर चलते हैं, जल्दी चलो।
3: धीरे से, माँ उठ जाएगी।
4: हाँ हाँ, धीरे से चलो ना।

0: वाह, कितने ढेर सारे आम हैं। अब तो मजा आ जाएगा।
1: हाँ, पर कितनी तेज धूप है और हवा भी गर्म चल रही है।
0: छोड़ो भी, वो रहे आम।
1: हाँ
0: आ चलो खाते हैं। अरे यहाँ पर तो बहुत सारे आम गिरे हुए हैं। लो विद्या, एक तुम भी खाओ, एक मैं खाता हूँ।
1: आहा, इसकी खुशबू कितनी अच्छी है। वाह, मजा आ गया, कितना मीठा आम है।
0: हाँ पर गर्मी भी कितनी हो रही है।
1: हाँ मोहन, गर्मी तो मुझे भी कितनी लग रही है। देखो ना, कितना पसीना आ रहा है मुझे।
0: चलो नदी में नहा कर आते हैं,
1: फिर तो मजा आ जाएगा और गर्मी भी कम हो जाएगी। आओ जल्दी चले।
2: कितनी तेज धूप है, जैसे आग बरस रही है। आज तो आधा खेत भी नहीं जोत पाया। अरे इन दोनों बच्चों को देखो, कहाँ भागे जा रहे।
1: मोहन और तेज दौड़ो, देखो मुझे छू सकते हो।
0: कोशिश करता हूँ।
1: अरे मोहन, मोहन क्या हो गया तुझे? अरे अरे तो गिर पड़ा। अरे मोहन, तुम कुछ बोलते क्यों नहीं? मोहन मोहन,
2: मैं पहले कहता था ना कि इन बच्चों को कुछ होकर रहेगा, भला ये भी कोई घर से निकलने का टाइम है? लगता है कुछ गड़बड़ है, चलूं देखो। अब भागना मत मेरे हीरा मोती, मेरे बैलों की जोड़ी, मैं अभी आया, यहीं पेड़ की छांव में रहना। हाँ
1: अरे मोहन मोहन, क्या हो गया तुझे? तो कुछ बोलता क्यों नहीं?
0: विद्या विद्या,
1: अरे ये तो बेहोश हो गया। मोहन मोहन मोहन, कुछ बोल मोहन।
2: क्या बात है बेटे, क्या बात है?
1: देखो ना हामिद काका, मोहन को क्या हो गया?
2: लगता है इसे लू लग गई है। बेटा चलो जल्दी से उठाकर इसे छांव में ले चलते हैं।
1: इसे डॉक्टर के पास ले चलिए काका।
2: हाँ, डॉक्टर के पास ही चलते हैं।

0: फ़ारेनहाइट तक आ गया है
1: जी।
0: भाई अब घबराने की जरूरत नहीं है।
2: ये लू क्या होती है डॉक्टर साहब?
0: बेटा बहुत तेज गर्म हवा को लू कहते हैं। तेज गर्मी के मौसम में गर्म हवा के प्रभाव से शरीर की ताप नियंत्रण व्यवस्था काम करना बंद कर देती है
2: जी,
0: जिसके कारण शरीर का तापमान अचानक बाहरी तापमान के अनुसार बढ़ने लगता है।
2: इससे क्या होता है?
0: भाई तापमान बढ़ने से शरीर में पानी की कमी हो जाती है और पसीना आना बंद हो जाता है और मरीज बेहोशी की हालत में चला जाता है।
3: डॉक्टर साहब कैसे बच सकते हैं इससे?
0: भाई सावधानी ही असली बचाव है। ज्यादा तेज धूप और गर्मी में बाहर नहीं निकलना चाहिए और अगर निकलना बहुत जरूरी हो तो छतरी या सर पर कपड़ा रखकर निकलना चाहिए। लगातार पानी वगैरह पीते रहना चाहिए।
3: डॉक्टर साहब नींबू पानी, गन्ने का रस और कच्चे आम को उबालकर बनाया गया पन्ना भी तो फायदेमंद होता है।
0: हाँ हाँ हामिद भाई, खीरा, ककड़ी, तरबूज, खरबूजा वगैरह मौसमी फल भी खूब खाने चाहिए। और साधारण दिनों से पानी 3 गुना ज्यादा पीना चाहिए
3: जी।
2: और अगर लू लग जाए तो
3: प्राथमिक उपचार क्या करना चाहिए?
0: भाई लू लगे व्यक्ति के शरीर के तापमान को जल्दी ही नीचे लाने का प्रयास करना चाहिए। ठंडा पानी या बर्फ आदि से शरीर को पोंछकर तापमान को 38 डिग्री सेल्सियस तक लाने का प्रयास करना चाहिए
2: जी।
0: और डॉक्टर की सलाह भी तुरंत लेनी चाहिए।
2: मोहन को होश आ गया डॉक्टर साहब, मोहन को होश आ गया।
0: अभी लेटे रहो मोहन बेटे, अभी तुम्हें आराम की जरूरत है।
3: डॉक्टर साहब की बताई बातें याद रहेंगी कि नहीं?
2: जी।
3: अब तो नहीं घूमोगे कड़ी धूप और गर्मी में?
2: नहीं काका, मुझे सब याद है जो डॉक्टर साहब ने बताया।
0: कोई बात नहीं, चलो एक बात फिर बता देता हूँ। गर्मी के दिन घर में बिताओ, खीरा ककड़ी तरबूज खाओ, नींबू पानी लस्सी पियो, 3 गुना पानी पियो, गन्ने का रस आम का पन्ना गर्मी में मत करो मना, तेज धूप में कभी न खेलो, गर्मी के दिन घर में बिताओ, गर्म हवा से रहे हम दूर, ठंडक में खेले भरपूर।
3: गर्म हवा से रहे हम दूर,
4: ठंडक में खेले भरपूर।
3: ठंडक
4: में खेले भरपूर।

0: आग बरसाती धूप।
1: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम आग बरसाती धूप, और आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम लांस नायक अल्बर्ट एक का।
2: इस कार्यक्रम में भारतीय सेना के वीर योद्धा लांस नायक अल्बर्ट एक्का के जीवन और सन 1971 में भारत पाकिस्तान युद्ध के दौरान उनके पराक्रम और शौर्य की रोमांचक गाथा बताई गई है। अपने प्राणों का बलिदान देने के लिए कृतज्ञ राष्ट्र ने उन्हें मरणोपरांत सर्वोच्च सैनिक सम्मान परमवीर चक्र से सम्मानित किया।
3: CIET NCERT द्वारा प्रस्तुत है प्रेरक गाथाओं की श्रृंखला इन्हें हमारा सलाम। तो आइए इस श्रृंखला में सुनते हैं कार्यक्रम परमवीर चक्र विजेता लांस नायक अल्बर्ट एक्का। नमस्कार साथियों।
4: साथियों नमस्कार।
3: साथियों, भारत रणबांकुरों और वीरांगनाओं की भूमि है। यहाँ की माटी ने ऐसे ऐसे वीरों को जन्म दिया है जिन पर सिर्फ देश ही नहीं विश्व इतिहास भी हमेशा गौरव का अनुभव करेगा।
4: जी हाँ, इन वीरों ने समरांगन में अपने रक्त से जिस वीरता की गरिमामय गाथा लिखी वो कभी भी भुलाई नहीं जा सकती। सच तो ये है कि इन वीरों की गाथाएं पीढ़ी दर पीढ़ी विश्व के इतिहास पटल पर गुंजायमान रहती हैं।
3: तो आज हम एक ऐसे ही वीर की गाथा प्रस्तुत करने जा रहे हैं जिसका पराक्रम याद किया जाता रहेगा। भारत माता के वह वीर सपूत थे लांस नायक अल्बर्ट एक्का।
4: लांस नायक सुनकर ही आप समझ गए होंगे कि अल्बर्ट

0: एक का भारतीय स्थल सेना से संबंध रखते थे।
1: जी हाँ साथियों, लांस नायक एक सैनिक पदवी है। लांस नायक अल्बर्ट एक्का ने सन 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध में पूर्वी मोर्चे पर ऐसे असीम शौर्य और पराक्रम का परिचय दिया जो अतुलनीय है।
0: उनकी बहादुरी ने दुश्मन के दांत खट्टे कर दिए और दुश्मन को भारी पराजय का सामना करना पड़ा
1: और इस वीरता के कारण उन्हें सैनिक सम्मान परम वीर चक्र से सम्मानित किया गया।
0: उनके शौर्य को देखकर एक यूनिट कमांडर ने कहा था, ऐसा लगता था जैसे स्वयं महाकाल शत्रुओं के विध्वंस के लिए प्रकट हो गए हैं।
1: इतना ही नहीं साथियों, शत्रुओं के खेमे में भी उनकी बहादुरी की चर्चा बड़े सम्मान से की जाती थी। तो आइए सुनते हैं अल्बर्ट एक्का की कहानी।
0: साथियों, भारत संघ का एक सुंदर पूर्वी राज्य है झारखंड। यहाँ के पर्वतीय स्थल, सदाबहार जंगल, कलकल करती पहाड़ी नदियाँ और सीधे सादे आदिवासी और उनका कर्णप्रिय आदिवासी संगीत अनायास ही लोगों का मन मोह लेता है।

0: नाम से ही विदित होता है साथियों, जैसा अभी कहा गया झारखंड, झार यानी झाड़ या पेड़, तो झारखंड का अर्थ हुआ ऐसा भूखंड जो वृक्षों या जंगलों से भरा हुआ हो। झारखंड राज्य एक पठार पर बसा है जिसे छोटा नागपुर का पठार कहते हैं।
1: इस राज्य में वन और खनिज संपदाओं की भरमार है।
0: इसी झारखंड राज्य का एक जिला है गुमला, और इस जिले में एक प्रखंड या ब्लॉक है डुमरी। इसी डुमरी ब्लॉक के जरी नामक गांव में 27 दिसंबर 1942 को एक आदिवासी परिवार में अल्बर्ट एक्का का जन्म हुआ था।
1: इनके पिता का नाम जूलियस एक्का था और माँ का नाम मरियम एक्का। माता पिता शुरू से ही पढ़ाई लिखाई के विषय में बहुत जागरूक थे, इसलिए ठीक समय पर उन्होंने बेटे अल्बर्ट को पढ़ाई के लिए स्कूल भेजा।
0: उनकी प्रारंभिक शिक्षा उसी जिले के एक स्कूल में हुई। आदिवासी होने के कारण तीर धनुष चलाने और शिकार खेलने में उनकी विशेष रुचि थी। संभवतः इसी रुचि ने उन्हें आगे चलकर बेहतर सैनिक बनने में उनकी सहायता की।
1: उन दिनों भारत में हॉकी का खेल बहुत ही लोकप्रिय था। अल्बर्ट एक्का हॉकी के भी अच्छे खिलाड़ी थे। अपने स्कूली दिनों में वे खेल के मैदान में घंटों अभ्यास करते थे और पसीना बहाते थे। उनके नेतृत्व में स्कूल ने कई टूर्नामेंट जीते।
0: झारखंड आदिवासी बहुल राज्य है और सेना में जाने का प्रचलन वहाँ के युवाओं में आम बात है। अल्बर्ट भी आसपास के गांव में जवानों को सेना में भर्ती होते देखते थे। जब वे जवान छुट्टियों में गांव आते थे तो अल्बर्ट अक्सर उनसे बातें करते। उन्हें सेना का जीवन बहुत भाने लगा था, और फिर ऐसा हुआ कि धीरे धीरे उन्होंने सेना में जाने का मन बना लिया।
1: और ठीक अपने जन्मदिन पर 27 दिसंबर 1962 को यानी 20 वर्ष की आयु में वे भारतीय सेना में भर्ती भी हो गए।
0: उन्होंने फौज में बिहार रेजिमेंट से अपना कार्य शुरू किया। बाद में जब 14th गार्ड्स का गठन हुआ तब अल्बर्ट अपने कुछ साथियों के साथ वहां स्थानांतरित कर दिए गए। उन दिनों उनकी यूनिट बिहार रेजिमेंट में थी।
1: अनुशासन, श्रेष्ठ कर्तव्य निर्वहन और निष्ठा के कारण वे धीरे धीरे सिपाही से लांस नायक की पदवी तक पहुंच गए।
0: और फिर आया सन 1971 का साल। भारत के पूर्वी हिस्से में युद्ध के बादल मंडराने लगे। 1947 में जब भारत का विभाजन हुआ तो बंगाल का एक बहुत बड़ा हिस्सा पाकिस्तान में चला गया था, जिसे पूर्वी पाकिस्तान कहते थे और ये अब बांग्लादेश के नाम से जाना जाता है।
1: जब यहाँ की स्थितियाँ बिगड़ने लगी तो भारत को मानवीय आधार पर युद्ध में उतरना पड़ा।
0: 3 दिसंबर 1971 का दिन भारतीय और पाकिस्तानी सेनाओं के बीच भीषण युद्ध शुरू हो चुका था।

0: उनकी यूनिट को गंगा सागर के पाकिस्तानी गढ़ पर कब्जा करने का आदेश दिया गया। इसे जीतना भारत के लिए सामरिक तौर पर बहुत जरूरी था।
1: इसे जीतना इसलिए जरूरी था कि इसके बिना भारतीय फौज ढाका तक नहीं पहुंच सकती थी।
0: दुश्मन अपनी पूरी तैयारी के साथ बैठा था। यहाँ एक जगह है अखौरा। पाकिस्तानी सेना ने यहाँ अपना पूरा जमावड़ा लगा दिया था।
1: सेना दृढ़ संकल्प के साथ आगे बढ़ी, जिनमें से एक यूनिट की कमान थी लांस नायक एल्बर्ट एक्का के पास।
0: शत्रुओं द्वारा टैंक विरोधी मिसाइलों को तैनात कर दिया गया था ताकि भारतीय सेना की बढ़त को रोका जा सके। सामरिक दृष्टि से पाकिस्तानी सेना बहुत बेहतर स्थिति में थी।
1: और तो और, वहाँ पाकिस्तानी सेना के जवान भी बहुत भारी संख्या में तैनात थे। कुल मिलाकर गंगा सागर गढ़ पर कब्जा करना एक दुस्साहस और मौत को गले लगाने के अलावा कुछ नहीं था।
0: लेकिन लांस नायक एल्बर्ट एक्का के नेतृत्व में यूनिट आगे बढ़ती रही। उन्होंने तय कर लिया कि वे अपना मिशन पूरा करके ही रहेंगे। वे आगे बढ़े ही थे कि दूसरी ओर से गोलियों की भयंकर बौछारें आने लगीं।
1: वो जगह माइंस से पटी हुई थी, इस कारण भी बहुत से भारतीय सैनिक हताहत होने लगे। दुश्मनों की मशीन गने बंकरों से लगातार गोलियां बरसा रही थी। भारतीय सैनिक रेंगते हुए इंच इंच करके आगे बढ़ रहे थे।
0: लांस नायक एल्बर्ट एक्का को समझ में आ गया था कि जब तक पाकिस्तानी मशीन गनों को शांत नहीं किया जाएगा, भारतीय सैनिक बहुत बड़ी संख्या में हताहत होते रहेंगे।
1: और इसके लिए उन्होंने सबसे पहले हथगोलों से पाकिस्तानी बंकरों को निशाना बनाया। इसमें उन्हें थोड़ी सफलता भी मिली, लेकिन यह काफी नहीं था। एक पाकिस्तानी बंकर से अभी भी लगातार गोलियों की बौछार आ रही थी।
0: और अब समय था इतिहास रचने का। अल्बर्ट एक्का लगातार आगे बढ़ते गए। उनके पास हथगोले थे। गोलियों की बौछारों से बचते बचाते वे किसी तरह उस बंकर के पास पहुंच गए और उस बंकर में बने एक छेद से अंदर हथगोला फेंक दिया।
1: जब वहां पर हथगोला फटा और कई पाकिस्तानी सैनिक उसी समय काल कलवित हो गए, लेकिन अभी भी कुछ सैनिक बचे थे जो बंकर के अंदर से लाइट मशीन गनों से गोलियों की लगातार बौछार कर रहे थे।
0: फिर क्या था, लांस नायक एल्बर्ट एक्का अकेले ही उस बंकर में कूद गए
1: और फिर शुरू हुआ आमने सामने का युद्ध। एल्बर्ट एक्का काल बनकर दुश्मनों पर टूट पड़े। अपने बंदूक की संगीन और बट से उन्होंने दुश्मनों पर प्राण घातक हमला किया और उन सैनिकों को भी मौत के घाट उतार दिया। उस बंकर में दुश्मन के सारे सैनिक एल्बर्ट एक्का की बहादुरी के कारण मारे जा चुके थे।
0: लेकिन इस युद्ध में एल्बर्ट एक्का को गंभीर चोटें भी आईं और वे देश के लिए वहीं शहीद हो गए। उनकी आंखें बंद हो चुकी थीं, लेकिन उनकी इसी वीरता ने भारत के लिए ढाका पहुंचना आसान कर दिया और भारत की जीत सुनिश्चित कर दी।
1: इसी युद्ध के परिणाम स्वरूप दुनिया के मानचित्र पर एक नया देश उभरा, जिसे आज हम बांग्लादेश के नाम से जानते हैं।
0: इस कल्पनातीत शौर्य, पराक्रम और बहादुरी के लिए लांस नायक एल्बर्ट एक्का को मरणोपरांत भारत के सर्वोच्च सैनिक सम्मान परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया।

0: इतना ही नहीं, बांग्लादेश ने भी इस महापराक्रमी योद्धा को फ्रेंड्स ऑफ लिबरेशन वॉर ऑनर से नवाजा।
1: भारत के सैन्य इतिहास में संभवतः लांस नायक अल्बर्ट एक का अकेले वह युद्ध नायक हैं जिन्हें दो राष्ट्रों ने दो अलग अलग सम्मानों से अलंकृत किया। एक और बात

0: जो अल्बर्ट एक्का के बारे में और भी अनूठी है,
1: और वो ये कि वे भारत के आदिवासियों में परम वीर चक्र से सम्मानित किए जाने वाले शायद पहले व्यक्ति हैं।
0: जी हाँ, लांस नायक अल्बर्ट एक्का भारत और बांग्लादेश के सैन्य इतिहास में एक बड़े सितारे बन चुके हैं,
1: जिनकी आभा कभी भी धूमिल नहीं होगी। इस समर नायक को हमारा सलाम।
2: परम वीर चक्र विजेता लांस नायक अल्बर्ट एक्का। अभी आप सुन रहे थे ये कार्यक्रम।
3: अकादमिक परामर्श राजेश कुमार निमेश, वाचन अजीत होरो और वंदना अरिमर्दन, तकनीकी निर्देशन बटिलैंग लिंडो, ध्वनियांकन मयंक कुमार, निर्माण सहयोग सौम्या मलिक, आवरण सज्जा अमित कुमार और कुसुमलता, आलेख अजीत होरो, निर्माण परामर्श वंदना अरिमर्दन और विमलेश चौधरी, ध्वनि संपादन निर्देशन एवं निर्माण तनु गुप्ता,
2: तथा प्रस्तुति CIET NCERT नई दिल्ली भारत। लांस नायक अल्बर्ट एक्का, अभी आपने सुना ये कार्यक्रम। और अब इसी के साथ हम अपने आज के उमंग प्रसारण को विराम देने की आज्ञा चाहेंगे। तो तब तक के लिए अजीत
4: और विमलेश को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम के साथ कल तक के लिए आज्ञा दीजिए।
2: नमस्कार।
5: उमंग उमंग उमंग उमंग।
6: यतिन्जेल प्रस्तुत थियो NCERT माथि तयार पारिएको एक प्रायोजित कार्यक्रम। यो आकाशवाणी गान्तोक हो।

तो भाई ये गाना था कानून और मुजरिम फिल्म से, आवाजें थी सुरेश वाडकर और उषा मंगेशकर की। हमने पूछा था इसके शायर कौन है, चलिए उसकी बात भी करेंगे, लेकिन उससे पहले ये संदेश।

0: मिलता है।
1: एक शानदार शख्सियत।
2: मैंने रंगमंच में कम से कम 10 साल जयपुर में थिएटर किया, वो एक लड़कपन का दौर था हमारा।
1: विविध भारती परिवार के सदस्य राजेश रेड्डी।
2: वो मेरे पूरे करियर का स्वर्णिम दौर था, उस टीम का जवाब नहीं जिसने मुझे इतने चढ़ से इन चीजों को संवारने और साकार करने का अवसर दिया।
1: कुछ बेमिसाल किस्से।
2: मैंने पढ़ा जाने कितनी उड़ान बाकी है, इस परिंदे में जान बाकी, और जी म्यूजिक के साथ शुरू हो गए, ये किसी शायर के साथ नहीं हुआ।
1: आज के मेहमान राजेश रेड्डी 13 मई शाम 4 बजे और 14 मई सुबह 10 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: जाने

इस खूबसूरत से गाने के लिए हमने पूछा था इसके शायर का नाम, तो कुछ हमारे पास कमेंट्स आए हैं। आप सबने लिखा है कि इसके शायर थे अहमद वसी। जी हाँ, अहमद वसी का ये कलाम था, फिल्म थी कानून और मुजरिम। और इसको स्क्रोलिंग के बाद मुझे न जाने कितने गानों में, कितने कमेंट्स में ये गाना नजर आया। आप सबकी पसंद शायद मुझसे काफी हद तक मिलती है। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद जो इस कार्यक्रम में मिलते जुलते गानों को आपने भी चुना। हमारे एक साथी ने लिखा है कि शाम मेरी मसूरी में गुजरी थी, बहुत ही अच्छा, ढलते सूरज के साथ वो सूरज की किरणें, पहाड़ों के पीछे से वो छुपना, वो नजारा बहुत सुंदर था। मैंने फोटो खींचकर अभी भी जो मेरे पास है, सच में शाम तो मुझे बहुत अच्छी ही लगती है। मैं हर रोज ही, कल ही मैंने एक फोटो खींची है। जैसा कि हमने पूछा भी था कि आपकी सबसे खूबसूरत यादगार शाम कौन सी है, आप अपने अनुभव हमारे साथ साझा कीजिए। वैसे होता है ना साथियों कि हम जब अपने अनुभव साझा करते हैं तो वही अनुभव किसी दूसरे के लिए आशा की किरण बन जाते हैं, उनके होठों की मुस्कुराहट बन जाते हैं। एक कमेंट में साथी ने लिखा है कि हाँ जी, शाम तो हर किसी को अच्छी लगती है। मेरी मम्मी के शाम के टाइम जब शादी नहीं हुई तो वो नानी के घर नदी के किनारे जाया, क्या लिखा है इन्होंने, जाया करती थी। अरे वाह। एक कमेंट में साथी ने लिखा है, मेरी जिंदगी की सबसे अच्छी शाम वो है जब मेरी कक्षा 12 का बोर्ड का परिणाम आया था और मैंने 96.96% के साथ पूरे गांव में टॉप किया था। तो भाई सबसे पहले आपको बहुत बहुत बधाई उसके लिए। और आगे लिखा है कि अड़ोसी पड़ोसी रिश्तेदार सब मिलने आए हुए थे और मेरे माता पिता की आंखों में गर्व की चमक को देखकर मेरे लिए वो शाम अमिट हो गई। बिल्कुल, बहुत खुशी का पल होता है माता पिता के लिए, गर्व का पल होता है। माता पिता अपने बच्चों से बहुत सारी उम्मीदें रखते हैं और जब वो उम्मीदें साकार हो जाती हैं तो यकीनन उनका सर गर्व से उठ जाता है। एक साथी ने लिखा है कि अपने वादे के मुताबिक एक छोटे से अंतराल के बाद मैं आपके सामने कुछ संभावित गीतों की फेहरिस्त पेश करता हूं। ये आपकी लिस्ट में से मेल खा लें तो मैं उसे अपनी खुशनसीबी समझूंगा। इन्होंने कुछ गाने लिख भेजे हैं। आगे लिखते हैं कि ये मेरे कुछ तराने हैं, अगर आपकी लिस्ट से मेल खाएं तो बड़ी खुशी महसूस होगी, अगर न भी मेल खाएं तो कोई गम नहीं, अगली बार फिर नई उम्मीद के साथ कोशिश करेंगे। बिल्कुल जी, ये उम्मीद पर तो दुनिया कायम है। और एक साथी ने लिखा है कि जैसे कि एक आसमान का एक तारा हमारी कोई ख्वाहिश पूरी करे तो वो क्या होगी। तो एक साथी लिखते हैं कि ख्वाहिश पूरी करने की बात हो तो मैं यही ख्वाहिश मांगूंगी कि मेरे वे सभी जो अपने जो मुझसे बिछड़ गए हैं वे मुझे फिर से मिल जाएं। तो एक साथी लिखते हैं कि अपनी ख्वाहिशों की बात पूछी है तो इंसान की जिंदगी किसी किसी की पूरी होती है, विविध भारती के सिवा कोई चैनल नहीं है, बस यही मेरी ख्वाहिश है। तो बस जुड़े रहिए विविध भारती के साथ। एक कमेंट आया है, लिखते हैं, दुनिया में सबसे अच्छी चीज जिसे इंसान को स्वीकार करना चाहिए वो है जीवन की वर्तमान स्थिति को प्रेम और समझदारी के साथ स्वीकार करना। इसे ही स्वीकार कहते हैं।

हैं जो मन की शांति, संतोष और हर हाल में खुश रहने की कुंजी है, क्योंकि जीवन हमेशा हमारी मर्जी के अनुसार नहीं चलता। बिल्कुल सही बात आपने लिखी है कि हमारी मर्जी के अनुसार नहीं चलता। हर शाम अपने समय पे आती है, सूरज अपने समय पे उदय होता है, और हर सुबह सूरज का उदय हमारे अंदर उम्मीद जगाता है, जीने का हौसला देता है कि उठो, जागो और अपने लक्ष्य तक पहुंचने का प्रयास करो। तो सुनिए ये गाना, बताइए फिल्म का नाम।

हेमंत कुमार का गाया ये गाना आप सुन रहे थे और हमने पूछा था इस फिल्म का नाम, आप सभी ने लिखा हरिश्चंद तारामती फिल्म लाजवाब गीत हेमंत कुमार जी की आवाज में। तो भाई एक साथी लिख रहे हैं कि बेहतरीन गीत है ये हरिश्चंद तारामती फिल्म से, तो दूसरे साथी बहुत खुश हैं, उन्होंने लिखा है और उनकी खुशी दोगुनी हो गई है और उनको हम बहुत बहुत बधाई भी दे रहे हैं, आप सबको बधाई। और लिखते हैं कि मेरी इबारत का दूसरा गीत भी शामिल, वाह सूरज रहे तू जलते रहना। तो भाई आप सबको बधाई, बहुत बहुत बधाई कि आप सबकी पसंद हमसे मिल गई आज के इस कार्यक्रम में। एक कमेंट पे लिखते हैं कि विविध भारती सुरीली धड़कन शायराना तान आप सभी को नमस्कार, और सुरीली धड़कन के लिए इस नए निराले मनोरंजक कार्यक्रम सुरीला सफर में आज प्रकृति के सौंदर्य को जिस तरह समाहित किया गया है काबिले तारीफ है, और दोपहर की चिलचिलाती धूप में ये गीत ठंडी फुहार का काम कर रहे हैं। तो वहीं दूसरे साथी ने क्या लिखा है कि जिंदगी में कई शाम ऐसी आई जो यादगार बन गई और उम्मीद है जब तक जिंदगी है अपनों के प्यार बदौलत ऐसी शाम बार बार आएंगी, पर आज जिक्र करेंगे अभी के लेटेस्ट शाम का जब

बहुत ही मीठा गाना आपने सुना, मौसी फिल्म से था और हमने पूछा था गीतकार और संगीतकार का नाम। आप सभी ने बहुत प्यार से लिखा है और यहां तक कि आप सब ने इसका सन भी बताया कि किस सन में ये पिक्चर आई थी। तो बहरहाल गीतकार भरत व्यास और संगीत वसंत देसाई का था और इसमें गायक स्वर थे तलत महमूद और लता मंगेशकर के। हमारे एक साथी लिखते हैं कि सूरज रे जलते रहना, ये गाना सुनते ही मुझे उन वीर वीरांगनाओं की याद आती है जिन्होंने हमें आजादी की किरण देने के लिए खुद को सर्वस्व कर दिया और उन्हीं के वजह से आज हम यहाँ हैं। बिल्कुल बहुत सही बात आप लिख रहे हैं। तो वहीं दूसरे साथी लिखते हैं कि फिल्म हरिश्चंद्र तारामती में हेमंत कुमार का स्वर था, भाई हमारी और आपकी पसंद एक है और इन्होंने बहुत ही अच्छी सी एक इमोजी भी बना के भेजी है। और एक साथी क्या लिखते हैं कि कभी किसी को मुकम्मल जहां नहीं मिलता, कहीं जमीन तो आसमान नहीं मिलता, अगर कहीं तारा जमीन पर उतर आए और वो मुझसे रूबरू हो जाए तो मैं अपने दिल की बसी तमाम बातें साझा करूंगा। मैं उससे कहूंगा कि देखो भाई, मैं अपनी उलझनों परेशानियों में इस कदर उलझा हुआ हूं कि सही रास्ता नहीं ढूंढ पा रहा हूं, तू मुझे वो सही रास्ता ढूंढने में मदद कर। बहुत से ख्वाब देखता हूं लेकिन वो बमुश्किल हकीकत में तब्दील होते हैं। उस तारे से कहूंगा कि मुझे वो हिम्मत फरहाम करे कि मैं उन अधूरे ख्वाबों को दुनिया के उसूलों के बीच चलकर अपनी पहचान बनाकर पूरा कर लूं। क्या बात है, आपके सारे ख्वाब पूरे हों ये हमारी शुभकामनाएं। और दूसरे साथी लिख रहे हैं कि रात जितनी घनी होती है सवेरा उतना ही करीब होता है। आगे भी इन्होंने बहुत कुछ लिखा है, वो मैं पढ़ती हूं। लिखते हैं, हर काली रात अपने साथ थकावट और सन्नाटा लाती है लेकिन ये इस बात का प्रमाण भी है कि पुराना वक्त बीत चुका है। क्षितिज पर उभरती पहली किरण केवल उजाला नहीं बल्कि संघर्षों पर विजय का प्रतीक है। नई उम्मीदें हमें साहस देती हैं कि हम अपनी गलतियों को पीछे छोड़कर एक नई शुरुआत करें। मृदुल कल्पनाओं के दिन, सुखद भविष्य के सुंदर सपने अक्सर सबसे कठिन रातों के गर्भ से ही जन्म लेते हैं। कितने सुंदर शब्दों में पिरोया है आपने दिल की भावनाओं को। एक साथी ने लिखा है, आज की इबारत एक बहुत ही अच्छा संदेश दे रही है कि कभी भी निराश होने की जरूरत नहीं है क्योंकि हर अंधेरी रात के बाद एक उजली सुबह आती है। इसलिए परमपिता परमेश्वर पर विश्वास रखकर आप अपना कर्म करें और सुरीला सफर तय करते रहें। साथियों, बहुत जरूरी होते हैं यहाँ पर रिश्ते बनाने, रिश्ते बनाकर रखना, क्योंकि कुछ रिश्ते चांद की तरह होते हैं जो दूर होकर भी दिल के बहुत पास, और कुछ लोग तारों की तरह होते हैं जो हमेशा हमारे साथ तो नहीं होते लेकिन हाँ, अंधेरे वक्त में उनकी रोशनी हमें टूटने नहीं देती। शायद इसी का नाम उम्मीद है। आप क्या कहते हैं जरा बताइए। और बात चली है चांद की तो ये गाना हो जाए, और बताइए कि क्या ये गाना आपकी लिस्ट में था।

एक साथी ने बहुत ही भावुक सा कमेंट भेजा है कि अगर एक तारा टूटकर आए तो पूछूं मेरी माँ ऊपर कैसी है। आपने भावुक कर दिया सचमुच।

ये बड़ा ही स्वीट सा गाना देवता फिल्म से सुना आपने किशोर कुमार और लता मंगेशकर की आवाजों में। हमारे एक साथी ने लिखा है गुरुदेव और लता जी का सुपर गीत, संगीत राहुल देव। शायद इन्होंने गुरुदेव किशोर कुमार जी को लिखा है। और एक साथी लिखते हैं कि गुलजार जी ने चांद से इतनी मोहब्बत की है कि जैसे लगता है चांद और वो एक ही हैं, एक में समा गए हैं। वो कहते हैं चांद का मेरे पास कॉपीराइट है। एक साथी ने अपनी शाम यादगार शाम साझा की है कि मेरी सबसे खुशनुमा और यादगार शाम 27 मई साल 16 की है, 2016 की। शादी की 25वीं सालगिरह को मेरी दोनों बिटियों ने यादगार बनाया था, बेहतरीन उपहार, और हम चारों ने रात का भोजन एक साथ किया था। इन मधुर स्मृतियों को हमेशा अपने साथ सजाए रखिएगा। तो वहीं दूसरे साथी ने भी कुछ शेयर की हैं बातें। लिखते हैं मुझे बहुत सुहाती है, सुहाती वो शाम है जब छिटकती चांदनी से धुलती शाम है, संग फजा में रात रानी की महक हो, इसी बहाने मेरे चेहरे पर थोड़ी सी तो इत्मीनान की चमक हो।

आप सबने अपने अपने गीत हमारे साथ साझा किए हैं और हमारे एक साथी लिखते हैं कि सुरीला सफर की पोस्ट टिमटिमाते तारे और ठंडी रोशनी के बीच यानी रात को ही पढ़ने को मिल गई, लेकिन अभी दोपहर में कड़ी धूप के बीच जब ठंडी हवा और शीतल चांदनी से जुड़ी बातें और उनसे जुड़े गीतों की बरसात होगी तो इस गर्मी से थोड़ी राहत जरूर मिलेगी। और अब वो मोस्ट अवेटेड सॉन्ग आप सबके लिए पहुंच रहा है, सुनिए ये गाना और बताइए जरा कि इसके संगीतकार कौन है और इसमें नायक कौन है। आप में से अधिकांश साथियों की लिस्ट में ये गाना

एक साथी ने लिखा है, कुछ महीने पूर्व मैंने रात को ग्रहण के समय रेड मून का खूब लुत्फ लिया था। सुना था कि 144 साल बाद अब ये नजारा देखने को मिलेगा। रात 12 से सुबह 1:30 तक बस चांद की हरकतों पर नजर रखी थी मैंने। ये पल सबसे यादगार है मेरे लिए।

0: प्यार हुई।
1: हमारे एक साथी लिखते हैं कि सुरीला सफर अपने अंतिम पड़ाव पर। जी हाँ, अब समाप्ति की ओर। क्या समाप्त हो ही गया, क्योंकि अब हमारे पास बिल्कुल भी समय नहीं है कि कुछ और कमेंट्स लें, कुछ और गानों को आप तक पहुंचाएं। बहरहाल, आज हमारे साथ इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए और इस कार्यक्रम को और भी खूबसूरत बनाने के लिए ढेर सारा शुक्रिया, दिल से धन्यवाद, थैंक यू सो मच। आप सबकी पसंद आज हमसे बहुत बहुत बहुत मिल गई और गाने आपके हमारे बहुत करीब थे। बहरहाल, आज के लिए बस इतना ही और मैं मिलूंगी आपसे कुछ देर के बाद। बहरहाल, आप बने रहिए विविध भारती के साथ, सुनते रहिए विविध भारती, देश की सुरीली धड़कन।

0: परीक्षा के लिए फिर पंजीकरण कराने की आवश्यकता नहीं होगी और कोई अतिरिक्त परीक्षा शुल्क भी नहीं लिया जाएगा। दीपेंद्र की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से आनंद पाठक।
1: भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता हिमंता बिस्व शर्मा ने लगातार दूसरी बार असम के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। राज्यपाल लक्ष्मण प्रसाद आचार्य ने गुवाहाटी में आयोजित शपथ ग्रहण समारोह में डॉ शर्मा को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई।
2: मैं श्री हिमंत बिस्व शर्मा ईश्वर नाम शपथ लो जे विधि द्वारा स्थापित भारत संविधान प्रति मैं प्रकृत विश्वास और आनुगत्य पोषण करिम।
1: डॉक्टर शर्मा के साथ चार विधायकों ने भी मंत्री पद की शपथ ली। इनमें भाजपा से रामेश्वर तेली और अजंता नियोग, असम गण परिषद से अतुल बोरा और बोडोलैंड पीपल्स फ्रंट से चरण बोरो शामिल हैं। इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह सहित कई केंद्रीय मंत्री और भाजपा शासित राज्यों के मुख्यमंत्री भी उपस्थित थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने असम के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेने पर डॉ हिमंता बिस्व शर्मा को बधाई दी है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि श्री शर्मा ने एक कुशल प्रशासक के रूप में अपनी पहचान बनाई है। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने असम में नवगठित मंत्रिमंडल के सदस्यों को मंत्री पद की शपथ लेने पर बधाई दी। श्री नवीन ने आशा व्यक्त की कि मुख्यमंत्री हिमंता बिस्व शर्मा के नेतृत्व में एनडीए सरकार विकसित असम और विकसित भारत के दृष्टिकोण के साथ काम करती रहेगी। असम विधानसभा में राष्ट्रीय लोकतांत्रिक गठबंधन ने लगातार तीसरी बार सत्ता में वापसी करते हुए 126 सदस्य विधानसभा में 102 सीटें हासिल की हैं। पुदुच्चेरी में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन नेता एन रंगासामी कल मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। शपथ ग्रहण समारोह में केंद्रीय मंत्री और भारतीय जनता पार्टी के चुनाव प्रभारी डॉ मनसुख मांडविया तथा राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन सहित कई नेता शामिल होंगे। सीबीआई ने पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी के निजी सहायक चंद्रनाथ रथ की हत्या की जांच शुरू कर दी है। राज्य पुलिस की सिफारिश पर एजेंसी ने आज आधिकारिक रूप से मामले की जांच शुरू कर दी। सीबीआई ने एक बयान में कहा कि कोलकाता जोन के संयुक्त निदेशक की देखरेख में एक विशेष जांच दल का गठन किया जाएगा। सीबीआई की एक टीम आज मध्यग्राम पुलिस स्टेशन जाकर घटनास्थल का मुआयना कर सकती है। इस बीच सीबीआई ने जांच करने के लिए डीआईजी पंकज सिंह के नेतृत्व में 7 सदस्यीय टीम का गठन किया है। प्रवर्तन निदेशालय ने पश्चिम बंगाल में दक्षिणी दमदम नगर पालिका भर्ती घोटाले में पूर्व अग्निशमन और आपात सेवा मंत्री सुजीत बसु को कोलकाता से गिरफ्तार किया है। निदेशालय ने बताया कि तृणमूल कांग्रेस के शासनकाल में सुजीत बसु ने नगरपालिका में विभिन्न पदों के लिए कथित रूप से लगभग 150 उम्मीदवारों की सिफारिश की। प्रवर्तन निदेशालय ने नौकरी देने के बदले कथित रूप से फ्लैट की मांग के अपराध का भी पता लगाया है। जांच एजेंसी को बसु के बैंक खातों में बड़ी राशि जमा होने के भी सबूत मिले हैं। प्रधानमंत्री ने पश्चिम बंगाल के नवनिर्वाचित मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी के नेतृत्व में राज्य मंत्रिमंडल की पहली बैठक के निर्णयों की सराहना की है। सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री ने कहा कि राज्य के लोग अब विश्व की सबसे बड़ी स्वास्थ्य योजना आयुष्मान भारत का लाभ उठा सकेंगे। कल राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। इनमें बांग्लादेश सीमा पर 45 दिन के भीतर बाड़ लगाने के लिए सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ को भूमि हस्तांतरित करना शामिल है। तमिलनाडु विधायक जेसीडी प्रभाकर को आज सर्वसम्मति से विधानसभा अध्यक्ष चुना गया। कार्यवाहक अध्यक्ष एमबी करुपैया ने मुख्यमंत्री जोसेफ विजय द्वारा प्रस्तावित प्रभाकर के नाम की घोषणा की, जिसका सदन में पार्टी के नेता केए सेंगोत्तैयान ने समर्थन किया। थोरायूर निर्वाचन क्षेत्र से तमिलनाडु के विधायक रविशंकर को भी सर्वसम्मति से उपाध्यक्ष चुना गया। टीवीके सरकार को कल विधानसभा में अपना बहुमत साबित करना है। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री सी जोसेफ विजय ने स्कूलों, कॉलेजों, पूजा स्थलों और बस स्टैंड के पास स्थित खुदरा शराब की दुकानों को बंद करने का आदेश दिया है। राज्य सरकार ने कहा है कि 4675 खुदरा शराब की दुकानें चल रही हैं। इनमें से स्कूलों, कॉलेजों, पूजा स्थलों और बस टर्मिनलों से 500 मीटर के दायरे में 717 दुकानों को 2 सप्ताह के भीतर बंद करने का आदेश दिया गया है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध है।

0: दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज राष्ट्रपति भवन में आयोजित एक समारोह में 15 नर्सिंग पेशेवरों को वर्ष 2026 के लिए राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार प्रदान किए। उन्हें ये पुरस्कार नर्सिंग के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए दिए गए। ये पुरस्कार पंजीकृत नर्सों, मिडवाइफ्स, सहायक नर्स मिडवाइफ्स और महिला स्वास्थ्य पर्यवेक्षकों को प्रदान किए गए। राष्ट्रपति ने कहा कि अवसर उन नर्सिंग कर्मियों और स्वास्थ्य देखभाल पेशेवरों के अमूल्य योगदान को श्रद्धांजलि है जो करुणा और संपूर्ण निष्ठा के साथ देश की सेवा करते हैं। इस अवसर पर केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा, स्वास्थ्य राज्य मंत्री प्रताप राव जाधव तथा अन्य गणमान्य व्यक्ति उपस्थित थे। राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार की स्थापना 1973 में स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने की थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम एशिया संकट के बीच विदेशी मुद्रा की बचत के लिए लोगों से ईंधन बचाने और विदेशी उत्पादों का उपयोग कम करने का आग्रह किया है। गुजरात के वडोदरा में कल एक जनसभा में श्री मोदी ने पेट्रोल और डीजल का उपभोग कम करने तथा वर्क फ्रॉम होम, ऑनलाइन कक्षाएं तथा वर्चुअल बैठक जैसे कोविड दौर के उपाय अपनाने की अपील दोहराई।
1: पेट्रोल डीजल का उपयोग कम करें, मेट्रो का उपयोग करें, इलेक्ट्रिक बस और पब्लिक ट्रांसपोर्ट का अधिक इस्तेमाल करें, कार पुलिंग को बढ़ावा दें। ये जरूरी है कि सरकारी और प्राइवेट दोनों ही दफ्तरों में वर्चुअल मीटिंग और वर्क फ्रॉम होम को प्राथमिकता दी जाए। मैं कुछ स्कूलों से भी आग्रह करूंगा कि कुछ समय के लिए ऑनलाइन क्लासेज की व्यवस्था पर काम करें। मैं आप सबसे आग्रह करूंगा कि जब तक हालात सामान्य न हो हम सोने की खरीद को टाले।
0: पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने आज कहा कि पश्चिम एशिया संघर्ष के बीच भारत ने अपने घरेलू एलपीजी उत्पादन को लगभग 36,000 टन प्रतिदिन से बढ़ाकर 54,000 टन कर दिया है। श्री पुरी ने नई दिल्ली में वार्षिक व्यापार शिखर सम्मेलन 2026 को संबोधित करते हुए कहा कि जहां कई देशों को पिछले कुछ महीनों में आसमान छूती कीमतों और ईंधन की कमी का सामना करना पड़ा है, वहीं भारत घरेलू कीमतों को अपेक्षाकृत स्थिर रखने में कामयाब रहा है।
2: आवर एलपीजी किचन में इस्तेमाल होने वाली एलपीजी सिलेंडर गैस का लगभग 60% पहले हॉर्मुज क्षेत्र से आता था। अब हमें इसके लिए नई व्यवस्थाएं करनी पड़ी। संकट से पहले हमारी घरेलू एलपीजी उत्पादन क्षमता लगभग 35 या 36 हजार मीट्रिक टन प्रतिदिन थी। हमने अपने घरेलू उत्पादन को 36,000 से बढ़ाकर 54,000 मीट्रिक टन प्रतिदिन कर दिया है।
0: श्री पुरी ने उद्योग जगत के नेताओं और अपने हितधारकों से एलपीजी से एलएनजी की ओर रुख करने और हरित ऊर्जा की ओर बढ़ने का आग्रह किया। उत्तर प्रदेश के महोबा जिले में समाजवादी पार्टी के सांसद अजेंद्र सिंह लोधी पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ कथित आपत्तिजनक टिप्पणी के आरोप में प्राथमिकी दर्ज की गई है। भाजपा नेता सत्येंद्र प्रताप की शिकायत के बाद महोबा कोतवाली थाने में मामला दर्ज किया गया। ये विवाद तब शुरू हुआ जब लोधी ने कथित तौर पर प्रधानमंत्री मोदी की उस अपील पर आपत्तिजनक टिप्पणी की जिसमें उन्होंने लोगों से सोना न खरीदने का आग्रह किया था। इन टिप्पणियों के बाद राज्य में भाजपा कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन किया। पाकिस्तान ने हाल ही में ईरान और अमेरिका के बीच संघर्ष के दौरान ईरानी सैन्य विमानों को गुप्त रूप से अपने एयरबेस पर ठहरने की अनुमति दी, जबकि वो ईरान तथा अमेरिका के बीच संघर्ष समाप्त करने के लिए पाकिस्तान के मध्यस्थ की भूमिका निभाने का दावा करता है। अमरीकी मीडिया रिपोर्ट में कहा गया है कि कुछ ईरानी विमान रावलपिंडी के निकट नूर खान वायुसेना अड्डे पर खड़े किए गए थे। रिपब्लिकन सेनेटर लिंडसे ग्राहम ने पाकिस्तान की मध्यस्थ की भूमिका की पूरी तरह से पुनः समीक्षा करने की मांग की है। रिपोर्ट में यह भी दावा किया गया है कि ईरान ने कुछ यात्री विमानों को पड़ोसी देश अफगानिस्तान भेज दिया था। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार को 5 देशों की यात्रा पर रवाना होंगे। पहले चरण में वे शुक्रवार को संयुक्त अरब अमीरात पहुंचेंगे और राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान से मुलाकात करेंगे। एक रिपोर्ट।
3: यात्रा के दूसरे चरण में प्रधानमंत्री शुक्रवार को ही नीदरलैंड्स पहुंचेंगे। इससे पहले उन्होंने 2017 में नीदरलैंड्स की यात्रा की थी। प्रधानमंत्री मोदी नीदरलैंड्स के नरेश

0: विलियम अलेक्जेंडर और महारानी मैक्सिमा से मुलाकात करेंगे। प्रधानमंत्री रॉब जेटन से भी उनकी बातचीत होगी। इसके बाद प्रधानमंत्री मोदी रविवार को स्वीडन की यात्रा पर गोथेनबर्ग पहुंचेंगे। वे स्वीडन के प्रधानमंत्री अल्फ क्रिस्टन के साथ बातचीत में द्विपक्षीय संबंधों की समीक्षा करेंगे। यात्रा के चौथे चरण में प्रधानमंत्री मोदी सोमवार को नॉर्वे पहुंचेंगे। वे तीसरे भारत नॉर्वे शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। प्रधानमंत्री मोदी की ये पहली नॉर्वे यात्रा होगी। यात्रा के अंतिम चरण में प्रधानमंत्री मोदी इटली जाएंगे। वे इटली के राष्ट्रपति सर्जियो मेत्तारेल्ला से मुलाकात करेंगे और प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी के साथ भी उनकी व्यापक बातचीत होगी। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि प्रधानमंत्री मोदी की पांच देशों की यात्रा से यूरोप के साथ भारत की साझेदारी मजबूत होगी। अनुपम की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से प्रियंका अरोड़ा।
1: वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने आज चिली गणराज्य के विदेश मंत्री फ्रांसिस्को पेरेस मैकेना और चिली प्रतिनिधिमंडल के सदस्यों से मुलाकात की। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने बताया कि बैठक के दौरान दोनों नेताओं ने भारत चिली व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौते सीईपीए की वार्ता की प्रगति की समीक्षा की। चेन्नई से अबूधाबी जाने वाली इत्तेहाद एयरवेज की उड़ान संख्या EY0343 आज सुबह तकनीकी खराबी और बाएं पंख में आग लगने की घटना के बाद रद्द कर दी गई। लगभग 280 यात्रियों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया है। चेन्नई हवाई अड्डे ने सोशल मीडिया पोस्ट में यात्रियों से आगे की जानकारी के लिए एयरलाइन से संपर्क करने का अनुरोध किया है। मौसम विभाग ने कल तक गुजरात, मध्य महाराष्ट्र, मराठवाड़ा, राजस्थान और पश्चिमी मध्य प्रदेश के कुछ स्थानों पर लू चलने की संभावना व्यक्त की है। असम और मेघालय में मूसलाधार वर्षा का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। अरुणाचल प्रदेश, पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्र और सिक्किम में भी कल तेज बारिश हो सकती है। बिहार और उत्तराखंड में भी कल 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार के साथ आंधी आने की संभावना है। घरेलू शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक में आज लगभग 1.4% की गिरावट दर्ज की गई। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 1048 अंक लुढ़ककर 74,967 पर, जबकि निफ्टी 305 अंक की गिरावट के साथ 23,511 पर था। आईपीएल क्रिकेट में आज गुजरात टाइटंस का मुकाबला सनराइजर्स हैदराबाद से अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में होगा। ये मैच शाम 7:30 बजे शुरू होगा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मेडिकल शिक्षा में प्रवेश के लिए आयोजित नीट यूजी परीक्षा पेपर लीक के आरोपों के कारण रद्द, सीबीआई जांच के आदेश। हिमंता बिस्व शर्मा ने लगातार दूसरी बार असम के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। सीबीआई ने पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी के निजी सहायक चंद्रनाथ रथ की हत्या की जांच शुरू की। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 15 नर्सिंग पेशेवरों को राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार प्रदान किए और आईपीएल क्रिकेट में आज शाम गुजरात टाइटंस का मुकाबला सनराइजर्स हैदराबाद से। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: हामी आकाशवाणीको गान्तोक केन्द्रबाट बोलिरहेका छौं। साथै यस समय श्रोताहरूले हामीलाई एफएम कञ्चनजंघा 103 मेगाहर्ज अनि न्यूज अन एआईआर मोबाइल एप मार्फत पनि सुनिरहनु भएको छ। श्रोता, हामी लिएर उपस्थित भएका छौं कलाकार रेणु लिम्बुको स्वरमा विभिन्न लिम्बु लोकगीतहरू। त सर्वप्रथम सुन्नुहोस् यस गीतलाई।

0: छ। द्विपक्षीय कार्यनीतिक साझेदारी बढ़ाउने उपायहरूमा पनि विचार विमर्श हुनेछ।
1: यात्रा के दूसरे चरण में प्रधानमंत्री शुक्रवार को ही नीदरलैंड्स पहुंचेंगे। इससे पहले उन्होंने 2017 में नीदरलैंड्स की यात्रा की थी। प्रधानमंत्री मोदी नीदरलैंड्स के नरेश विलियम अलेक्जेंडर और महारानी मैक्सिमा से मुलाकात करेंगे। प्रधानमंत्री रॉब जेटन से भी उनकी बातचीत होगी। इसके बाद प्रधानमंत्री मोदी रविवार को स्वीडन की यात्रा पर गोथनबर्ग पहुंचेंगे। वे स्वीडन के प्रधानमंत्री अल्फ क्रिस्टन के साथ बातचीत में द्विपक्षीय संबंधों की समीक्षा करेंगे। यात्रा के चौथे चरण में प्रधानमंत्री मोदी सोमवार को नॉर्वे पहुंचेंगे। वे तीसरे भारत नॉर्वे शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। प्रधानमंत्री मोदी की ये पहली नॉर्वे यात्रा होगी। यात्रा के अंतिम चरण में प्रधानमंत्री मोदी इटली जाएंगे। वे इटली के राष्ट्रपति सर्जियो मेत्रोला से मुलाकात करेंगे और प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी के साथ भी उनकी व्यापक बातचीत होगी। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि प्रधानमंत्री मोदी की पांच देशों की यात्रा से यूरोप के साथ भारत की साझेदारी मजबूत होगी। अनुपम की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से प्रियंका अरुण।
0: प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले पश्चिम बंगालको नवनिर्वाचित मुख्यमन्त्री शुभेन्दु अधिकारीको नेतृत्वमा राज्य मन्त्रीमण्डलको पहिलो बैठकको निर्णयहरूको सराहना गर्नुभयो। सोशल मीडिया पोस्टमा प्रधानमन्त्रीले भन्नुभयो, पश्चिम बंगालका जनताको कल्याण सर्वोच्च प्राथमिकता हो। श्री मोदीले प्रसन्नता व्यक्त गर्दै भन्नुभयो, राज्यका जनता अब विश्वको सबैभन्दा ठूलो स्वास्थ्य योजना आयुष्मान भारतको लाभ उठाउन सक्नेछन्। यस योजना अन्तर्गत उत्तम गुणवत्ता अनि किफायती स्वास्थ्य हेरचाह सुविधा सुनिश्चित गरिन्छ। प्रधानमन्त्रीले भन्नुभयो, डबल इन्जिन सरकार प्रमुख केन्द्रीय योजनाहरूलाई निर्वाध रूपले सुलभ गराउनेछ। हिजो राज्य मन्त्रीमण्डलको बैठकमा धेरै महत्वपूर्ण निर्णयहरू लिइयो, जसमा बंगलादेश सीमामा 45 दिनभित्र बार लगाउनका लागि सीमा सुरक्षा बल बीएसएफलाई भूमि हस्तान्तरित गर्नु सामेल छ। राज्य सरकारले केन्द्र सरकारको प्रमुख स्वास्थ्य योजना आयुष्मान भारत तथा केन्द्र सरकारको अन्य पहलहरूलाई राज्यमा लागू गर्ने घोषणा पनि गरियो। आज अन्तर्राष्ट्रिय नर्स दिवस हो। आधुनिक नर्सिङका संस्थापक फ्लोरेन्स नाइटिंगेलको जयन्तीको उपलक्ष्यमा यो दिवस मनाइन्छ। यस वर्षको विषय छ, हाम्रो नर्स हाम्रो भविष्य। यो दिनले विश्वभरिमा नर्सिङ पेशामा उत्तम सहायता, सुरक्षा अनि संसाधनहरूको आवश्यकतालाई दर्शाउँदछ। यो दिन रोगीहरूको हेरचाह, सामुदायिक स्वास्थ्य अनि आर्थिक विकासमा नर्सहरूको महत्वपूर्ण भूमिकाको सम्मानलाई दर्शाउँदछ। यस अवसरमा गृहमन्त्री अमित शाह अनि स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण मन्त्री जगत प्रकाश नड्डाले नर्सहरूलाई देशको स्वास्थ्य प्रणालीको आधार अनि आशाको स्तम्भ बताउनुभयो। सोशल मीडिया पोस्टमा गृहमन्त्रीले भन्नुभयो, प्रत्येक नर्स पीड़ितहरूका लागि आशाको स्तम्भ हो। उहाँले भन्नुभयो, नर्सहरूको निस्वार्थ सेवा अनि अटूट समर्पण नै स्वस्थ भारतको साँचो आधार हो। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मूले आज राष्ट्रपति भवनमा आयोजित एक समारोहमा 15 नर्सहरूलाई वर्ष 2026 लागि राष्ट्रिय फ्लोरेन्स नाइटिंगेल पुरस्कार प्रदान गर्नुभयो। उनीहरूलाई यो पुरस्कार नर्सिङ क्षेत्रमा उत्कृष्ट योगदानका लागि दिइयो। यो पुरस्कार पंजीकृत नर्स मिडवाइफ, सहायक नर्स मिडवाइफ अनि महिला स्वास्थ्य आगन्तुकहरूलाई प्रदान गरियो। प्रत्येक पुरस्कारमा एक प्रमाणपत्र, 1,00,000 रूपियाँ नगद अनि पदक सामेल छन्। यस अवसरमा स्वास्थ्य अनि परिवार कल्याण मन्त्री जगत प्रकाश नड्डा, स्वास्थ्य राज्य मन्त्री प्रताप राव जाधव तथा अन्य गण्यमान्य व्यक्ति उपस्थित थिए। राष्ट्रिय फ्लोरेन्स नाइटिंगेल पुरस्कारको स्थापना 1973 स्वास्थ्य अनि परिवार कल्याण मन्त्रालयले गरेको थियो। पेट्रोलियम अनि प्राकृतिक ग्यास मन्त्री हरदीप सिंह पुरीले आज भन्नुभयो, पश्चिम एशियामा चलिरहेको संघर्षबीच भारतले आफ्नो घरेलु एलपीजी उत्पादनलाई लगभग 36,000 टन प्रतिदिनले बढ़ेर 54,000 टन गरेको छ। श्री पुरीले नयाँ दिल्लीमा वार्षिक व्यापार शिखर सम्मेलन 2026 सम्बोधन गर्दै भन्नुभयो, जहाँ धेरै देशहरूले पछिल्लो केही महिनाहरूमा आकाश छुने महँगी अनि इन्धनको कमीको सामना गर्न परेको छ, त्यही भारत घरेलु मूल्यलाई अपेक्षाकृत स्तर राख्नमा सफल भएको छ। उहाँले भन्नुभयो, देश काँचो तेल अनि तरल प्राकृतिक ग्यास एलएनजीका लागि 60 दिनको अनि एलपीजीका लागि 45 दिनको बफर स्टक बनाएर राखेको छ, जसले तत्काल कमीको कुनै संकट छैन। श्री पुरीले उद्योग जगतका नेताहरू अनि हितधारकलाई एलपीजीदेखि एलएनजीतर्फ ध्यान दिन अनि हरित ऊर्जा तर्फ बढ्ने आग्रह गर्नुभयो।
2: किचन में इस्तेमाल होने वाली एलपीजी सिलेंडर गैस का लगभग 60% पहले हॉर्मुज क्षेत्र से आता था। अब हमें इसके लिए नई व्यवस्थाएं करनी पड़ी। संकट से पहले हमारी घरेलू एलपीजी उत्पादन क्षमता लगभग 35,000 या 36,000 मीट्रिक टन प्रतिदिन थी। हमने अपने घरेलू उत्पादन को 36,000 से बढ़ाकर 54,000 मीट्रिक टन प्रतिदिन कर दिया है।

0: राष्ट्रीय परीक्षा एजेन्सी नीटले चिकित्सकीय शिक्षामा दाखिलका लागि 3 मईमा आयोजित नीट यूजी 2026 परीक्षा रद्द गर्ने निर्णय लिएको छ। सोशल मीडिया पोस्टमा एजेन्सीले भनेको छ, यो निर्णय विद्यार्थीहरूको हित तथा राष्ट्रीय परीक्षा प्रणालीमाथि अडेको विश्वासलाई ध्यानमा राख्दै गरिएको हो। नीटले बताएको छ, सरकारले पेपर लीकको आरोपहरूको पूरा जाँचका लागि मामिला केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआईलाई सुम्पिने निर्णय गरेको छ। एजेन्सीले भनेको छ, सीबीआईलाई पूर्ण सहयोग गरिनेछ तथा जाँचका लागि जरूरी सबै सामग्री, रेकर्ड अनि सहायता उपलब्ध गराइनेछ। नीटले भनेको छ, यो निर्णय केन्द्रीय एजेन्सीहरूसित समन्वयमा नीटद्वारा जाँच निष्कर्षहरूको मूल्यांकन गरेपछि गरिएको हो। नीटले भनेको छ, परीक्षाका लागि नयाँ मिति अलगसित अधिसूचित गरिनेछ। पंजीकरण विवरण, उम्मेद्वारको जानकारी अनि मई 2026का लागि चयनित परीक्षा केन्द्र अपरिवर्तित रहनेछ तथा पुनः परीक्षामा उपयोग गरिनेछ।
1: एनटीए ने बताया है कि सरकार ने पेपर लीक के आरोपों की पूरी जांच के लिए मामला केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई को सौंपने का निर्णय लिया है। एजेंसी ने कहा है कि ये निर्णय केंद्रीय एजेंसियों के साथ समन्वय में एनटीए द्वारा जांच निष्कर्षों का मूल्यांकन करने के बाद लिया गया है। परीक्षा के लिए नई तिथि अलग से अधिसूचित की जाएगी। पंजीकरण विवरण, उम्मीदवार की जानकारी और मई 2026 के लिए चयनित परीक्षा केंद्र अपरिवर्तित रहेंगे। दोबारा परीक्षा के लिए फिर पंजीकरण कराने की आवश्यकता नहीं होगी और कोई अतिरिक्त परीक्षा शुल्क भी नहीं लिया जाएगा। दीपेंद्र की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से
0: समाचार आकाशवाणीबाट सुन्दै हुनुहुन्छ। ताजा समाचार जान्नका लागि सोशियल मीडिया ह्याण्डल एक्समा @AIRNews कर्स्यङ अनि फेसबुकमा आकाशवाणी समाचार नेपालीलाई फलो गर्न सक्नुहुनेछ।
2: सबके लिए सामाजिक सुरक्षा अटल पेंशन योजना मोदी जी का संकल्प।
3: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको।
4: अब तक इस योजना से 8,85,00,000 से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित 3 गारंटीड फायदों के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें।
0: अब सुन्नुहोस् रहल समाचार। भारतीय जनता पार्टीका वरिष्ठ नेता हेमन्त विश्व शर्माले आज लगातार दोस्रो चोटि आसामको मुख्यमन्त्रीको रूपमा शपथ लिनुभयो। राज्यपाल लक्ष्मण प्रसाद आचार्यले गुवाहाटीको खानापारा स्थित पशु चिकित्सा महाविद्यालय मैदानमा आयोजित एक समारोहमा डाक्टर शर्मालाई पद अनि गोपनीयताको शपथ दिलाउनुभयो।
5: মই শ্রী হিমন্ত বিশ্ব শর্মা ঈশ্বরৰ নামত শপথ লওঁ যে বিধিৰ দ্বাৰা স্থাপিত ভাৰতৰ সংবিধানৰ প্ৰতি মই প্ৰকৃত বিশ্বাস আৰু আনুগত্য পোষণ কৰিম।
0: डाक्टर शर्मासित चार विधायक रामेश्वर तेली, अतुल बोरा, चरण बोरो अनि अञ्जता नियोगले पनि मन्त्रीको पदको शपथ लिए। यस अवसरमा प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी, गृहमन्त्री अमित शाह, रक्षामन्त्री राजनाथ सिंह सहित धेरै केन्द्रीय मन्त्री अनि भाजपा शासित राज्यका मुख्यमन्त्री पनि समारोहमा उपस्थित थिए। तमिलनाडु विधायक जेसीडी प्रभाकरलाई आज सर्वसम्मतिले विधानसभा अध्यक्ष चुनिएको छ। कार्यवाहक अध्यक्ष एमभी करूपयाले मुख्यमन्त्री जोसेफ विजयद्वारा प्रस्तावित प्रभाकरको नाम घोषणा गर्नुभयो, जसको सदनमा पार्टीका नेता केए संगोतायनले समर्थन गरे। थोरायूर निर्वाचन क्षेत्रबाट तमिलनाडुका विधायक रवि शंकरलाई पनि सर्वसम्मतिले उपाध्यक्ष चुनियो। सदनलाई सम्बोधन गर्दै मुख्यमन्त्री जोसेफ विजयले भन्नुभयो, सबै दलहरूलाई उनीहरूको संख्या चाहे जति पनि होस् विधानसभामा बोल्ने समान अवसर पाउनुपर्नेछ। उहाँले विपक्षलाई स्वस्थ चर्चा सुनिश्चित गर्ने अपील गर्नुभयो अनि भन्नुभयो, सरकारले सबैजनाको कल्याणका लागि काम गर्नेछ। विपक्षका नेता अनि डीएमके विधायक उदयनिधि स्टालिनले भन्नुभयो, तमिलनाडुलाई शासन अनि लोकसेवामा एक आदर्शको रूपमा उदय हुनुछ। सदस्यहरूले विधानसभाको कार्यवाहीको सीधा प्रसारणको पनि माग गरे। तमिलनाडुका मुख्यमन्त्री सी जोसेफ विजयले स्कूलहरू, कलेजहरू, पूजा स्थलहरू अनि बस स्ट्याण्ड नजिक तमिलनाडु राज्य विपणन निगमको खुद्रा मदिरा दोकानहरूलाई बन्द गर्ने आदेश दिएको छ। राज्य सरकारले एक बयानमा भनेको छ, उनीहरूको अधीनमा 4,675 खुद्रा मदिरा दोकानहरू चलिरहेको छ, जसमा स्कूल, कलेज, पूजा स्थल अनि बस टर्मिनलदेखि 500 मिटरको दायरामा चलिरहेको 717 दोकानहरूलाई 2 सप्ताहभित्र बन्द गर्ने आदेश दिएको छ। भाजपाका राष्ट्रिय अध्यक्ष नितिन नवीन यो महिनाको 18 तारीक ओडिशाको भ्रमणमा जानुहुनेछ। यो भ्रमणको उद्देश्य पार्टीको ढाँचालाई मजबूत गर्नु हो। उहाँले एक दिनको उच्च स्तरीय संगठनात्मक समीक्षा गर्नुहुनेछ। पछिल्लो वर्ष विधानसभा चुनावहरूमा प्राप्त ऐतिहासिक जीतपछि जमिन

0: कलाकार रेणु लिम्बुको स्वरमा सुनिरहनु भएको छ यस गीतलाई। अब केही क्षणमा आकाशवाणीको दिल्ली केन्द्रबाट सम्प्रसार गरी सुनाउनेछौ समाचार। कृपया केही क्षण प्रतीक्षा गर्नुहोस्। सुन्दै गर्नुहोस् आकाशवाणी गान्तोक।
1: आकाशवाणीका एफएम गोल्ड चैनल 3 बजने वाले हैं। अब समाचार होंगे।
2: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनकलता। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने मेडिकल शिक्षा में प्रवेश के लिए 3 मई को आयोजित नीट यूजी 2026 परीक्षा रद्द करने का फैसला किया है। सोशल मीडिया पोस्ट में एजेंसी ने कहा कि यह फैसला विद्यार्थियों के हित तथा राष्ट्रीय परीक्षा प्रणाली में विश्वास को ध्यान में रखते हुए लिया गया है।
3: एनटीए ने बताया है कि सरकार ने पेपर लीक के आरोपों की पूरी जांच के लिए मामला केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई को सौंपने का निर्णय लिया है। एजेंसी ने कहा है कि ये निर्णय केंद्रीय एजेंसियों के साथ समन्वय में एनटीए द्वारा जांच निष्कर्षों का मूल्यांकन करने के बाद लिया गया है। परीक्षा के लिए नई तिथि अलग से अधिसूचित की जाएगी। पंजीकरण विवरण, उम्मीदवार की जानकारी और मई 2026 के लिए चयनित परीक्षा केंद्र अपरिवर्तित रहेंगे। दोबारा परीक्षा के लिए फिर पंजीकरण कराने की आवश्यकता नहीं होगी और कोई अतिरिक्त परीक्षा शुल्क भी नहीं लिया जाएगा। दीपेंद्र की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से आनंद पाठक।
2: भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता हिमंता बिस्व शर्मा ने लगातार दूसरी बार असम के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। राज्यपाल लक्ष्मण प्रसाद आचार्य ने गुवाहाटी में आयोजित शपथ ग्रहण समारोह में डॉ शर्मा को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई।
4: मैं श्री हिमंत बिस्व शर्मा ईश्वर नाम शपथ लौं जे विधि द्वारा स्थापित भारत संविधान प्रति मैं प्रकृत विश्वास और आनुगत्य पोषण करूं।

0: डॉक्टर शर्मा के साथ चार विधायकों ने भी मंत्री पद की शपथ ली। इनमें भाजपा से रामेश्वर तेली और अजंता नियोग, असम गण परिषद से अतुल बोरा और बोडोलैंड पीपल्स फ्रंट से चरण बोरो शामिल हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण करने पर डॉ हिमंता बिस्व शर्मा को बधाई दी है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि श्री शर्मा ने एक कुशल प्रशासक के रूप में अपनी पहचान बनाई है। सीबीआई ने पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी के निजी सहायक चंद्रनाथ रथ की हत्या की जांच शुरू कर दी है। राज्य पुलिस की सिफारिश पर एजेंसी ने आज आधिकारिक रूप से मामले की जांच शुरू की। आज अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस है। आधुनिक नर्सिंग की संस्थापक फ्लोरेंस नाइटिंगेल की जयंती पर यह दिवस मनाया जाता है। इस वर्ष का विषय है हमारी नर्सें हमारा भविष्य। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति भवन में आयोजित एक समारोह में 15 नर्सिंग पेशेवरों को वर्ष 2026 के लिए राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार प्रदान किए। उन्हें ये पुरस्कार नर्सिंग के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए दिए गए। ये पुरस्कार पंजीकृत नर्सों, मिडवाइफ्स, सहायक नर्स मिडवाइफ्स और महिला स्वास्थ्य पर्यवेक्षकों को प्रदान किए गए। राष्ट्रपति ने कहा कि ये अवसर उन नर्सिंग कर्मियों और स्वास्थ्य देखभाल पेशेवरों के अमूल्य योगदान को श्रद्धांजलि है जो करुणा और संपूर्ण निष्ठा के साथ देश की सेवा करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार को 5 देशों की यात्रा पर रवाना होंगे। पहले चरण में वे शुक्रवार को संयुक्त अरब अमीरात पहुंचेंगे और राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान से मुलाकात करेंगे। एक रिपोर्ट।
1: यात्रा के दूसरे चरण में प्रधानमंत्री शुक्रवार को ही नीदरलैंड्स पहुंचेंगे। इससे पहले उन्होंने 2017 में नीदरलैंड्स की यात्रा की थी। प्रधानमंत्री मोदी नीदरलैंड्स के नरेश विलियम अलेक्जेंडर और महारानी मैक्सिमा से मुलाकात करेंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री मोदी रविवार को स्वीडन की यात्रा पर गोथनबर्ग पहुंचेंगे। वे स्वीडन के प्रधानमंत्री अल्फ क्रिस्टन के साथ बातचीत में द्विपक्षीय संबंधों की समीक्षा करेंगे। यात्रा के चौथे चरण में प्रधानमंत्री मोदी सोमवार को नॉर्वे पहुंचेंगे। वे तीसरे भारत नॉर्वे शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। यात्रा के अंतिम चरण में प्रधानमंत्री मोदी इटली जाएंगे। वे इटली के राष्ट्रपति सर्जियो मेत्तारेल्ला से मुलाकात करेंगे। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि प्रधानमंत्री मोदी की 5 देशों की यात्रा से यूरोप के साथ भारत की साझेदारी मजबूत होगी। अनुपम की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से प्रियंका अरोड़ा।
0: आईपीएल क्रिकेट में आज गुजरात टाइटंस का मुकाबला सनराइजर्स हैदराबाद से अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में होगा। मैच शाम 7:30 बजे शुरू होगा। मौसम विभाग ने कल तक गुजरात, मध्य महाराष्ट्र, मराठवाड़ा, राजस्थान और पश्चिमी मध्य प्रदेश के कुछ स्थानों पर लू चलने की संभावना व्यक्त की है। असम और मेघालय में मूसलाधार वर्षा का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। अरुणाचल प्रदेश, पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्र और सिक्किम में भी कल तेज बारिश हो सकती है। बिहार और उत्तराखंड में भी कल 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आंधी आने की संभावना है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: This is Akashvani, the news read by Valsa Williams. The National Testing Agency NTA has decided to cancel the NEET UG 2026 examination conducted on the 3rd of this month for admission to undergraduate medical education. In a social media post, NTA informed that this decision has been taken in the interest of students and in recognition of the trust on which the national examination system rests. The agency also stated that the government has decided to refer the matter to the Central Bureau of Investigation for a comprehensive inquiry into the allegations of paper leak. The agency said it will extend full cooperation to the Bureau and provide all materials, records and assistance required for the investigation. It said the decision was taken following inputs examined by the NTA in coordination with central agencies and investigative findings shared by law enforcement agencies. The NTA said the examination will be reconducted on dates to be notified separately. Registration details, candidature information and examination centre selected for the May 2026 cycle will remain unchanged and be carried forward to the reconducted examination. The agency informed that no fresh registration will be required and no additional examination fee will be levied. Senior BJP leader Hemanta Biswa Sarma has taken oath as the Chief Minister of Assam for a second consecutive term. Governor Lakshman Prasad Acharya administered him

नमस्कार, स्वागत, अभिनंदन आप सभी का आकाशवाणी दिल्ली के एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर। मैं हूं आपके साथ अपराजिता, और आज मंगलवार के दिन ये समय है बहुत खास, क्योंकि ये है समय हमारे एक स्पेशल प्रोग्राम आकाशवाणी के संग यादों के रंग का। और आज के हमारे इस प्रोग्राम में, ये प्रोग्राम हम आपको बता दें कि इसकी शुरुआत क्यों की गई। आकाशवाणी 90 वर्ष इस साल मना रहा है, और इसी श्रृंखला को सेलिब्रेट करते हुए हम इस प्रोग्राम को आपके बीच लेकर आए हैं। और इसी श्रृंखला में आज हमारे समक्ष एक विशेष अतिथि भी हैं। स्टूडियो में मेरे साथ

0: कि मैं प्रसारक था और आज भी प्रसारक हूँ
1: जी। और सर हमें बेहद खुशी है आपको यहाँ अपने इस खास प्रोग्राम में यहाँ शामिल करते हुए, और ये उम्मीद हम करते हैं कि अब से लेकर 4 बजे तक का जो समय है वो बहुत ही जानकारीपूर्ण होने वाला है और मनोरंजन का तो साथ रहेगा ही, क्योंकि यही जो है वो आकाशवाणी की जो है हम कह सकते हैं कि एक मूल मंत्र है कि वो आपको इन्फॉर्मेशन भी देगा और एंटरटेनमेंट भी देगा साथ में। और इसी वादे के साथ हम इस प्रोग्राम की शुरुआत करते हैं, और ये भी अपने मैं लिसनर्स को बताना चाहूंगी कि अब से लेकर 4 बजे तक हम सर के साथ यहां बातें करेंगे। श्री अरुण कुमार पासवान हमारे साथ हैं जो पूर्व सहायक निदेशक हैं, अगर आपने अभी ट्यून इन किया है, और आज आकाशवाणी के संग यादों के रंग में सर हमारे साथ रहेंगे और साथ रहेगा इन्हीं के पसंद के गानों का। तो इन्होंने मुझे अपने कुछ पसंदीदा गाने बताए हैं, तो पहला गाना सर आपकी पसंद का ये कैसा सुर मंदिर है, मैं अपने श्रोताओं को सुनवा रही हूं और बातचीत का सिलसिला आपके साथ हम यहां जारी रखेंगे। लता जी की आवाज में हमारे साथ जो आज एक विशेष अतिथि हैं उनकी पसंद का पहला गीत।

0: आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर और ये समय है हमारे स्पेशल प्रोग्राम आकाशवाणी के संग यादों के रंग का। आज हमारे साथ स्टूडियो में एक विशेष अतिथि हैं श्री अरुण कुमार पासवान। आप पूर्व सहायक निदेशक हैं और जैसा आपने इस गाने से पूर्व हमें बताया कि आप एक प्रसारक थे, प्रसारक हैं और हमेशा एक प्रसारक रहेंगे। तो सर मुझे उसी से जुड़ा एक सवाल ऐसा जहन में आ रहा है कि अपने पहले प्रसारण से जुड़ी आपकी कुछ यादें होंगी, कुछ ऐसी बात होगी जो आप हमारे लिसनर्स को बताना चाहते होंगे, तो मैं जरूर आपसे जानना चाहूंगी।
1: अपराजिता जी बताऊं, मैं सबसे पहले तो ये बताऊं कि आज जो मेरी अनुभूति है यहां इस जगह पर आकर, चूंकि एक लंबे अंतराल के बाद श्रोताओं से सीधा ये जो हम बात कर रहे हैं बैठ के, तो मुझे लगता है कि आज शायद मैं पहली बार प्रसारण कर रहा हूं। एक नयापन है आज भी। और जब पहले प्रसारण की आपने बात की तो मैं आपको बताऊं कि ये मेरा सौभाग्य है कि आकाशवाणी के कार्यक्रम अनुभाग में मैंने लगभग हर जगह पर काम किया है। शुरू में जब मैं आया आकाशवाणी में तो कैजुअल कंपियर होके आया और वो भी ग्राम जगत के कार्यक्रम में आया।
0: अच्छा, बहुत बढ़िया।
1: जी जी, ग्रामीण श्रोताओं से जुड़े हुए कार्यक्रम में मैं आया, किसानों से संबद्ध कार्यक्रम में आया और उस दिन जब मैं रेडियो पर आया तो मैं आपको बताऊं कि मुझे लगा कि क्या सचमुच जिंदगी में सपने साकार होते हैं। और सपना वो भी मतलब के रात में नींद में देखा हुआ सपना नहीं, जागे में देखा हुआ सपना। दरअसल बचपन में मुझे ध्यान आता है कि बचपन में जब हम लोग खेलते थे तो हमारे कई साथी बच्चे अपनी अपनी तरफ से कि मैं ये खेलूंगा, मैं ये खेलूंगा, अपनी अपनी पसंद का खेल बताते थे और मेरी पसंद का खेल होता था रेडियो खेलना।
0: अरे वाह, क्या बात है।
1: वो माचिस की जो डिब्बी होती है उसमें धागा बना के और उससे एक तरफ से हम बोला करते थे और दूसरी तरफ से कहते थे अपने साथी बच्चों को कि सुनो तुम मैं क्या बोलता हूं। तो मुझे लगा कि जब मैं आकाशवाणी में आया और दूसरी तरफ से लोग मुझे सुन रहे हैं तो क्या इस तरह से सपना भी साकार होता है।
0: क्या बात।
1: और अगर सपना साकार होता है तो आप सोच सकते हैं कि वो आनंद की तो चरम सीमा है वो।
0: बिल्कुल।
1: तो मेरे प्रसारण का जो पहला अनुभव है वो मेरे लिए आनंद की चरम सीमा है।
0: बहुत खूब, बहुत खूब। मुझे लग रहा है कि मैं बस आपको सुनती रहूं। आप लेखक हैं, कवि हैं और मैं अपने आप को इस स्टूडियो में ऐसा लिसनर्स के सामने, क्योंकि वो देख नहीं सकते, इसलिए मैं बताना चाहती हूं कि वो यहां का आंखों देखा हाल मैं बता रही हूं कि मैं अपने आप को बहुत छोटा महसूस कर रही हूं। मुझे लग रहा है कि बस आप कहते रहें और हम सुनते रहें।
1: अपराजिता जी, सबसे पहले तो मैं ये कहूंगा कि आप तो इस बात को एकदम अपने ध्यान से ही निकाल दें कि आप अपने को छोटे समझ रही हैं या आपको ऐसा लग रहा है कि मैं पूर्व सहायक निदेशक रहा हूं तो इसलिए, ऐसा कुछ नहीं है। प्रसारक, इसीलिए मैंने शुरू में कहा प्रसारक। प्रसारक का मतलब है पूरा, ये जो पूरा संस्थान है ये प्रसारकों का संस्थान है, तो यहां हम सभी मिलके एक साथ होते हैं और इसीलिए

0: हमारे यहाँ जो आकाशवाणी की परंपरा रही है या ऑल इंडिया रेडियो से पहले उसकी परंपरा रही है, वहाँ मैं शब्द का व्यवहार नहीं हूँ कि हम शब्द का व्यवहार होता है कि हम आकाशवाणी से बोल रहे हैं
1: जी, जी, जी।
0: तो वो हम है, एक सामूहिक हमारी प्रस्तुति होती है और उसी मेहनत से हम लोग सब मिलकर प्रसारण करते हैं, तो हम लोग बराबर के हिस्सेदार होते हैं प्रसारण में जाने के लिए। और
1: देखिए सर, आपने अपनी बातों में कैसे इतनी बड़ी बात को कितनी सहजता से कह दिया और बहुत मतलब एक आनंदमय अनुभव इस समय हो रहा है। सर, आप अपने कुछ खास और ऐसे यादगार पल हमारे साथ बांटिए।
0: जी, आकाशवाणी में जैसा कि मैंने बताया कि मैंने शुरुआत तो की अपने आकाशवाणी के काल का कैजुअल कंपेयर के रूप में, लेकिन उसके बाद संयोग ये रहा कि कुछ समय बाद वहीं एक रिक्ति निकली, आकाशवाणी भागलपुर में मैं था, वहीं एक रिक्ति निकली उद्घोषक की और उद्घोषक पद पर मेरा चयन हुआ और उसके बाद मैं नियमित उद्घोषक के रूप में वहां आया 1987 में। वो 85 में मैं कैजुअल के रूप में आया था, 1987 में रेगुलर यानी नियमित के रूप में आया। और जब आया तो ये हुआ कि अब क्योंकि ऑपरेट करना पड़ेगा कंसोल, तो उसके लिए ट्रेनिंग होगी, फिर किस तरह से प्रसारण में उद्घोषक को किस तरह से जाना होगा, क्या तैयारियां करनी होगी, तो इसके लिए एक सप्ताह की मेरी ट्रेनिंग लग गई।
1: बिल्कुल।
0: और वो ट्रेनिंग पेक्सको के साथ, पेक्स कोऑर्डिनेशन के साथ जो समन्वय देखती थी मेरी मैडम थी एक विनोद वाला सिंह जी उस समय, तो उनके साथ मेरी ड्यूटी लगी एक सप्ताह के लिए कि वो मुझे बताएंगे
1: जी।
0: तो आज से मैंने शुरू किया वो प्रशिक्षण लेना और कल दोपहर 12 बजे अचानक से सूचना आई कि जो दूसरी सभा के उद्घोषक आने वाले थे वो किसी कारणवश उपस्थित नहीं हो पाएंगे।
1: जी जी।
0: अब इतनी जल्दी में 12:30 बजे से दूसरी सभा शुरू होनी थी
1: जी,
0: तो इतनी जल्दी में कोई वैकल्पिक व्यवस्था नहीं हो सकती और जो पहली सभा के थे वो जा चुके थे क्योंकि सूचना उनकी बड़ी विलंब से आई थी दूसरी सभा वाले के, तो ऐसी स्थिति में ये हुआ कि ऐसा किया जाए कि आप चले जाएं।
1: अच्छा।
0: अब मेरे लिए तो बड़ी स्थिति आप समझ सकती हैं,
1: इमरजेंसी ड्यूटी लग गई
0: जी जी, कि मुझे तो एक सप्ताह का प्रशिक्षण लेना था और अभी एक ही दिन का लिया था, दूसरा दिन अभी शुरू ही हुआ था, लेकिन फिर भी प्रसारण तो रुक नहीं सकता है, जैसे कहते हैं कि कोई शो रुकता नहीं है, वैसे हमारा प्रसारण रुक नहीं सकता है। और उसमें गए और चूंकि मैं कैजुअल रहा था वहां, तो देख तो रहा ही था लोगों को कि मेरे सामने किस तरह से कंसोल ऑपरेट किया जाता है और कैसे बोलते हैं किस तरह से, तो मैं गया और मैंने उस दिन वो कर लिया, कार्यक्रम कर लिया, उस दिन उद्घोषणा मैंने शुरू कर दी और ईश्वर की कृपा ये है कि उद्घोषणा पूरे सभा में कर ली, अच्छी तरह से कर ली। और
1: बहुत बढ़िया।
0: और शायद मतलब कि अगर एक सप्ताह की तैयारी के बाद जाता तो मेरे अंदर हो सकता है कोई झिझक होती, लेकिन ये अनायास जो स्थिति आ गई थी
1: जी,
0: तो उस स्थिति का चूंकि मुकाबला करना था इसलिए अंदर में एक साहस था और किसी तरह की झिझक नहीं हुई, बड़े ही अच्छे से वो प्रसारण हो गया। ये मेरा एक अनुभव मैंने आपके साथ बात।
1: क्या बात है सर, ऐसी ही बहुत सारी बातें आपकी सुनने की लालसा हो रही है, पर क्योंकि वादा किया है श्रोताओं को कि आप ही के पसंद के गीत भी उनको सुनवाती रहूंगी अपने इस विशेष प्रोग्राम में, जिसने अभी ट्यून इन किया है उन्हें हम बता दें कि आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के संग।
0: यहां एक बात मैं और कह देना चाहूंगा कि चूंकि आपने शुरू में ही वो जो गीत बजाया है ये कैसा सुर मंदिर है जिसमें संगीत नहीं, तो आकाशवाणी तो सुर मंदिर ही है, तो इसमें तो संगीत तो होना ही होना होगा, नहीं तो श्रोता तो फिर हमारे पीछे पड़ेंगे कि आप अपने शुरू में ही अपनी बात जो कही उससे आप अलग हट रहे हैं।
1: बिल्कुल। तो इसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए सर की ही पसंद का एक और बहुत ही खूबसूरत गाना हम आपको सुनवा रहे हैं शोर फिल्म से। वैसे आप

जाना कहीं नहीं है, आप सुनते रहिए आकाशवाणी, क्योंकि इस गाने के बाद बहुत सारी दिलचस्प बातें हम यहाँ करेंगे श्री अरुण कुमार पासवान के साथ। और सर लेखक भी हैं, जाने माने कवि भी हैं, बहुत सारे पुरस्कार इन्हें मिले हैं, उसकी भी बातें होंगी।

0: आप सब तो जानते ही हैं कि आकाशवाणी इस साल 90 वर्ष अपने पूरे कर रहा है और इसी उपलक्ष में आज आकाशवाणी दिल्ली के एफएम गोल्ड चैनल पर आकाशवाणी के संग यादों के रंग में हमारे साथ एक विशेष अतिथि हैं श्री अरुण कुमार पासवान और इनके साथ हम बातचीत कर रहे हैं। सर यहां पूर्व सहायक निदेशक रहे हैं आकाशवाणी में और बहुत सारे अपने अनुभव संस्मरण हमारे साथ साझा कर रहे हैं। और इसी कड़ी में आगे बढ़ते हुए सर मुझे ये ख्याल आ रहा है कि क्या कभी ऐसी कोई ऐसा पल आया कि आपको चुनौती का सामना करना पड़ा हो अपने कार्यक्षेत्र में और आपने उसे कैसे पार किया और आजकल के युवा प्रसारण कर्मियों को आप उससे क्या सीख देना चाहेंगे या क्या कहना चाहेंगे कि वो कुछ सीख सकते हैं।
1: जी अपराजिता जी, मुझे याद आता है कि मैं जब उद्घोषक होकर नियमित उद्घोषक होकर जब आया आकाशवाणी में तो जो एक शपथ लेने की जो हमारे यहाँ परंपरा है जब किसी पद पर आप आते हैं तो शपथ लेने की परंपरा है तो उस समय हमारी केंद्र निदेशक थीं वहां श्रीमती विजय लक्ष्मी सिन्हा जी जो बाद में आकाशवाणी की उप महानिदेशक भी हुई थी और वो हमारी थी केंद्र निदेशक उस समय तो उन्होंने मुझसे एक ही बात कही कि आप आकाशवाणी में आए हैं दूसरे संस्थानों में और आकाशवाणी में एक जो मौलिक अंतर है उसे आप आज से जान लीजिए कि दूसरी जगहों में घड़ी देखकर काम करते हैं और आकाशवाणी में काम करके घड़ी देखते हैं।
0: क्या बात है।
1: मैंने सचमुच में उसे मंत्र के रूप में स्वीकार किया
0: बिल्कुल
1: और उसके बाद जीवन में कभी भी काम पूरा होने से पहले मैंने घड़ी नहीं देखी।
0: क्या बात है, बहुत खूब।
1: और उन्होंने ही हम बिल्कुल नए नए आए थे तो उन्होंने अपने हमारे यहाँ जो परंपरा थी कि हम लोग जो उसको नियत बिंदु तालिका कहते हैं फिक्स प्वाइंट चार्ट कहते हैं वो हम बदलते रहते हैं तो उन्होंने जब एक नया फिक्स प्वाइंट चार्ट दिया तो उसमें एक कार्यक्रम उन्होंने शुरू किया। गानों की ही प्रस्तुति थी, गानों का कार्यक्रम था लेकिन उन्होंने कहा कि सिर्फ उद्घोषणा करके गाने नहीं बजाए जाए बल्कि गानों को प्रेजेंट किया जाए, कुछ बोला जाए, ऐसा लगे लोगों को कि आप उन गानों से जुड़ रहे हैं और श्रोताओं को उन गानों से जोड़ रहे हैं तो इसमें थोड़ी सी तैयारी आप लोगों को करनी पड़ेगी। तो शुरू हुआ, लोगों ने किया और भी उद्घोषक थे लेकिन जो वरिष्ठ लोग थे सप्ताह 10 दिन के बाद वो लोग कहने लगे कि ये बहुत मेहनत का काम है तो इतने

0: इतना समय हमारे पास तो अलग से होता नहीं है, दूसरे और भी काम होते हैं, सारी तैयारी करनी पड़ती है, तो धीरे धीरे धीरे उन्होंने छोड़ दिया। लेकिन मुझे लगा कि मेरे लिए एक अवसर है
1: जी,
0: मेरे लिए वो जो चुनौती है कि इस तरह से आने की, वो एक अवसर है कि इसी बहाने मैं कार्यक्रम प्रस्तुत करना सीख रहा हूं, कार्यक्रमों के बारे में, गानों के बारे में, या गानों को प्रस्तुत करते हुए श्रोताओं से किसी अन्य विषय के बारे में कुछ लिखने की क्षमता मैं यहां से तैयार कर सकता हूं। तो वो मैंने शुरू किया और उसने मुझे पूरे जीवन में काम दिया। और आज जो आप दो तीन बार अभी कह चुकी हैं कि लेखक भी हैं, कवि भी हैं, तो मुझे लगता है कि इसमें उसका बहुत बड़ा योगदान है।
1: क्या बात है,
0: वो जो मेरे सामने अवसर आया उसका बहुत बड़ा योगदान है। और एक और बड़ी चुनौती मुझे ध्यान में इस समय आ रही है अपराजिता जी, कि हमारे एक ये दूसरे समय की बात है, तब की बात नहीं है
1: जी।
0: हमारे निदेशक उस समय हुए थे, होते थे श्री वीरेंद्र शुक्ल, तो उन्होंने एक दिन मुझे एक आलेख लाकर दिया और आलेख लाकर दिया और उन्होंने ये कहा कि ये आलेख जो है इसे आज शाम 7 बजे बजना है।
1: अच्छा।
0: इसको डायलॉग फॉर्म में बजाना है।
1: अच्छा।
0: और मतलब कि डायलॉग भी जो होगा वो मतलब नाटकीय अंदाज में होगा, उसी तरह का आलेख है ये। और मतलब कि दूसरा कौन आदमी होगा, एक तो आप कर लीजिएगा, एक और कौन आदमी होगा उसे आपको चुनना है, क्योंकि मेरे पास वक्त नहीं, मैं कहीं जा रहा हूं, इसे आप संभाल लीजिएगा। 7 बजे का समय दिया था उन्होंने कि 7 बजे आपको करना है, और आलेख उन्होंने मुझे दिया था 4 बजे। दिक्कत ये थी कि दूसरा कोई मुझे आदमी मिल नहीं रहा था।
1: अच्छा।
0: तो मेरे पास चुनौती थी कि अब जब डायलॉग करने हैं तो दो लोगों में ही करने हैं
1: जी।
0: अपने से तो मैं मोनोलॉग कर सकता हूं, डायलॉग तो नहीं कर सकता हूं।
1: बिल्कुल बिल्कुल।
0: लेकिन अब उनका आदेश है तो चलिए इसे मैंने चुनौती के रूप में लिया।
1: बिल्कुल।
0: और चूंकि नाटकों से मेरा संबंध पहले से था, मंचों पर भी काम किया था और आकाशवाणी में भी काम किया था आने के बाद, तो मैंने वो दोनों जगह अपने को ही रखा और इस तरह से उसे प्रस्तुत किया कि, लेकिन उसमें ये हुआ कि नाम मुझे नहीं बताना पड़ा, मैं कैसे बताता कि कौन कौन इसमें भाग ले रहे हैं, उसमें उद्घोषणा नहीं की
1: जी,
0: मैं दोनों ही था, मैंने उसमें नाम नहीं लिखा। अगले दिन जब कार्यक्रम की बैठक हुई तो उसमें ऐसा हुआ कि बहुत अच्छा था, बहुत अच्छा था, दोनों ही लोगों ने अच्छा काम किया था। तो मैंने कहा कि तो दोनों लोगों में से दोनों लोगों को तो आप लोग पहचानते ही होंगे, तो एक नाम तो मेरा ले रहे थे सभी, लेकिन दूसरे नाम में कोई किसी का नाम ले रहे थे, कोई किसी का नाम ले रहे थे,
1: पहचान नहीं पाए, क्या
0: जी
1: बात है।
0: और आखिर में जब मैंने ये बताया कि मेरे पास कोई उपलब्ध नहीं थे और मुझे भी उस जगह पर लगना पड़ा, तो सारे लोग खुश हुए। हालांकि मतलब तकनीकी वो गलती हुई कि वहां मैं उद्घोषणा नहीं कर पाया कार्यक्रम में कि कौन इसमें और भी प्रतिभागी हैं, लेकिन अब जिम्मेदारी थी, वो उस चंक को खाली नहीं
1: जी,
0: जाना
1: जी,
0: था
1: जी,
0: उससे बजना था। तो वो ऐसी कई चुनौतियां प्रसारण में आती रहती हैं और मतलब उनका मुकाबला आपको करना होता है, करना चाहिए। इसीलिए आप जो हैं आकाशवाणी में, आप कर्मचारी सिर्फ नहीं होते हैं, आप यहाँ कलाकार होते हैं।
1: क्या बात है, क्या बात है। एक एक शब्द में ऐसा लग रहा है आज FM गोल्ड के स्टूडियो में जैसे मोती बरस रहे हूँ, और मैं तो यहाँ इन मोतियों को बटोर ही रही हूँ और झोलियां भर रही हूँ। एक खुशी का एहसास है बहुत ज्यादा, और ये भी खुशी है कि आकाशवाणी 90 साल पूरे कर रहा है, और इसी के साथ आप तक ऐसे अनमोल रत्न हम ढूंढ के लाए हैं जिनसे बातचीत हो रही है, और आप तक ये इतने अपने जीवन के जो सभी इनकी कह सकते हैं कि जीवनी का जो हिस्सा रही हैं बातें, उनको हमारे साथ साझा कर रहे हैं, और सीखने को बहुत कुछ मिल रहा है। देखिए कितनी अच्छी बात सर ने बोली कि

0: चुनौती को अवसर की तरह लिया और क्या चाहते हैं हम, मतलब इतनी बड़ी बड़ी बातें आज हम सीख रहे हैं और कुछ ही आसान से पलों में सर ने अपने यहां हमें बताया। सर एक गाना आप बताइए आपकी पसंद का हम यहां बजाना चाहेंगे।
1: हाँ, मुझे लगता है कि एक गाना है मौसम फिल्म में,
0: जी जी
1: वो लता मंगेशकर और भूपेंद्र जी का गाया हुआ है, दिल ढूंढता है।
0: वाह वाह क्या बात है। और ये खूबसूरत गाना सर की पसंद का आप सबके लिए भी और हमारे लिए भी।

एक छोटा सा ब्रेक लेंगे और जल्द वापस आएंगे आकाशवाणी के संग यादों के रंग में। आप सुनते रहिए आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल 100.1 MHz पर।

0: और फिर आप हमारे साथ जुड़ गए हैं। हमारे साथ आज विशेष अतिथि हैं आकाशवाणी के संग यादों के रंग में, जो आकाशवाणी के 90 वर्ष पूरे होने पर हमारे साथ इस उपलक्ष्य में, इस श्रृंखला में शामिल हुए हैं और अपने बहुत सारे अनुभव, संस्मरण, यादें जो हैं हमारे साथ बांट रहे हैं और बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है। अगर आपने शुरू से मेरे साथ इस प्रोग्राम को सुना है तो आप समझ पा रहे होंगे कि किन मोतियों की मैंने बात की थी इस ब्रेक पर जाने से पहले, गाना सुनने से पहले। तो कुछ और मोती बटोर लेते हैं। अभी हमारे पास लगभग 9 मिनट और हैं इस प्रोग्राम में। तो सर, मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि जैसा आपने भी कहा कि मैं कई बार बता चुकी हूं, आप एक बहुत अच्छे कवि हैं, आपके बहुत सारे काव्य संग्रह आए हैं और लेखक भी हैं, तो आकाशवाणी ने आपकी रचनात्मकता को प्रभावित किया ये हमने अभी जाना, तो कोई एक आपकी कृति जो आप हमारे साथ यहां साझा करना चाहते हो?
1: वैसे तो कविताएं और भी हो सकती थीं, लेकिन चूंकि 90 साल हम मना रहे हैं आकाशवाणी के, 90 साल इस संस्थान के ऑल इंडिया रेडियो से लेकर आकाशवाणी के इस पूरे जीवन काल का जो है, ये 90 वर्ष हम पूरा कर रहे हैं, और इसमें एक बड़ी चीज होती है किसी भी, चूंकि यहां प्रसारण सभा हमारी होती है तो इसका आरंभ जो होता है, आरंभ जो होता है, तो अब तो हम देख रहे हैं कि

0: बहुत सारे स्टेशन, ज्यादातर स्टेशन अब लगातार प्रसारण करते हैं 24 घंटे, तो उसमें तो आरंभ और अंत की बात होती नहीं है, लेकिन जब सभा शुरू करने की बात होती थी, अलग अलग सभाएं शुरू होती थी, तो तब उस समय संकेत धुन का बड़ा महत्व होता था।
1: बिल्कुल बिल्कुल।
0: और संयोग से आकाशवाणी संकेत धुन जो है ये इतनी अच्छी धुन है कि मुझे तो इससे अच्छी धुन आज तक कहीं मिली नहीं।
1: बिल्कुल।
0: तो उसी पर मैं एक कविता, चूंकि जब आकाशवाणी को इतने दिनों तक पहले श्रोता के रूप में और बाद में उसमें उसके सेवक के रूप में, तो वो जो उससे आनंद लिया है, जो उससे महसूसा है हमने, तो उससे जुड़ी हुई एक ये कविता है आकाशवाणी संकेत धुन के लिए।
1: बिल्कुल सर।
0: इसे इस तरह आप अनुभव कर सकते हैं अगर आपने सुना हो तो, कि प्रथम उषा किरण जैसी, प्रथम उषा किरण जैसी, आनंद आवाहन जैसी, बारिश की फुहार जैसी, बसंत के बयार जैसी, नबोढ़ा के श्रृंगार जैसी, प्रथम प्रेमोपहार जैसी, शिशु को मां की छुवन जैसी, मलयागिरी के पवन जैसी, बेला की खुशबू जैसी, जीने की आरजू जैसी, वादियों की सदा जैसी, पहाड़ियों की अदा जैसी, यमन जैसी, मल्हार जैसी, शिवरंजनी में दुलार जैसी, संतूर जैसी, सितार जैसी, वायलिन के उद्गार जैसी, किसानों की आस जैसी, बागानों की सांस जैसी, नील गगन की शांति जैसी और मन की विश्रांति जैसी, देवदूत के पदचाप जैसी, देवदूत के पदचाप जैसी, भूमि भूमा मिलाप जैसी, ये धुन नहीं संगीत सुधा है, तृप्त करती मन की क्षुधा है, तृप्त करती मन की क्षुधा है।
1: वाह क्या बात है। और सुनते ही ऐसा लग रहा है जैसे आपके कानों में कोई आकाशवाणी का रस मानो घोल रहा है। बहुत खूब सर, बहुत ही खूबसूरत ये कविता। मुझे लगता है कि सिर्फ मैं नहीं, जितनों ने ये अब तक कविता सुनी होगी और जो आकाशवाणी को जी रहा है जैसे आपने जिया है, हम कोशिश कर रहे हैं, और जो जानता है आकाशवाणी को या नहीं भी जानता, यहां मैं ये भी कहना चाहूंगी, वो जरूर जान जाएगा इसे सुनने के बाद।
0: अपराजिता जी, यहां मैं अपनी यात्रा में से एक छोटी सी बात सुनाना चाहूंगा।
1: बिल्कुल,
0: लेकिन महत्वपूर्ण है कि पहले जब कि इतने सारे FM चैनल नहीं हुआ करते थे, सिर्फ आकाशवाणी आकाशवाणी हुआ करती थी, और टीवी पर भी सिर्फ दूरदर्शन ही हुआ करता था।
1: बिल्कुल।
0: तो वैसी स्थिति में, जैसे मैंने बताया विजयलक्ष्मी सिन्हा जी के बारे में, वैसे ही मेरी एक और स्टेशन डायरेक्टर थी श्रीमती ग्रेस कुजूर, वो भी बाद में महानिदेशालय में आई थी। तो उन्होंने एक बार एक कार्यक्रम हमें आवंटित कर दिया, उस समय मैं उद्घोषक ही था, तो कार्यक्रम आवंटित कर दिया, 5 मिनट का चंक दिया और कहा कि 5 मिनट में आप कुछ ऐसा कुछ प्रोडक्शन करें जो कि श्रोताओं को रुच जाए। तो वैसी स्थिति में हमने एक मतलब दो पात्रों को लेकर एक छोटी स्किट बनाई और मतलब कि उसका नाम रखा मामा भांजा। एक अच्छा। मैं था, एक श्री प्रकाश जी नाम के हमारे सहयोगी थे, वो ड्यूटी ऑफिसर थे, मैं अनाउंसर था, और वो जब हमने शुरू किया तो ये था लोगों में कि श्रोताओं की तरफ से आता था कि उस समय आकाशवाणी में दूरदर्शन में एक कार्यक्रम गानों का होता था, उसी समय जिस समय हम लोग ये कार्यक्रम कर रहे होते
1: अच्छा।
0: थे, तो वो कहते थे, श्रोता अक्सर कहते थे हमें कि वो 5 मिनट जो होता है उस 5 मिनट में हम
2: मीडियम वेव को 213.67 मीटर तदनुसार 1404 किलोहर्ज को तरंग में हामी आकाशवाणी को गान्तोक केन्द्रबाट बोलिरहेका छौं। यसका साथै FM कञ्चनजंघा 103 मेगाहर्ज अनि न्यूजन AI

नमस्ते मेरे फौजी साथियों, स्वागत है आप सभी का शौर्य गाथा के आज के कार्यक्रम में। और मैं हिमा आज आपके लिए कुछ ऐसे गीत लेकर आई हूँ जो मेरे पसंदीदा गानों में से हैं। और मुझे लग रहा है, मतलब अंदर से ऐसी कुछ फीलिंग आ रही है कि आप लोगों में से भी कईयों की पसंद के गाने होंगे ये जो आज हम सुनने वाले हैं। यूं बरसती है तसव्वुर में पुरानी यादें, यूं बरसती है तसव्वुर में पुरानी यादें, जैसे बरसात की रिमझिम में समा होता है। कतिल शिफाई साहब के इस शेर में क्या ही बात कही है हमारी यादों को लेकर। हर याद के साथ कुछ न कुछ ऐसी बात जुड़ी रहती है जो हमारे दिल के बहुत ही करीब रहती है, और शायद इसीलिए ये यादें बन जाती हैं। जैसे कई सारी यादें होती है हमारे बचपन से जुड़ी हुई, और बातें अगर बचपन की हो और हमें अपनी स्कूल लाइफ याद ना आए ऐसा हो ही नहीं सकता। स्कूल के दोस्त, हमारे टीचर्स, यहां तक कि हमारी स्कूल बिल्डिंग, ये सारे हमारे जहन में कौन जाते हैं। और मिलने वाली सजा भी एक यादगार वाकिया होता है हमारे लिए। तो चलिए क्यों ना एक चक्कर लगा ले मस्ती की पाठशाला का, कुछ देर झूमने के लिए, कुछ देर घूमने के लिए।

bungba wa sixing la minkok sapla in yen ni tik fang mi de chuk ma ki bungba wa yok chum de pangbuwa ba yok lok kepren sixing in nori kang chuk yum ba parik le si kusiba wa sixing khepji gok ni tin nibong ang fang si mi henching ne chi nibong tuk se ya ma ki bungba wa ain kap yong ge ba ओसेन मा येन रो खा खेन सुयम हे मो सुकिम खामगुबा सुमिहांग प्रेम सिंह तामंग रे ओसेन मा नो इचो पिरुस्यांग वा सुमिहांग रे मुइन हे मो पोदक चोगु इसिक ओसेंग मा रे निंगवा मेब्रु आंग यांबक मेजुगु र या मिरेन लुम हे मो सेवा मेगेतु ओसेंग मा रे यांगदुम ओमेत मो थिम इसिक एक्सिबो सिरो केदुक पाहा ओमे लागी मेना सिंगे यांबक मेजो ओमेत नु ख्योंग हिंगवा इसि केरे केदुक पा या मिहा सेवा मेगेतु खुने लक fa hade sigik wanu chahaba yemmo pewa dimba pung sumihangre patongwa anikere le norsing ha nogen nu najam pi masi pung ain asam khamguba sumihang hemanta biswa sharma re manghup thimbe veterinary ten chat ten khana para guati mo pokheng waye manghup khamguba khamguyuk pa sodugen lakshman prasad acharya chat सियांग वये मांगहुप थिमबे मोते मेन लाजिबा मातुमिहांग नरेंद्र मोदी ये हिमगेन लक लुमिहांग अमित शाह थक्सु लुमिहांग राजनाथ सिंह बीजेपी एनडीए युफोबा सोहांगमी तेमेन तेनसाबा हुपलोकबा तुमफुबा लामलोबानु खामगुबा वेवे सुमिहांग हारेन थिमबे मोतायु मेवये केदेकले थाइंग केबाबाय पान सुमिहांग शर्मा इन निस्केक पालेंग बीजेपी लाम पोखेबारु खा खेन कुरुम हेमो सुकिम बा सुमिहांग प्रेम सिंह तामंग ताइंग पोखेंग वये सुमिहांग रे मुइंग हेमो पोधक तुआंगवा सबमुंदुमी बा लामदिक हेक्सिंग थोबो नु नो बा युफोरेन आसाम खामगु या मिरे पोंगल सांगल सुर बांग पोधक सुगंग वा आसाम खामगु बा सुमिहांग नु लुमियांगा आइने मांगहु मेजातु सियांग वये कांदो इंगसेबुंग हिमलाम इंगोंग अकेप्सन लबछे चुरे अल्लानि भग्र आमिम खेमला बा खेमला मसिन लुम हेमो संजीत र याक थुमरे को इक्ला हेमो मंगसेवा सामलो तोनुंग लपता

फसल बीमा योजना लप्छासी ची नाजा ये पोये दी इम्शाजा दिलरिमले सुशे ई संखे लंगे चो दि छाजी दि काई इन से शुभा चेने जगर गेखप दे ची दा जिक्षु जगर लपते तातो साते ये तो बे दी फ्याजा जगर गेखप दा नाची गे क्यों ई चुना गे लायु दा शिंगी यु फ्याखे खोंग चुगी तेनले दि छाजी लो ब्याम चुको ई खोंगचुगी तेनले जगर जुंगी की थूले गेंजे याना इंश्योरेंस लपते प्याय जाए पो ई जगर सिले छुकी की दि छाजी लो ब्याम चुको एपो दि नंगतर ना थातो सा जगर की ई थमचे चुई तेनले जगर ची दा छाजी ची लपते जु जाजा को एपो ई दि प्याजा सेनम पीगी ला सेनम पीगी लाखू फ्याखें चुई धेनले दे छाजी ना येखें क्रॉप इंश्योरेंस की थूले फेंतु छिटा दा रोराम केप ची ना गें लेन छुखें पे पेर ना तातो सेनम पीगी लाखू फ्याखें खों चुई धेनले देम ला साजी बंपो चुना के शिंगी यु फ्याशे हेपा चेने दे छाजी की क्रॉप इंश्योरेंस ये ना जुंगी की थूले फु या ना लोन चु लपते थप छुशे खेंपे देदा यमची शुमा फेंतु छिटा ची या थेंशे दा लेम ची या थें छुशे पो ई अदि फ्याति की थातो जगर गेखप ई लुंपो छु छु ना लाला की छेमेगी की लाखू लाला की खुर्शिंग दा की दो चुक्षे दा जेमे लेरिम लाखू चु के फ्याति हेतो पे देरा फ्याति की थातो जगर गेखप ले ई लुम्पो ग्याई ग्या याची चुले देम छेम दा जेमे की लेरिम चु तादी की देम छेमे की चंका चु फ्यादो पे देदा डाउ थातो नचा चुकी की माछु मेम्बे की नचा की थातो सम छुम चुले ड्यूटी की नुम छिम अचो दा बेंदा लासोक पोचु न्यो साखे थम से डुबडे दिचु ग्याई ई ग्यात ग्याले अंदो पे केसी नचा रंकी की नची की ला लाना चुचु को बुकल फॉर लोकल लप्ती की चुक जाजा को ये ना देम मिदिचु चाले न्यो साको मेखेंबे अधि फ्याति की दे फ्याबा चेने दे तातो रांकी ला ना चु चुक जाजा को या चु चु को ये ना देम ठीमू हेबे हेये पे सम्दा ची ये पे के सम्दा थप्षे तो पे दिले इरू छाजी दे नंगतर ना जुंग ले थातो क्रॉप इंश्योरेंस ले ज्यू तिकी जेमे के लेरिम सापो चु मांडो चु ना या ये खेंबे दिदा हेबेगे छाजी चु ना जुंग की थू ले थातो साते रोरम ना जी ये खें चु ई दा चिछु यारगे थेंशे गी थेनले ची इन अधि फ्याति की थातो जागर जुंग दा डेंजों जुंग लेगे रोरम फेंतु थेन हेबेगे थिंकें चु नचाकेगे दीलो नांगमी मातों वर काजी छुछुप दी छाजी चु ले यामेने लेरिम चु ना जाजा को ये बीती चुई चाले नचाके दिचु ले जब ले खेपसों थेंशे की यु दा लेरिम चु फ्याशे की ककाप नागो पो लेप्रा खेचे शुची ए पो ई

0: Samana de jue pe lenge tu tichi de chica biakegi tisechi in. Kanshu she sebachene tichi de digi cup namdi ati ya ho ka kanaten ka kia ken misu kembe odi fiatiki ngacha. Gari tuna de kep kepo ya ho kepo fiati ngacha. Du mile kembe odi fiatiki ngacha tamte tu tichi de chica sap sap. Piatiki, Jupunyala, Lapti, Shujin Taringi telling a chigi lerin natsonta, Tatasante, Lengi tuki, Lungtika gatu, Pangi mito, Dejumpe lerim, Chabda, Semanabu in Tura pisam kichuzi, Nadung de pile, Loktira lerim Sapozu bakti, Lengi tuki, and silo, Pishira in Tadijabli, Lengi tu, Semona, Gelsa, Delile, Jutiki, Hindi gina, Ge kap nimi goju, Natul, Semona.
1: नमस्कार आकाशवाणी समाचार के साथ मैं लवलीन निगम भारत 14 और 15 मई को ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक की मेजबानी करेगा बैठक की अध्यक्षता विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर करेंगे विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने नई दिल्ली में बताया कि ब्रिक्स के सदस्य सहयोगी देशों के विदेश मंत्री और प्रतिनिधि मंडलों के प्रमुख बैठक में शामिल होंगे वे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करेंगे बैठक के दौरान ब्रिक्स सदस्य देशों के विदेश मंत्री आपसी हित के वैश्विक और क्षेत्रीय मुद्दों पर विचार विमर्श करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार को पांच देशों संयुक्त अरब अमीरात नीदरलैंड्स स्वीडन नॉर्वे और इटली की यात्रा पर रवाना होंगे पहले चरण में श्री मोदी संयुक्त अरब अमीरात पहुंचेंगे और राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान से मुलाकात करेंगे प्रधानमंत्री नीदरलैंड्स के नरेश विलेम अलेक्जेंडर और महारानी मैक्सिमा से भी मुलाकात करेंगे विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि प्रधानमंत्री की यात्रा के दौरान ऊर्जा सुरक्षा सहित कई क्षेत्रों में साझेदारी मजबूत होगी
2: संयुक्त अरब अमीरात दौरे के दौरान भी ऊर्जा सुरक्षा पर बातचीत होगी जिस प्रकार का हमारी उनसे साझेदारी चल रही है कैसे इसको और व्यापक किया जाए ताकि हम अपने जो ऊर्जा सुरक्षा हमारी है उसको हम मजबूत कर सके इसके अलावा जो चार अन्य देश हैं नॉर्डिक समिट होने वाला है नॉर्वे की यात्रा है स्वीडन की यात्रा है इटली की यात्रा है नेदरलैंड्स की यात्रा है यहां पर भी ये देश में से नवाचार के बहुत बड़ा केंद्र है इनोवेशन इकोसिस्टम में भारत में बहुत काम हो रहा है और क्लीन एनर्जी टेक्नोलॉजीज में ये लोग और ग्रीन ट्रांजिशन में काफी आगे हैं तो इन सभी मुद्दों पर हमारी बातचीत होगी और वो सब साझेदारी जो विकसित भारत की तरफ हमको ले आता है उसे कैसे मजबूत किया जाएगा
1: भारत और नेपाल संबंधों पर श्री जायसवाल ने कहा कि दोनों देशों के बीच बहुआयामी संबंध हैं श्री जायसवाल ने कहा कि ये भारत और नेपाल की अटूट मित्रता तथा पारंपरिक संबंधों को और मजबूत करने के लिए भारत की दृढ़ प्रतिबद्धता को दर्शाता है उन्होंने कहा कि दोनों देश साझेदारी को सुदृढ़ करने के लिए मिलकर काम कर रहे हैं गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार साइबर सुरक्षित भारत के निर्माण की दिशा में अथक प्रयास कर रही है उन्होंने कहा कि साइबर अपराधों पर अंकुश लगाने में अवैध खातों की समस्या बड़ी चुनौती बनी हुई है भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र ने आज रिजर्व बैंक इनोवेशन हब के साथ एक समझौता किया है इसका उद्देश्य बैंकिंग और डिजिटल भुगतान प्रणाली में साइबर आधारित वित्तीय धोखाधड़ी से निपटने और अवैध खातों को कम करने में सहयोग को मजबूत करना है सरकार ने कहा है कि नीट यूजी पेपर लीक मामले में शामिल लोगों को गिरफ्तार कर जेल भेजा जाएगा ताकि विद्यार्थियों के भविष्य पर कोई प्रतिकूल प्रभाव न पड़े नीट परीक्षा रद्द करने के संबंध में एक सम्मेलन में राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी के महानिदेशक अभिषेक सिंह ने कहा कि एजेंसी विद्यार्थियों को नीट यूजी परीक्षा शुल्क वापस कर देगी उन्होंने कहा कि परीक्षा दोबारा आयोजित की जाएगी जो निष्पक्ष तरीके से होगी और इसके लिए कोई अतिरिक्त शुल्क नहीं लिया जाएगा इस बीच सरकार ने पेपर लीक के आरोपों की पूरी जांच केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई को सौंप दी है शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के माध्यम से सरकार मातृभाषा भारतीय

0: ज्ञान परंपराओं और एआई संचालित शिक्षा पर आधारित अनुसंधान और नवाचार को निरंतर बढ़ावा दे रही है। उन्होंने कहा कि ग्लोबल साउथ के देश विश्वास, समाधान और नेतृत्व की अपेक्षाओं के साथ भारत की ओर देख रहे हैं। भारतीय सामाजिक विज्ञान अनुसंधान परिषद के स्थापना दिवस पर उन्होंने कहा कि यह संगठन भारतीय परिप्रेक्ष्य में सामाजिक विज्ञान अनुसंधान को नई दिशा देने का महत्वपूर्ण कार्य कर रहा है। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने देश भर के न्यायालयों के आधुनिकीकरण का खाका तैयार करने के लिए न्यायमूर्ति अरविंद कुमार की अध्यक्षता में उच्च स्तरीय समिति गठित करने की घोषणा की है। इसके लिए सरकार से 40 से 50 हजार करोड़ रुपए का आवंटन सुनिश्चित करने को कहा गया है। पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता शुभेंदु अधिकारी के निजी सहायक चंद्रनाथ रोड की हत्या की जांच केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो ने अपने हाथ में ले ली है। राज्य पुलिस की सिफारिश के बाद यह जांच केंद्रीय एजेंसी को सौंपी गई है। सूत्रों के अनुसार मामले की जांच के लिए पुलिस महानिदेशक पंकज सिंह की अध्यक्षता में 7 सदस्यीय विशेष जांच दल का गठन किया गया है। आईपीएल क्रिकेट में आज शाम 7:30 बजे अहमदाबाद में गुजरात टाइटन्स का मुकाबला सनराइजर्स हैदराबाद से होगा। हैदराबाद अंक तालिका में दूसरे और गुजरात तीसरे नंबर पर है। आज के मैच का विजेता तालिका में शीर्ष पर पहुंच जाएगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: मीडियम वेव को 213.67 मीटर तदनुसार 1404 किलोहर्ज को तरंग में हामी आकाशवाणी गान्तोक केन्द्रबाट बोलिरहेका छौं। यसका साथै एफएम कञ्चनजंघा 103 मेगाहर्ज अनि न्यूजन एआईआर मोबाइल एप मार्फत पनि हाम्रो यस प्रसारणले सुनिरहनु भएको छ। समय यस बेला स्टुडियोको घड़ी अनुसार 6:05 भइसकेको छ। अब प्रस्तुत छ दैनिक ग्रामीण कार्यक्रम।

0: a sentiment which basically pushed against using imported toys, which was so easy, so cheap, and it was almost like majority of the toys were dumped into India.
1: Vinod, we also have with us at this point of time a toy maker, Chitari. He joins us from Maharashtra. Let's hear what he has to say about toy making and what transformation that has come into the toy industry. Chitari, aapka bahut swagat hai Money Talks mein.
2: Thank you, sir.
1: Aap bataiye ki aapki kahani kya hai?
2: Mera naam Amit Chitari hai. Main Sawantwadi se artisan karke hu. और हम लोग एक मेरी ये फोर्थ जनरेशन है अभी भी हम लोग वुडन टॉयज बना रहे हैं इधर सावंतवाड़ी में.
1: ओके.
2: स्पेशली हमारा जो टॉयज है वो गंजीफा आर्ट रिलेटेड है. गंजीफा ट्रेडिशनल आर्ट है, उससे जो कलर स्कीम है वो उसमें जुड़ी है.
1: ओके. तो आप मुझे ये बताइए कि कुछ सालों से आपने क्या बदलाव देखा है टॉय इंडस्ट्री में आते हुए?
2: अभी लोगों का माइंड थोड़ा चेंज हो गया है. लोग फिर से वुडन टॉयज के बढ़ रहे हैं क्योंकि प्लास्टिक वगैरह को ज्यादा यूज नहीं करना चाहते हैं क्योंकि ये ऑर्गेनिक जो मतलब जो लकड़ी का खिलौना है ना उसको ज्यादा प्रेफर कर रहे हैं लोग अभी.
1: ओके. और आपको क्या सरकार की योजनाओं से कुछ फायदा हुआ है?
2: बिल्कुल फायदा हुआ है. उसकी वजह से हमने थोड़े हमारे वर्कशॉप में ऑटोमेशन मतलब सीएनसी मशीन्स वगैरह खरीद लिए है तो उससे प्रोडक्शन ज्यादा हो रहा है हमारा.
1: और आप क्या सोचते हैं कि आजकल जो आपके ग्राहक हैं वो ज्यादा अवेयर हैं सस्टेनेबिलिटी के? वो जानते हैं कि प्लास्टिक से कितने लाभ नहीं मिलते हैं जितना लकड़ी के टॉयज से मिलते हैं, बच्चों के लिए वो ज्यादा सेफ हैं. क्यों आजकल ये अवेयरनेस आ गई है क्या लोगों के बीच में?
2: बिल्कुल सर, आ गई है क्योंकि ज्यादा करके लोग है ना अपने बच्चों के तरफ से ज्यादा सेफली सोचना शुरू कर दिया है क्योंकि लकड़ी का कुछ साइड इफेक्ट नहीं होता. और हम लोग जो लकड़ी यूज करते हैं वो स्पेशली जामुन की लकड़ी यूज करते हैं.
1: ओके.
2: बच्चे के लिए तो जामुन की लकड़ी जो रहती है ना वो अगर बच्चों ने ना मुंह में डाली तो उसका साइड इफेक्ट नहीं होता है.
1: तो आप क्या आपके ये जो टॉयज हैं ये भारत से बाहर भी एक्सपोर्ट किए जाते हैं?
2: हाँ सर, होते हैं लेकिन हम लोग नहीं करते, हमारे से लेके दूसरे लोग करते हैं.
1: चितारी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमसे जुड़ने के लिए.
2: Thank you, sir.
1: So, Vinod, coming back to you after listening to what Chitari said to us that he's been in this business for the past 4 decades, where China has dominated the global toy market. Now, how is India now competing, like people like Chitari competing with them, and what is our edge over Chinese manufacturers?
0: If you look at the overall toy ecosystem, I feel micro and small enterprises have largely responded very, very positively to the government's initiatives in the toy sector. And I think the policy push is one of the strongest examples of how targeted regulatory and industrial interventions can primarily revive domestic manufacturing ecosystem. So many toy manufacturers used to talk to us about the fact that there was intense pressure from low-cost imports, especially in those that were in the unorganized and mass market segments. A large number of small manufacturers shut down operations or shifted to trading imported products due to unsustainable competition. The government's interventions, especially the mandatory BIS quality standards and the high import duties, fundamentally changed the industry sentiment after the Vocal for Local campaign and the Honorable Prime Minister's reiterating over and over again that we need to look at, you know, how do we get back our own manufacturing and stop buying toys from all over the world. So if you ask me how MSMEs have reacted, a lot of them, like Chitari just talked about, have restarted or expanded domestic production capacities. They have increasingly adopted quality standards. They have modernized operations, improved product safety, and also invested in better manufacturing practices. So today, what you have is you don't have people that are just making products for the Indian market, but for a globally competitive ecosystem throughout the world. And Indian consumers obviously have this improved consumer trust in Make in India products. You've seen huge emergence due to the Startup India initiative, where you have had startups which are focused on STEM toys, educational kits, do-it-yourself learning products, AI-enabled learning tools, sustainable toys, culturally rooted Indian storytelling products. And that is where you are finding even the generational toy makers that are finding opportunities in combining manufacturing with education, creativity, digital learning. We just heard this from this artisan from Sawantwadi. We've had toy clusters from Etikopaka, for example, or Kondapalli or Chennapatna, which have actually seen renewed attention throughout the world. And they've seen exports from India.

0: Station नमस्कार। मंथन कार्यक्रम के आज के अंक में आपका स्वागत है। मैं हूं अमित गोयल। आज हम चर्चा करेंगे विकसित भारत जी राम जी के बारे में। हमारे साथ आज जुड़े हैं वरिष्ठ पत्रकार आशुतोष झा। आशुतोष जी, कार्यक्रम में आपका स्वागत है।
1: धन्यवाद
0: आशुतोष जी। जैसा कि ये विकसित भारत जी राम जी योजना, जिसके बारे में केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बताया था, दिसंबर में इस बात की घोषणा करी थी, तो क्या मानते हैं किस तरह से ये एक गेम चेंजर के रूप में आएगी?
1: गेम चेंजर इस सेंस में इसको कहना चाहिए कि जो खामियां थी, लंबे अरसे से चली आ रही थी, लगातार खामियां, करप्शन हो रहे थे, लोगों के नाम गलत तरीके से चढ़ा करके कोई और पैसे वसूल रहा था, ये खामियां दूर होंगी। और जो विकसित भारत की सोच है कि अगर देश का विकास होना है

0: तो जो भी निर्माण हो वो स्थायी हो, उस दिशा में ये जी राम जी की पहल जो है वो मुझे लगता है कि बहुत अच्छी दिशा में जाएगी, और अगले 5-7 साल में जब इसका इम्पैक्ट दिखना शुरू होगा तब ये पता चल जाएगा कि जिस सोच के साथ इसे जमीन पर उतारने की कोशिश हुई है वो पूरा हो गया, और सही तरीके से अगर इसका कार्यान्वयन हुआ तो मुझे विश्वास है कि पूरा होगा।
1: जी चलिए सुनते हैं हमारे केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने इसकी जानकारी देते हुए क्या कहा और कब से लागू हो रही है इसके बारे में उन्होंने बताया।
2: विकसित भारत जी राम जी अधिनियम की अधिसूचना जारी कर दी गई है। 1 जुलाई से अब विकसित भारत जी राम जी योजना के अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्र में रोजगार चाहने वाले हमारे मजदूर भाइयों को बहनों को अब 100 नहीं साल में 125 दिन का रोजगार दिया जाएगा। बीच के समय में मनरेगा के सारे प्रावधान लागू रहेंगे, अधूरे काम अभी 1 जुलाई के पहले तक मनरेगा के अंतर्गत ही पूरे किए जाएंगे। अभी व्यापक पैमाने पर राज्यों से सलाह मशवरा करके नियम बनाने की प्रक्रिया जारी है। विकसित भारत जी राम जी के अंतर्गत अधिकतम राज्यों को 6 माह का समय रहेगा अपेक्षित तैयारी के लिए।
1: आशुतोष जी, जिस तरह से मंत्री जी ने भी कहा कि 6 महीने का समय दिया गया है तैयारी करने के लिए, लेकिन जब तक जैसे कि 1 जुलाई से ये प्रावधान लागू होने हैं और तब तक मनरेगा के प्रावधान ही लागू रहेंगे, तो इसमें क्या कहीं कोई संशय है या कुछ इस तरह की बात है जिसमें लोगों को समझ नहीं आ रहा या राज्यों से कोई अपेक्षा समर्थन नहीं मिल पा रहा?
0: जो विपक्षी राज्य हैं उनकी ओर से ये सवाल उसी समय से उठने शुरू हुए थे कि इसमें अगर 40% राज्यों को खर्च करना पड़ेगा तो राज्यों पर भार पड़ेगा और वो समस्या होगी। तो विपक्षी राज्यों की ओर से ये समस्याएं आ रही, वो उनकी ओर से ये सवाल खड़े किए जा रहे थे। लेकिन जो दूसरी बातें हैं इसमें कि देखिए, जो नए प्रावधान इसमें किए गए कि भाई आप 125 दिन की का गारंटी देंगे, आपकी जो निगरानी व्यवस्था होगी, निगरानी तंत्र होगा वो बिल्कुल जमीन पर मौजूद होगा, अगर 1 सप्ताह का साप्ताहिक कोई काम होता है तो सप्ताह खत्म होते ही उसे तत्काल पेमेंट होना चाहिए, इस तरीके की तैयारियां, और प्लस ये कि आप एक तैयारी इस लिहाज से करते हैं कि हमें किस तरीके के कंस्ट्रक्शंस करने हैं, क्योंकि इसमें पंचायतों की जिम्मेदारी भी बहुत बड़ी है, बहुत सारी योजनाएं जो पहले से चल रही थी उसको इसमें समाहित किया जाना है, तो इस तरीके की तैयारी की बात थी। देखिए अदरवाइज तो क्या है, 2005 से ही ये योजना चल रही थी तो चल ही रही थी, जो बदलाव हुए उसको देखते हुए जो तैयारी राज्यों को करनी है उस लिहाज से जो ग्रामीण विकास मंत्री ने जो बात कही मुझे वही लगता है, इसमें बहुत कंफ्यूजन की बात नहीं है।
1: 1 जुलाई से इस तरह की योजना लागू हो रही है और इसमें जिस तरह से आपने भी बताया कि इसमें कुछ नए प्रावधान जोड़े गए हैं, नए कामों को भी, और साथ ही साथ समय से भुगतान को सुनिश्चित किया गया है, और अगर भुगतान अगर समय से नहीं होता तो क्या किसी तरीके का उनको हर्जाना भी मिलने की इसमें कुछ प्रावधान है?
0: जी बिल्कुल, ये अच्छी बात इसमें है, क्योंकि देखिए जो पुराने रिकॉर्ड जो बताते हैं मनरेगा के टाइम से जो चलती रही थी बात, उसमें ये समस्या शुरुआत से आ रही थी कि काम कर लिया भुगतान नहीं हो रहा है, महीनों महीनों पड़े हुए हैं, और फिर देने के लिए जो है सो मजदूर को रिश्वत देनी पड़ रही है, इस तरीके की समस्या। तो इसमें बाकायदा ये इंतजाम किया गया, क्योंकि ये तो रिकॉर्ड में होगा ना कि आपने आज से काम शुरू किया और अगले 20 दिन तक पहले काम किया, ये रिकॉर्ड में है, और उसमें प्रोविजन है कि आपको जो है कार्य संपन्न होने के बाद मैक्सिमम जो है 15 डेज का दिया गया है कि उसके बीच में आपको भुगतान करना है, अगर आप नहीं करते हैं तो पर डे के हिसाब से हर्जाना उसमें जोड़ना होगा। तो ये अच्छी बात है, क्योंकि मुझे लगता है कि तभी तंत्र ज्यादा मजबूती से काम कर पाता है जब उसमें एक जवाबदेही तय कर दी जाती है, तो यहाँ जवाबदेही की गई है।
1: जवाबदेही की आपने बात करी तो इस बारे में भी केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने कुछ जानकारी दी है।
2: विकसित भारत जी राम जी के अंतर्गत रोजगार देने के लिए भारत सरकार ने ही अपने बजट में 95,600 करोड़ से ज्यादा की राशि का प्रावधान किया है। राज्यों ने भी अपने अपने बजट में विकसित भारत जी राम जी को लागू करने के लिए प्रावधान किया है, और केंद्र और राज्यों की कुल राशि अगर जोड़ ली जाए वे 1,51,000 करोड़ रुपए से ज्यादा होगी। मजदूरों को भुगतान DBT के माध्यम से उनके बैंक या डाकघर में जो अकाउंट है उसमें किया जाएगा। कोशिश होगी कि 3 दिन के अंदर हो, लेकिन अधिकतम 15 दिन के अंदर प्रक्रियाएं पूरी करके उनके खाते में पैसा आ जाए। 15 दिन के अंदर अगर पैसा नहीं आया हमारे मजदूर भाई बहन विलंबित भुगतान के पात्र भी होंगे, तो देरी से देंगे तो उस पर एक निश्चित राशि अलग से देनी पड़ेगी, और मांगने पर अगर रोजगार नहीं मिला तो बेरोजगारी भत्ता भी देना पड़ेगा।
1: जिस तरह से मंत्री जी ने कहा कि अगर मांगने पर रोजगार नहीं मिलता तो आपको बेरोजगारी भत्ता मिलेगा, तो कहीं ना कहीं कोई संशय की गुंजाइश तो बनती नहीं है, ये योजना

0: पहले की योजना से किस मायने में अलग देखते हैं आप?
1: दो तीन बड़े अंतर हैं अगर सिर्फ प्रावधान की बात करें। प्रावधान की सबसे बड़ी बात तो ये कि अगर उसमें 100 दिन की गारंटी थी तो इसमें 125 दिन की गारंटी है, और राज्यों को ये तय करने का अधिकार दिया गया कि आप कौन सा लीन पीरियड मानते हैं और कौन सा ऐसा पीरियड मानते हैं जिसमें काम नहीं दिया जा सकता। ये दोनों चीजें हैं उसमें, रेनी सीजन है, अब पता चला उस बीच में कोई रोजगार मांगने आ जाए तो कैसे देंगे आप, क्योंकि कंस्ट्रक्शन का काम होना है वहां पर। तो इस तरीके की छूट भी है राज्यों को। इसमें बिल्कुल संशय नहीं है कि ये थोड़ी बहुत घटनाएं होती थी कई जगहों से कि काम मांगने पर भी काम नहीं मिलता था। क्यों? क्योंकि इंतजार करवाते थे वो जो जिलाधिकारी होते थे, वो ये देखते थे कि भाई अभी काम शुरू करना है तो फिलहाल इसको टाल कर रखो, जो एक होता है ना कि फिलहाल आप इसको नजरअंदाज करो, फिर कोई काम शुरू होगा तो फिर महीने भर बाद 45 दिनों बाद एक कोई काम शुरू हो रहा है तो उसमें जोड़ने की कोशिश होती थी। इसमें जो अच्छी बात है नई स्कीम में क्या है कि विभिन्न योजनाओं के तहत बहुत सारे कार्य राज्य सरकारों के भी चल रहे होते हैं। गांव में हॉस्पिटल बन रहे हैं, कोई और काम हो रहा है, बहुत तरीके के काम, कोई तालाब खुदाई की बात हो रही है, कुछ भी हो रहा है, तो उसको इससे जोड़ा जा सकता है। जो इन्होंने बात कही कि केंद्र और राज्यों के पैसे मिला करके केंद्र ने 95,000 करोड़ रुपीस का इसमें प्रोविजन किया है, और राज्यों की ओर से जो 40% की बात थी उसको जोड़ करके उन्होंने वो कहा। अब इसमें बहुत सारे काम हो सकते हैं, और मुझे नहीं लगता कि अगर कोई व्यक्ति जो अनस्किल्ड लेबर जिसकी बात हम करते हैं, क्योंकि इसमें अनस्किल्ड लेबर को ही मिलता है, वो कोई काम मांगे और उसे काम नहीं दिया जा पाए, मुझे ऐसी कहीं गुंजाइश नहीं दिखती है। फिर भी अगर कहीं इस तरीके की स्थिति होती है तो मुझे लगता है वहां जरूर जानबूझकर लापरवाही हो रही है। ये एक सबसे बड़ा अंतर है कि बदलाव दिखेगा मुझे लगता है।
0: जी, क्या इसमें राज्य सरकार या पंचायत के स्तर पे भी जो कुछ कार्य होते थे उसमें इसमें समाहित किया गया है उनको, और जिससे कि आपने भी जैसे बताया कि बहुत सारे कार्य अलग अलग तरीके से चलते रहते थे लेकिन सबको एक समाहित करके जिसमें कि धन का आवंटन की कमी ना आए, क्योंकि एक बड़ा भाग इसमें बजट में भी इसके लिए प्रस्तुत किया गया है।
1: यही बात जो राज्य विरोध कर रहे थे उनको यही समझाने की कोशिश हुई थी कि 40% ये आप पर कोई अतिरिक्त दबाव नहीं पड़ रहा है, अगर कोई भी निर्माण हो रहा है राज्य में तो वो राज्य के फायदे के लिए है या नहीं, तो राज्य के लिए फायदे के है तो राज्य उसमें हिस्सेदारी क्यों नहीं करेंगे, राज्य के लोगों के फायदे के लिए है कि नहीं कि उन्हें रोजगार मिलेगा तो फिर राज्यों की हिस्सेदारी क्यों नहीं होनी चाहिए, जिम्मेदारी और जवाबदेही ये दोनों चीज इसमें समाहित किया गया है, जिससे मुझे लगता है ये ज्यादा प्रभावी होगा, जमीन पर ये दिखना शुरू होगा।
0: जी, इस बारे में केंद्रीय मंत्री ने यह भी कहा कि एक बड़ी धनराशि इसके लिए रखी गई है और इसमें कौन कौन से कार्य कराए जा सकते हैं, इसके बारे में भी उन्होंने कुछ जानकारी दी है।
2: 1,51,000 करोड़ से ज्यादा की विशाल धनराशि से गांव में इंफ्रा के सारे काम व्यापक पैमाने पर होंगे, जल संरक्षण के काम, गांव में अधोसंरचना के काम, सड़क, पुल, पुलिया, स्कूल, आंगनबाड़ी भवन, खेत, सड़क जो जरूरी है सब किए जा सकेंगे। आजीविका मूलक काम भी सेल्फ हेल्प ग्रुप की दीदी हो, एफपीओ हो, उनके लिए वर्किंग शेड जैसी कई अधोसंरचनाएं भी बनाई जा सकेंगी, और प्राकृतिक आपदा से बचाने के लिए भी संरचनाएं जैसे रिटर्निंग बाल वगैरह अगर नदी के किनारे कोई गांव है या जहां पानी भरता है तो वैसे काम भी लिए जा सकेंगे। इस योजना के अंतर्गत जो काम करने वाले हमारे कर्मचारी साथी है उनको पर्याप्त और समय पर वेतन का भुगतान हो, इसके लिए प्रशासनिक व्यय को भी बढ़ा के 6-9% कर दिया गया है। मजदूरों की जिंदगी में एक नए सवेरे का आगाज हो रहा है और विकसित भारत के लिए विकसित गांव बनाने का संकल्प प्रधानमंत्री जी का पूरा करने में यह योजना मील का पत्थर साबित हो।
0: जैसे केंद्रीय मंत्री ने बताया कि विकसित गांव बनाने की तरफ ये एक बड़ा कदम है, तो ये जानना बड़ा जरूरी है कि क्या गांव के आसपास ही उनको रोजगार मुहैया कराया जाएगा, इसके लिए समर्पित होगा या उसमें कहीं दूरी का भी कोई प्रावधान नहीं है?
1: जो इसकी मंशा है वो यही है कि गांव के आसपास जो जहां के रहने वाले हैं उसके आसपास ही रोजगार मुहैया हो, और चूंकि बहुत बड़े स्तर पर कार्य चल रहे होते हैं हर जगह, कार्य और नए शुरू किए जा सकते हैं। अब जैसे इन्होंने बात कही कि जल संरक्षण, अब जल संरक्षण आज देश के की प्राथमिकता में शामिल है तो जल संरक्षण को सबसे ऊपर रखा गया। इसके अलावा एक खूबसूरत बात इसमें जोड़ी गई है कि आपदा से निपटने की तैयारी। अब देखिए आपदा से निपटने की तैयारी कई मिनिस्ट्री के लेवल पे चल रही है जिसमें होम मिनिस्टर भी शामिल है और उसमें बहुत सारे मिनिस्ट्री शामिल है, उसमें वाटर रिसोर्सेज मिनिस्ट्री भी शामिल है, केंद्र से लेकर के राज्य तक, यानी एक पूरे सहयोग की बात होगी, हर मिनिस्ट्री केंद्र से लेकर के राज्य तक एक दूसरे से सहयोग करके ऐसी अधोसंरचना

0: संरचना का ऐसे इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण कर रहा होगा जो स्थायी होगा और वो हमेशा के लिए देश के काम आएगा। तो जाहिर तौर पर उसमें गांव तो शामिल होंगे। आप ये मान के चलिए कि अधिकतर जो इसमें लाभ मिलना है वो गांव को मिलना है। शहरों में तो बहुत बड़े लेवल पे इन्वेस्टमेंट आ रहे होते हैं कहीं न कहीं से, गांव में ही समस्या सबसे ज्यादा खड़ी होती है, जहां राज्य सरकार भी कई बार हिचकिचाती है और केंद्र सरकार से जो पैसे जा रहे हैं वो कई बार वो खर्च नहीं हो पाते हैं ढंग से, क्योंकि इम्प्लीमेंटेशन नहीं होता। इस स्कीम के जरिए मुझे लगता है सबसे ज्यादा फायदा गांव को होगा। और इसीलिए बात हो रही है ना कि गांव, हम लोग तो हमेशा से बोलते रहे कि भारत गांवों का देश है, बचपन से हम लोग ये पढ़ते भी रहे हैं। गांव विकसित होगा तो देश भी विकसित होगा, यही इसकी मंशा है।
1: और शहरों पे भी जो ग्रामीण का जो बोझ होता है, अचानक से शहरों पे शहरीकरण का बोझ है, शायद उसको भी कम करने में मदद मिलेगी और ग्रामीण क्षेत्र का भी विस्तार होगा। एक महत्वपूर्ण जो मैं इसमें बात देख रहा था कि 5 किलोमीटर से अगर दूर होगा कोई कार्यस्थल तो उसके लिए मजदूरों को कुछ अतिरिक्त भुगतान भी किया जाएगा, ये शायद इस योजना को काफी आकर्षक बनाता है।
0: जी बिल्कुल। अब अगर कोई गांव का एक मजदूर, आप उसे 20 किलोमीटर के डिस्टेंस पे काम दे रहे हैं और दिन भर की दिहाड़ी के हिसाब से, जो चूंकि इसमें मिनिमम वेजेस का ही एक हिसाब होता है
1: जी,
0: उस पे तो वो बहुत आकर्षक कभी नहीं हो सकता। इसीलिए ये बात देखिए, जो पहली योजना थी मनरेगा, उसमें भी ये बात थी कि उस घर के आसपास, लेकिन उसमें कोई एक डिस्टेंस को डिमार्केट नहीं किया गया था कि हाँ 5 किलोमीटर 4 किलोमीटर, तो आसपास आप कुछ भी बोल सकते थे, 10 किलोमीटर भी बोल सकते थे। तो ये बताना कि भाई 5 किलोमीटर के डिस्टेंस में, ये बहुत आकर्षक बनाता है। तो एक तो 125 दिन की गारंटी, दूसरा पेनल्टी अगर उनको समय पर भुगतान नहीं किया जाता है उनका जो वेतन है, और तीसरा गांव के बिल्कुल आसपास। ये तीनों चीजें हैं जो इसे बहुत ही आकर्षक बनाएगी
1: जी, क्योंकि ये एक अधिनियम ऐसा है जिसमें केंद्र, राज्य और स्थानीय योजनाओं का भी समन्वय है, तो एकल योजना बहुवित्त पोषण दृष्टिकोण को इससे काफी बढ़ावा मिलता हुआ नजर आता है। क्योंकि कई बार ऐसा देखा जाता है कि राज्य सरकार पे अलग योजनाएं चल रही हैं उसी मतलब की, और केंद्र सरकार भी इसी तरीके की योजना चला रही है, और शायद गांव के लेवल, पंचायत लेवल पे भी, स्थानीय स्तर पे भी इस तरह की कभी कभी योजनाएं आ जाती हैं, तो कहीं ना कहीं उसका समावेशीकरण हो जाएगा तो उसमें बेहतर होगा कि एक तरह की योजना जिसकी कि खासतौर पर जरूरत है ग्राम के क्षेत्रों को, उसका पूरा भरपूर लाभ मिल सके।
0: बिल्कुल, यही मंशा है, कन्वर्जेंस। जितनी स्कीम चल रही है उसका कन्वर्जेंस होना चाहिए, तभी क्या है कि आप पैसे को सही तरीके से खर्च कर पाएंगे और सही तरीके से निर्माण भी हो पाएगा। ये बहुत जरूरी इसका हिस्सा था और वही जरूरी है देश के लिए हर तरीके से।
1: चलिए, तो मोटे तौर पे ये मान लिया जाए कि गांव के 5 किलोमीटर के दायरे में रोजगार मिलेगा, जल सुरक्षा, ग्रामीण बुनियादी ढांचा, आजीविका संबंधी बुनियादी ढांचा और चरम मौसम से बचाव संबंधी कार्य इसमें लागू किए जा सकेंगे। 100 दिन के मुकाबले 125 दिन का रोजगार इसमें सुनिश्चित किया गया है और साथ ही साथ भुगतान भी समय पर मिले इसकी गारंटी भी की गई है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण बातें थी जो शायद इस योजना को पहली योजना से ज्यादा आकर्षक बनाती हैं और साथ ही साथ जिम्मेदारी भी तय करती हैं, चाहे वो राज्य सरकार हो चाहे वो केंद्र सरकार हो। आशुतोष जी, हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
0: धन्यवाद।
1: श्रोताओं, ये कार्यक्रम आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। मंथ